FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 जून 2026। प्रातः के 5:58 और 32 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ हो रही है।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंच

0: पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि ये समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। विचार बिंदु में आइए आज सुनते हैं भगवान के अनंत रूप विषय पर विचार।
2: वर्ष 1882 जब श्री रामकृष्ण देव के पास पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ चली थी, उनमें बालक, वृद्ध तथा सभी उम्र के स्त्री पुरुष थे। श्री रामकृष्ण लोगों को उपदेश देते वक्त अपनी बात को समझाने के लिए बहुधा सरल और सरस कहानियां सुनाया करते थे जो दैनंदिन जीवन की घटनाओं पर आधारित होती थी। उस समय उनका कमरा हंसी और आनंद से भर जाता क्योंकि श्रोतागण भी कहानियां सुनना उतना ही पसंद करते जितना कि श्री राम कृष्ण को सुनाना पसंद था। एक दिन श्री राम कृष्ण देव ने अपने श्रद्धालुओं को उपदेश देते हुए कहा, भगवान को देखा जा सकता है तथा उनके साथ बातचीत भी की जा सकती है। प्रत्येक धर्म सत्य है, अतः सभी धर्म एक ही गंतव्य को पहुंचने के लिए विभिन्न मार्ग हैं। लोग आपस में इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वे भगवान के असली स्वरूप को नहीं जानते। वे अधिक से अधिक बस एक रूप को ही देख पाते हैं और मात्र उसी को सच समझते हैं, फिर उसे लेकर ही कितना झगड़ा फसाद होता है। इसी संबंध में श्री रामकृष्ण देव श्रोताओं को एक कहानी सुनाने लगे। एक बार 4 अंधे रास्ते से जा रहे थे, उन्हें पता लगा कि कुछ ही दूरी पर एक बड़ा प्राणी खड़ा है। उनमें से एक ने किसी राहगीर से पूछा, वह क्या है? उस राहगीर ने उत्तर दिया, वह हाथी है। एक अंधे ने अपने साथियों से कहा, चलो हाथी कैसा है देखें। उनमें एक हाथी के पैर को छू आया था और कहने लगा, अरे हाथी तो

0: तो खंबा जैसा है। दूसरा हाथी के कान का स्पर्श कर चिल्लाने लगा, हाथी तो सूप जैसा है। तीसरे ने हाथी की सूंड छू ली थी, अतः बोल उठा, तुम लोग कैसे बेवकूफ हो, वह तो अजगर जैसा है। चौथा हाथी के पेट को छुआया था, अतः जोर से कहने लगा, तुम सभी लोगों ने गलत समझा है, हाथी तो एक बड़ा ढोल जैसा है। इस तरह ये चारों अंधे हाथी के रूप के बारे में वाद विवाद करने लगे। उनका कोलाहल सुन एक व्यक्ति ने आकर पूछा, क्या बात है, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? तब उन्होंने उसे मध्यस्थ ठहराकर सब किस्सा कह सुनाया। तत्पश्चात वह आदमी बोला, तुम लोगों में से किसी ने भी हाथी को ठीक ठीक नहीं देखा। हाथी खंबा जैसा नहीं, उसके पांव खंबे जैसे हैं। वह सूप जैसा नहीं, उसके कान सूप जैसे हैं। वह अजगर जैसा नहीं, उसकी सूंड अजगर जैसी है। वह ढोल जैसा नहीं, उसका पेट ढोल जैसा है। इन सब को मिलकर ही तो हाथी बना है। श्री राम कृष्ण देव इस कहानी के द्वारा बताना चाहते हैं कि जिन्होंने भगवान के किसी एक रूप का ही दर्शन किया है अथवा उसके स्वरूप के एक ही पहलू को देखा है, वे ही इसी प्रकार इन अंधे लोगों की तरह आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ऐसे ही लोग कहते हैं कि भगवान को जैसा हमने देखा है बस वही सच है, परंतु असल में भगवान के तो अनंत रूप हैं।
1: विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे भगवान के अनंत रूप विषय पर विचार। लीजिए, अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

प्रत्येक मनुष्य के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। जब इंसान अपने मन को शुद्ध, शांत और सकारात्मक विचारों से भर लेता है, तो उसे स्वयं में ही ईश्वर की अनुभूति होने लगती है। नर और नारायण दोनों अलग नहीं हैं। जब मनुष्य अच्छे कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है, तो उसमें देवतुल्य नारायण का ही रूप प्रकट होने लगता है।

राम भजन को आत्मा का परमात्मा से जुड़ने का सीधा माध्यम माना जाता है। संतों के अनुसार ये नाम संकीर्तन कीरत मन को शुद्ध करके जीवन की परम लक्ष्य मोक्ष की ओर हमें ले जाता है।

माँ का स्वरूप एक सागर के समान है और हमारा मन रूपी गागर हमारा मन एक गागर के समान है, जिसे अगर भरा जा सकता है तो केवल भवानी माँ के स्मरण और पूजन से भरा जा सकता है।

तुम्हारी कृपा प्रभु जो पाते हैं, काम सफल सब उनके हो जाते हैं। करुणा निधान हमको देना सहारा, हर पल हम जपते नाम तुम्हारा।

भक्ति ऐसी मणि है जो स्वयं प्रकाशित है। इस मणि का जिस हृदय में निवास होता है वो अपने आप अनंत रूप से परम प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। ये ऐसा धन है जिससे मोह रूपी दरिद्रता मिट जाती है। लोभ रूपी हवा उसे दीपक की भांति बुझा नहीं सकती, क्योंकि भक्ति रूपी ये मणि तो स्वयं प्रकाश रूप है, जिसे दीपक की भांति किसी भी प्रकाश से प्रज्वलित नहीं किया जा सकता है। जिसके हृदय में भक्ति का निवास होता है उसके हृदय में काम, क्रोध और मोह नहीं रह सकता। भक्त के लिए विष भी अमृत के समान हो जाता है और शत्रु भी मित्र के समान प्रतीत होने लगते हैं।

आराधना कार्यक्रम में आज आपने महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोंसले, चित्रा सिंह, जीवन चंद्र आर्या और साथियों के गाए भक्ति गीत सुने।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब समय है आज की बात का। आज की बात के अंक में आप सभी के साथ मैं हूं पूजा। आज है 14 जून। देश दुनिया के इतिहास में आज का दिन क्यों है खास, आइए जानते हैं। श्रोताओ, आज ही के दिन साल 1951 में दुनिया का पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर दुनिया के सामने आया था। यूनिवेक 1 नामक इस कंप्यूटर को अमेरिकी जनगणना ब्यूरो ने इस्तेमाल किया था। इस कंप्यूटर को उन्हीं वैज्ञानिकों ने बनाया था जिन्होंने दुनिया के पहले इलेक्ट्रिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर की रचना की थी। ये विश्व का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था जिसे जे प्रेस्पर एक्ट और जॉन मैचली द्वारा बनाया गया था। इसे मुख्य रूप से व्यापार और प्रशासनिक कार्यों के लिए विकसित किया जाता था। साल 1940 में आज ही के दिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेनाएं फ्रांस की राजधानी पेरिस में बेरोक टोक घुस गई थीं और पेरिस पर कब्जा कर लिया था। इससे कुछ दिन पहले यानी 10 जून 1940 को ही पेरिस को ओपन सिटी घोषित किया गया था। युद्ध के दौरान किसी भी देश की सरकार द्वारा

किसी शहर को ओपन सिटी घोषित तब किया जाता है जब उस शहर पर कब्जा होने वाला हो। ओपन सिटी घोषित करने पर हमला करने वाली सेना से उम्मीद की जाती है कि वो ओपन सिटी पर बमबारी ना करे और ना ही वहाँ के ऐतिहासिक स्थलों को नुकसान पहुँचाए। श्रोता, हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक के आसिफ का जन्म आज ही के दिन यानी 14 जून साल 1922 को इटावा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिल्म जगत के इस महान फिल्मकार का पूरा नाम करीम आसिफ था। इन्होंने भारतीय सिनेमा की सर्वकालिक क्लासिक फिल्म मुगले आजम बनाई थी।

वाले फिल्मकारों में के आसिफ का नाम शायद अकेला है। के आसिफ को साल 1960 में मुगले आजम फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। इसी फिल्म के लिए इसी साल सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का राष्ट्रपति द्वारा रजत पदक भी इन्हें मिला। 9 मार्च साल 1971 को के आसिफ का निधन हो गया। श्रोताओं, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आज पुण्यतिथि है। 21 जनवरी साल 1986 में जन्मे सुशांत सिंह राजपूत एक बेहद प्रतिभाशाली भारतीय अभिनेता, नर्तक और उद्यमी थे। पटना के एक साधारण परिवार से आने वाले सुशांत ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़कर बैकग्राउंड डांसर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में एक अमिट छाप छोड़ी। लोकप्रिय धारावाहिक किस देश में है मेरा दिल और पवित्र रिश्ता में अभिनय कर वे घर घर छा गए। सुशांत सिंह राजपूत की मुख्य फिल्मों में काई पोछे, शुद्ध देसी रोमांस, पीके, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, केदारनाथ, सोन चिड़िया, दिल बेचारा फिल्में शामिल हैं। 14 जून साल 2020 में इनका निधन हो गया। श्रोताओ, आज ही के दिन यानी 14 जून साल 1960 में जन्म हुआ था भारतीय अभिनेता, टीवी प्रस्तुतकर्ता, निर्देशक, निर्माता शेखर सुमन का। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1984 में फिल्म उत्सव से की थी, लेकिन इन्हें अपार लोकप्रियता टीवी सीरियल्स और कॉमेडी शो से मिली। इसके बाद इन्होंने नाचे मयूरी, त्रिदेव और चोर मचाए शोर जैसी फिल्मों में काम किया। साल 2014 में हार्टलेस फिल्म से निर्देशक और निर्माता के क्षेत्र में भी इन्होंने कदम रखा। इन्होंने दूरदर्शन के मशहूर शो देख भाई देख, वाह जनाब से घर घर में अपनी पहचान बनाई। इसके अलावा इन्होंने मूवर्स एंड शेक्स, पोल खोल और कॉमेडी सर्कस जैसे बेहतरीन लोकप्रिय टीवी शोज को होस्ट किया, जिन्हें दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया। और श्रोताओ, हर साल 14 जून को अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सुरक्षित रक्त और ब्लड प्लाज्मा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और नियमित रूप से रक्तदान करने वाले स्वयंसेवकों को धन्यवाद देना है। तो श्रोताओ, ये थी आज की बात। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समूह स्वर में देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

आज के विविधा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कीजिए स्वीकार पूजा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोतो, हर साल आज ही के दिन यानी 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। कहा जाता है कि रक्तदान महादान। रक्त एक जीवन रक्षक वस्तु है जिसे कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता है, अपितु केवल मानव शरीर से ही प्राप्त किया जा सकता है। रक्तदान किसी जरूरतमंद का अनमोल जीवन बचा सकता है, अतः किसी भी अन्य कार्य से बढ़कर ये आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरों के हित से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। विश्व रक्तदाता दिवस की शुरुआत साल 2004 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा सुरक्षित रक्तदान और नियमित स्वैच्छिक दान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। ये विशेष तारीख यानी 14 जून नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिवस के अवसर पर चुनी गई है। कार्ल लैंडस्टीनर ने ही साल 1901 में ABO ब्लड ग्रुप प्रणाली की खोज की थी, जिसने सुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आधुनिक चिकित्सा की नींव रखी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर पहला विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून साल 2004 को मनाया था। साल 2004 में स्थापित इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रक्तदाताओं के सुरक्षित जीवन रक्षक रक्त के दान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हुए आभार व्यक्त करना है। रक्त दुर्घटनाओं, गंभीर बीमारियों और प्रसव के समय मरीजों के लिए बहुत आवश्यक होता है। रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं होता है, इसीलिए रक्तदान ही इसका एकमात्र स्रोत है। एक स्वस्थ व्यक्ति 3 महीने में यानी 90 दिनों के अंतराल में एक बार रक्तदान कर सकता है।

भारतीय चिकित्सा मानकों के अनुसार पुरुष साल में 4 बार और महिलाएं 3 बार सुरक्षित रूप से संपूर्ण रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदाता को पूरी तरह से स्वस्थ, शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए और किसी भी संक्रामक बीमारी से मुक्त होना चाहिए। बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि एक बार रक्तदान करने से 3 लोगों की जान बच सकती है। ऐसा इसलिए है कि दान किए हुए रक्त को अक्सर लाल रक्त कोशिकाओं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा जैसे घटकों में विभाजित किया जा सकता है, जिसका उपयोग विभिन्न रोगियों के लिए किया जा सकता है। श्रोताओं, रक्तदान से लाभान्वित लोगों में शामिल हैं दुर्घटना पीड़ितों को आपातकालीन रक्तदान की आवश्यकता, कीमोथेरेपी से गुजर रहे कैंसर रोगी, प्रसव के समय जटिलताओं का सामना करने वाली माताएं, एनीमिया या थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे और रक्त की कमी से जूझ रहे शल्य चिकित्सा रोगी। रक्त का जीवन काल बहुत कम होता है। लाल रक्त कणिकाएं केवल 42 दिन और प्लेटलेट्स केवल 3 दिन तक जीवित रहते हैं। इसीलिए आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने के लिए निरंतर रक्तदान आवश्यक है। रक्तदान करने से ज़रूरतमंद लोगों को नया जीवन मिलता है, साथ ही रक्तदाता के स्वास्थ्य की भी जांच हो जाती है। स्वस्थ व्यक्ति समय समय पर रक्तदान कर सकता है। रक्तदाता दिवस लोगों को स्वेच्छा से नियमित रक्तदान करने के लिए प्रेरित करता है। हमें रक्तदान के महत्व को समझना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। रक्तदाता दिवस 2026 की थीम है, मानवता की एक बूंद रक्तदान करे जीवन बचाएं। तो श्रोताओं, ये था आज का विविधा कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब समाचार रिले होंगे।

0: अवतरणज्ञानस्य विकासार्थं संयुक्तरूपेण कार्यं कुरुतः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थायाः अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणः अवदत् यत् इसरो परमाणु ऊर्जा विभागेन सह मिलित्वा अत्यंत शीतल परिस्थितेः संरक्षणार्थं उन्नत कृत्रिम तापन प्रणालीं च विकसितुं कार्यं कुरुतः। बेंगलुरु नगरे आयोजिते CSIR RISE सम्मेलने सः उक्तवान् यत् सौर ऊर्जया संचालितं चंद्रयान त्रयस्य लैंडर विक्रम अवतरणयानं चंद्रे केवलं 14 दिनानि यावत् कार्यम् अकरोत्। अवतरणयानं निर्मातुं प्रयासान् करिष्यतः इदानीं उभौ विभागौ, येन इदानीं 200 दिनपर्यन्तं चंद्रे कार्यं भवेत्। कृत्रिम तापन प्रणाल्या उपयुक्तं एतत् ज्ञानं चंद्रस्य कठोर जलवायु परिस्थितिषु अपि कार्यं करिष्यति तथा च भविष्ये दीर्घकालिक चंद्र अन्वेषण अभियानेषु अपि सहायकं भविष्यति। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हिमाचल प्रदेशे डाक विभागस्य ड्रोन आधारित डाक परिवहन सेवायाः शुभारंभम अकरोत्। एषा सेवा मंडी प्रधान डाक कार्यालयात् रेहर धारा शाखा डाक कार्यालय पर्यन्तं प्रवृत्ता। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः उक्तवान् यत् ईरान देशेन सह युद्ध समापन सम्बद्धस्य सन्धिपत्रे अद्य हस्ताक्षरं सम्भाव्यते। तेन उक्तं यत् अस्य सन्धेः लक्ष्यं ईरानस्य परमाणु अस्त्रेभ्यः दूरीकरणमस्ति। एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट श्रृंखलायाः प्रथम स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तान दलं पराजितम्। हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशाला नगरे प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तान दलं 7 क्रीडक पुरस्सरं पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह लूनर लैंडर को चंद्रमा के बहुत ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में श्री नारायणन ने बताया कि इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने का काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर की शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थलसेना प्रमुख होंगे। वर्तमान में वे थलसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने की संभावना व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ऐसा संभव हो। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। अगले 3-4 दिन तक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, कराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार वर्षा के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन और रात्रि 10 बजे रविवासरी संगीत सभा कार्यक्रम के अंतर्गत JS श्रीराम का कर्नाटक गायन, ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। अब से थोड़ी देर बाद यानी प्रातः 7:10 पर सुनेगा श्री रामचरितमानस गान से अगला प्रसंग। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में प्रातः 7:45 पर आज आप सुनेंगे विश्व रक्तदाता दिवस पर उत्तराखंड सरकार में NRHM के पूर्व निदेशक डॉक्टर नरेंद्र शर्मा से भेंटवार्ता पर आधारित कार्यक्रम, प्रस्तुति होगी संजय जोशी की। आज सुबह 8:30 पर बालवाटी का कार्यक्रम में चर्चा के विषय होंगे अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, गोवा क्रांति दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस, महारानी लक्ष्मीबाई शहादत दिवस और मरुस्थलीकरण और सूखा से निपटने का विश्व दिवस। दिन में 12:30 पर घर संसार कार्यक्रम में आज चर्चा होगी PM उज्ज्वला योजना विषय पर। साथ ही इसी कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी रक्तदान का महत्व विषय पर सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स ब्लड बैंक मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा के श्री हेम बहुगुणा से किरण बिष्ट की बातचीत। साथ ही बहनें सुनेंगी दैनिक जीवन में योगाभ्यास से स्वास्थ्य लाभ विषय पर योग विभाग सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के योग प्रशिक्षक डॉक्टर गिरीश सिंह अधिकारी से किरण बिष्ट की क्षेत्र संकलित बातचीत। 2:30 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आज फसलों में उर्वरकों का समुचित उपयोग और लाभ विषय पर दीपा बिष्ट की वार्ता प्रसारित होगी। शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा विश्व रक्तदाता दिवस और माई भारत प्लेटफॉर्म सरकार के 12 वर्ष। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम होगा बुरांश। साथ ही इसी कार्यक्रम में होगी चर्चा विश्व रक्तदाता दिवस और योग की तकनीक आसान और लाभ विषयों पर। शाम 7:15 पर प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि में आज का विषय होगा ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियां का प्रबंधन, जानकारी देंगे श्री मनोज भट्ट, संचालन करेंगी श्रीमती रीनू सनवाल। शास्त्रीय संगीत सुनेगा सुबह 11:30 पर। दिन में 1:30 पर आज आप सुन सकते हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत के व्यक्तित्व पर आधारित रूपक एक अनमोल हिमरत्न, प्रस्तुति होगी प्रतुल जोशी की। सुबह 10:05

पर होगा सबरस सबरंग कार्यक्रम। सबरस रात 8 बजे, सुगम संगीत सुनेगा दिन में 1:15 पर और रात्रि 9:30 पर। संध्या 6:41 पर भक्ति संगीत हम आपको सुनवाते हैं। कुमाऊनी लोकगीत लोकमंजरी कार्यक्रम में सुनिए प्रातः 7:30 पर। शैलसर में शाम 5:05 पर कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम। उत्तराखंड के लोकगीत आप सुनते हैं दिन में 2 बजे। फिल्म संगीत हमारे केंद्र से आज आप सुनेंगे गीत निझर कार्यक्रम में सुबह 9:05 पर। सुबह 10:35 पर होगा सुरबहार कार्यक्रम। 11 बजे सुनेगा सैनिकों के लिए। दिन में 12 बजे मेरी पसंद। अपराह्न 2:45 पर एक ही फनकार कार्यक्रम। अपराह्न 3 बजे सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम। शाम 7:40 पर आप पुनः फिल्म संगीत सुन सकते हैं और रात्रि 9:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा रजत रश्मिया। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं।

बेटियों को विदा कर बारातियों से विदा मांगते हुए राजा जनक ने समधी तथा उनके स्वजनों का भरपूर सम्मान किया। मुनि मंडली के सामने शीश झुकाकर उनका आशीष प्राप्त किया और फिर जामाताओं को हाथ जोड़े अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए बोले, आपने मुझे सब प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन बनाकर मुझे अपनाया। मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा अपरिमित है। मैं बार बार हाथ जोड़कर आपसे ये याचना करता हूं कि मेरा मन भूलकर भी आपके श्री चरणों को ना छोड़े। श्री राम ने पिता दशरथ, मुनिवर विश्वामित्र, कुलगुरु वशिष्ठ तथा पिता सदृश जनकराज का विनयपूर्वक सम्मान किया। मिथिलेश ने भरत को स्नेहपूर्वक प्रेमाशीष दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को आशीषा और फिर मुनिवर विश्वामित्र के चरणों में नतमस्तक हुए, जिनकी कृपा से ही आज उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बोले, हे स्वामी, आपकी अनुकंपा से ही मुझे ये सुख, सुयश और सभी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान पाठ का भाग 124। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 7:20 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गीता नेगी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के गदरपुर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कैकिंग एवं कैनोइंग प्रतियोगिता की तैयारियों का निरीक्षण किया। सभी तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश। देहरादून के बैरागीवाला गांव में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मृत्यु, 4 गंभीर रूप से घायल। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के किसानों से आधुनिक, वैज्ञानिक और प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया और हरिद्वार जिले में आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू।

0: अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड सरकार ने सहकारी बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह समिति जिला और राज्य सहकारी बैंकों की वेतन संरचना, मानव संसाधन प्रबंधन और वित्तीय व्यवस्थाओं का अध्ययन कर 1 माह में रिपोर्ट देगी। देहरादून में विभागीय समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को सुधारों के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समिति उन राज्यों के सहकारी बैंकिंग मॉडलों का भी अध्ययन करेगी जहां इस क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता मिली है। इस बैठक में सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की गई है। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान डॉक्टर रावत ने एनपीएस कम करने और बकाया ऋणों की प्रभावी वसूली के लिए रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों की आर्थिकी मजबूत करने के लिए एनपीए पर नियंत्रण जरूरी है। बैठक में उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ की निरंजनपुर स्थित भूमि के व्यावसायिक उपयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। सहकारिता मंत्री ने प्रस्तावित 3 नए जिला सहकारी बैंकों की स्थापना की प्रगति की समीक्षा करते हुए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने सहकारी बैंक भवनों और समितियों में चरणबद्ध तरीके से सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करने पर जोर दिया। डॉक्टर रावत ने कहा कि सहकारी बैंकों में ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई और डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। साथ ही सहकारी बैंकों को अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीर्घकालिक व्यावसायिक रोडमैप तैयार करने पर भी बल दिया गया। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंद्रियाल।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर क्षेत्र में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कैकिंग एवं कैनोइंग प्रतियोगिता की तैयारियों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रतियोगिता स्थल पर खिलाड़ियों के लिए की जा रही सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, तकनीकी प्रबंधों, आवागमन तथा ठहरने की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां निर्धारित मानकों के अनुसार समय पर पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों और देश विदेश से आने वाले प्रतिभागियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने जल क्रीड़ा गतिविधियों का अनुभव भी लिया और कहा कि राज्य की प्राकृतिक परिस्थितियां वाटर स्पोर्ट्स और अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए अनुकूल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार खेल सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक खेल अवसंरचना विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को खेलों के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। इसके लिए खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र के बैरागीवाला गांव में कल रात खेतों में पानी को लेकर हुए विवाद के बाद दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। देहरादून के पुलिस अधीक्षक क्राइम जितेंद्र चौधरी ने बताया कि खेतों में पानी को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था जो बाद में मारपीट में बदल गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने कहा कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया जा रहा है और आगे की कार्यवाही की जा रही है।
2: वाला गांव है, थाना शहरपुर क्षेत्र के अंदर पड़ता है। तो इसमें जो है दो पक्षों के बीच में जो है खेत में पानी को लेकर जो है विवाद हुआ था जिसमें उनकी आपस में हाथापाई हुई थी। इस संबंध में जो है सूचना पुलिस को मिली, जो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जो है अभी परिवार वालों से जो है इसमें तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पुलिस जो है अलग अलग टीमें पुलिस की बना दी गई है और जो पुलिस जो है जो अक्यूज जो बताए जा रहे हैं जिन्होंने हमला किया गया था, जिनका आपस में लड़ाई हुई थी, उनकी तलाश कर रही है। जल्दी जो है इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले माह एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था।
3: समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के किसानों से आधुनिक वैज्ञानिक और प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि खेत किसानों की आत्मा है और फसलों को प्राकृतिक आपदाओं तथा अन्य जोखिमों से बचाने के लिए वैज्ञानिक खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना आवश्यक है। रुद्रप्रयाग जिले के जखोली विकासखंड के मेदनपुर गांव में खेत बचाओ अभियान के तहत आयोजित कृषक गोष्ठी और कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 50,000 पॉली हाउस स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके पहले चरण में 16,000 पॉली हाउस लगाए जाएंगे। इसके अलावा मिलेट्स, ड्रैगन फ्रूट, कीवी और सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। कार्यक्रम के दौरान श्री जोशी ने महिला समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे मिलेट्स और चौलाई के लड्डुओं का अवलोकन भी किया तथा कृषि विभाग द्वारा स्थापित फूलों की खेती, जियो टैंक, पॉली हाउस का निरीक्षण भी किया। कृषि मंत्री ने कहा

0: कि रुद्रप्रयाग जिला रुद्रप्रयाग कृषि क्षेत्र में पूरी तरह से जैविक जनपद है और यदि जिले में कोई व्यक्ति रासायनिक उर्वरकों की बिक्री करता पाया जाता है तो इसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। हरिद्वार जिले में आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत ने बताया कि इस प्रशिक्षण में आपदा मित्रों और ग्रामीण स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन, खोज व बचाव, बाढ़ प्रबंधन, जल जनित आपदाओं से निपटने और वाटर रेस्क्यू की सैद्धांतिक व व्यवहारिक जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य स्वयंसेवकों की क्षमता का विकास करना है ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में वो प्रभावी ढंग से राहत और बचाव कार्यों में सहयोग कर सकें। उत्तराखंड सरकार ने लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 5 सदस्यीय खोजबीन समिति का गठन किया है। इस संबंध में सचिव कार्मिक और सतर्कता शैलेश बगोली की ओर से आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम 2014 के तहत गठित चयन समिति की 4 जून 2026 को बैठक में ये निर्णय लिया गया। खोजबीन समिति लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्य पदों के लिए योग्य व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार कर चयन समिति को उपलब्ध कराएगी। समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आलोक वर्मा होंगे। समिति में सेवानिवृत्त मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे, सुभाष कुमार और राधा रतूड़ी को सदस्य बनाया गया है। दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल को भी समिति का सदस्य नामित किया गया है। समिति उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम 2014 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नामों का पैनल तैयार कर चयन समिति के अध्यक्ष को सौंपेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के गदरपुर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्याकिंग एवं कैनोइंग प्रतियोगिता की तैयारियों का निरीक्षण किया। सभी तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश। देहरादून के बैरागी वाला गांव में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मृत्यु, 4 गंभीर रूप से घायल। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के किसानों से आधुनिक वैज्ञानिक और प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया और हरिद्वार जिले में आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कुमावनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। हमारे आज के गायक कलाकार हैं कल्याण बोरा।

0: लड़ाई के निशान वाला कोई सामान मत लाया करो।
1: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो। सारा सामान ISI का ही है।
0: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
1: ये तो है। ISI के निशान वाला सामान लाएं,
0: झगड़ा मिटाएं, विश्वास जगाएं।

0: कल्याण बोरा के गए इस कुमाऊनी लोकगीत के साथ हमारा आज का लोकमंजरी कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में लीजिए आज सुनिए विश्व रक्तदाता दिवस पर उत्तराखंड सरकार में NRHM के पूर्व निदेशक डॉक्टर नरेंद्र शर्मा से भेंटवार्ता पर आधारित कार्यक्रम। प्रस्तुतकर्ता हैं संजय जोशी।
1: श्रोताओ, आज विश्व रक्तदाता दिवस है। सन 2004 में इसकी शुरुआत की गई ताकि रक्तदान के प्रति लोगों में जागरूकता हो, सुरक्षित रक्त और उसके अवयवों के प्रति, और हम साधुवाद कर सके उनका जो रक्तदान करते हैं, ताकि अन्य लोग भी प्रेरित हो सके। स्वैच्छिक रक्तदाताओं के प्रयास से देश भर में बने रक्त कोषों में रक्त की कमी नहीं होती है। यूं तो हम सभी जानते हैं कि निजी रक्तकोष भी हैं, लेकिन सरकार द्वारा पोषित रक्तकोषों से आम जन लाभान्वित होता अवश्य आया है। यदि हमारे परिवार वालों को रक्त की आवश्यकता होती है तो हम सबसे पहले रुख करते हैं रक्तकोष की ओर, जहां सभी प्रकार की रक्त श्रेणियों के रक्त होते हैं। हमारा अपना स्वयं का प्रयास भी होता है कि जिस रक्त की आवश्यकता हो उस ब्लड ग्रुप का डोनर यदि हमें मिल सके तो रक्तकोष में लिए गए रक्त के बराबर रक्त जमा हो सके। सुरक्षित रक्त की आज विश्व स्तर पर आवश्यकता है, क्योंकि इसके प्रयोग से कई विषम और आवश्यकीय इलाज संभव हो पाते हैं। हर इमरजेंसी में हर रक्त की जरूरत होती है, चाहे वो इमरजेंसी प्राकृतिक आपदा के रूप में हो, एक्सीडेंट के रूप में है, या फिर अन्य समय जान बचाने की। लेकिन आज भी संपन्न देशों में 42% रक्त ही जमा हो पाता है, जहाँ पर विश्व की जनसंख्या दृष्टि से 16% लोग ही रहते हैं। रक्त हर समय उपलब्ध रहे इसलिए रक्तदान की आवश्यकता होती है, और ये ब्लड डोनर्स डे इसी की याद दिलाता है। लेकिन रक्तदान कौन कर सकता है? क्या हर कोई वॉलंटियर बन सकता है? इसका प्रोटोकॉल क्या कहता है? कैसे रक्त के अवयवों का इस्तेमाल अन्य बीमारियों के इलाज में हो सकता है? रक्तदाता का अपना स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए? प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? ई रक्तकोष का इस्तेमाल आम जन कैसे कर सकता है? और आज बता रहे हैं फोन लाइन पर हमें डॉक्टर नरेंद्र शर्मा।
2: 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसका खास मकसद ये है कि रक्तदाताओं का सम्मान किया जाए और रक्त की ज्यादा से ज्यादा आपूर्ति की जाए। जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें रक्त की आवश्यकता हर समय रहती है, तो रक्त की आपूर्ति पर्याप्त रूप से हो इसलिए रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। और इन शिविरों के माध्यम से जो भी रक्त एकत्र होता है वो विभिन्न चिकित्सालयों के गंभीर रोगियों को आपूर्ति की जाती है।
3: हमारे शरीर में जो रक्त है वो रक्त क्या कैसा है और क्या क्या काम आता है उस, और कैसे उस रक्त का इस्तेमाल अन्य बीमारियों को सही करने में किया जा सकता है?
2: प्रत्येक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 5.5 लीटर तक रक्त उपलब्ध रहता है, जिसे होल ब्लड कहते हैं, जिसमें कि लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा, प्लेटलेट, ये सभी मौजूद रहते हैं। आज के परिवेश में पूरा रक्त, होल ब्लड जिसे कहते हैं, वो कुछ ही हिस्सों में इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन सभी जगह कंपोनेंट सिस्टम या रक्त के जो उत्पाद के जो अवयव होते हैं, ये प्लाज्मा, प्लेटलेट और RBC और क्लॉटिंग फैक्टर्स, इन सबको अलग अलग करके इस्तेमाल किया जाता है। तो एक यूनिट होल ब्लड से आजकल 4 या 5 अवयव बनाए जाते हैं, और जिन मरीजों को जिसकी आवश्यकता होती है, जैसे प्लेटलेट की आवश्यकता है या प्लाज्मा की आवश्यकता है या रेड सेल्स की आवश्यकता है, तो वो उनको आपूर्ति की जाती है। और होल ब्लड का धीरे धीरे कंसेप्ट जो है वो कम होता जा रहा है, और जो गंभीर रोगी हैं को रक्त की आपूर्ति सुनिश्चित हो इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं, और समय समय पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन इसी तरह से किया जाता है जिस तरह से 14 जून को किया जाएगा।
3: प्लाज्मा थेरेपी की बात की जाती है, तो प्लाज्मा थेरेपी ये रक्त का ही एक हिस्सा है, तो किस तरह की थेरेपी का इस्तेमाल इस

0: जाने की संभावना है या कैसे प्रयास किए जा रहे हैं?
1: एक ईयर ट्रक में 350 ml जो मात्रा होती है उसमें 55% प्लाज्मा होता है और 45% सेल्स होती है जिसमें RBC, WBC, प्लेटलेट वगैरह होती है। तो ये 55% प्लाज्मा इसका बहुत ज्यादा उपयोग देखा गया है। आमतौर प्लाज्मा को -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है एक साल तक के लिए हम सुरक्षित रख सकते हैं और इनको शॉक या बर्न जले हुए मरीजों आदि को जो है ये थेरेपी की जाती है। तो COVID-19 के इलाज में भी कई देशों में ये पद्धति अपनाई जा रही है कि जिन लोगों को कोरोना या COVID-19 का संक्रमण हो चुका है उसके बाद वो रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो उसके कुछ समय पश्चात उनके शरीर में प्लाज्मा में वो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं जो कि कोरोना से लड़ने में काम आती हैं। तो इस तरह के रोगी जो उनको अगर वो प्लाज्मा दिया जाए तो उसमें काफी लाभ मिलता है। हालांकि इसको खुली छूट नहीं दी है ICMR ने, उनके कुछ नियम है, इस पर रिसर्च अभी चली रही है। जिन केंद्रों को उन्होंने मान्यता दी गई है कि जहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया जा रहा है या रिसर्च की जा रही है वहाँ पे ये बखूबी इस्तेमाल में आ रही है और इसके अच्छे सकारात्मक रिजल्ट भी देखे गए हैं।
0: जी, जैसे हमने अभी सुना था कि लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा प्लाज्मा थेरेपी और इनका इस्तेमाल करके किया गया था। कुछ पूर्व में पेशेंट थे उनके एंटीबॉडीज को निकाल करके दूसरे मनुष्य में डाला गया था, तो उसमें कितने रक्त की या कितने परसेंट एंटीबॉडीज की जरूरत पड़ती है, कितना मतलब वॉल्यूम होना चाहिए ताकि वो इफेक्टिव हो सके? ऐसा तो नहीं कि थोड़ी सी मात्रा में ही काम चल जाता होगा?
1: तो प्लाज्मा थेरेपी के लिए जो है एक विशेष रूप से मशीन आती है जिसको मरीज के शरीर पे लगाया जाता है। ब्लड जो है वो उस मशीन में खींचा जाता है, होल ब्लड खींचा जाता है और प्लाज्मा को वो मशीन सेपरेट कर लेती है और बाकी जो अवयव होते हैं रक्त के RBC, WBC, रेड सेल्स, ये वापस डोनर के शरीर में चले जाते हैं और जो भी प्लाज्मा हमको जितना भी उसकी डोज हमें निकालनी होती है वो मशीन कैलकुलेट करके वो निकाल लेती है और उस प्लाज्मा को हम संक्रमित व्यक्ति है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी प्लाज्मा के डोनर होते हैं उनको पहले चेकअप किया जाता है, थरोली चेकअप करते हैं, उनका बॉडी वेट 50 kg से अबव होना चाहिए, वो स्वस्थ होने चाहिए और उनके शरीर में जब एंटीबॉडीज बनी है तभी इस प्लाज्मा को हम इस्तेमाल में कर सकते हैं। इसमें अभी रिसर्चेज चल रही है।
0: अब प्रश्न आता है अन्य, जैसे आपने कहा प्लेटलेट RBCs और जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनका किस तरह इस्तेमाल हो सकता है?
1: अन्य अवयव जैसे मैंने बताया जो है फैट सेल्स हैं, उसको शरीर में खून की कमी है या इसे एनीमिया कहते हैं और जिसमें किसी भी कारण से खून का बहाव हो रहा हो, खून की कमी हो रही हो, रक्त अल्पता हो, तो उसमें फैट सेल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्लेटलेट को जहाँ पे हमें शरीर में प्लेटलेट की कमी हो जाती है, जैसे इसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी कहते हैं, जैसे डेंगू के केस में बहुत ज्यादा प्लेटलेट कम हो जाती है, उन केसेस में जो है प्लेटलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और फैक्टर 8 या फैक्टर 9 जो है वो हीमोफीलिया के जो मरीज होते हैं जिनमें खून के पट्टे नहीं बन पाते हैं और खून बहता रहता है, उनमें ये क्लैपिसिप या क्लॉटिंग फैक्टर 8-9 का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह से जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं या की जो सेल्स होती हैं लिम्फोसाइट्स वगैरह होती हैं, इनको भी आजकल सेपरेट करके अलग तरीके से जो है उसको फिल्टर करने के पश्चात जिसको जरूरत होती है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो हर एक अवयव का आजकल इस्तेमाल किया जाता है।
0: अब प्रश्न ये आता है कि एक रक्तदाता के लिए कितना स्वस्थ रक्तदाता को होना चाहिए, उसका क्या मानक होते हैं ब्लड डोनेट करने के, रक्तदान करने के?
1: प्रत्येक रक्तदाता के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है कि वो उस पर खरा उतरे। जैसे उसकी आयु देखी जाती है 18 से 60 वर्ष के बीच में होना चाहिए। हालांकि अब 1-8 साल से जो है इसको आयु को थोड़ा सा बढ़ा करके 65 साल तक भी जो अगर रक्तदाता स्वस्थ हो तो वो भी अपना रक्तदान कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमें 350 ml रक्त लेना है तो उसका वजन जो है 45 kg से अधिक होना चाहिए और 500 ml वाला अगर ब्लड का पैक है वो कलेक्ट करना है तो उसका वजन 50 kg से ऊपर होना चाहिए। और दूसरा ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल लिमिट में होना चाहिए और कोई भी ऐसे इस तरह की बीमारी ना हो, जैसे अस्थमा या लीवर डिजीजेज ना हो, हार्ट की कोई बीमारी ना हो, कैंसर ना हो या उसको पूर्व में कोई संक्रमण ना रहा हो, एड्स वगैरह की कोई कभी ऐसा संक्रमण ना हो, HIV की कोई हिस्ट्री ना हो, गुप्त की कोई ऐसी शिकायत ना हो, तो हर

0: तरह से जब वो रक्त दाता स्वस्थ होगा वही रक्त दे पाएगा, उसका पूरा हिस्ट्री ली जाती है, पूरा उसकी जांच की जाती है, तभी रक्तदाता का रक्त हम इस्तेमाल करते हैं या उसको डोनेट करवाते हैं।
1: कहा भी गया है रक्तदान महादान, तो ये जो रक्तदाता रक्तदान करता है उसके बाद उसको आप कितने समय अपने पास रखते हैं या कितने समय उसको मेडिकल सुपरविजन की जरूरत पड़ती है ताकि कोई प्रॉब्लम तो ना आए, कितनी बार वो रक्त दे सकता है?
0: प्रत्येक रक्तदाता को रक्तदान के पश्चात कम से कम आधा घंटा रक्त कोष में अपनी सुपरविजन को रखा जाता है ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। अमूमन देखा गया कि 350 ml रक्त दान के पश्चात कोई कमजोरी महसूस नहीं होती है, कोई रिएक्शन नहीं होते हैं, कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आती है। फिर भी कभी कभी ये देखा गया है कि कुछ रक्तदाताओं को थोड़ा सा चक्कर वगैरह आता है या जो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है कि जो है शायद ये रक्तदान के पश्चात हमें कमजोरी होती है, तो ऐसे केसेस में जो है वहाँ तक उनका मैनेजमेंट करके जब वो ठीक हो जाते हैं तभी उनको वहाँ से रक्त कोष से बाहर जाने दिया जाता है। और रक्तदान के पश्चात उनको प्रचुर मात्रा में फ्रूट जूसेस वगैरह, पानी की ज्यादा मात्रा या तरल पदार्थ और आपके बिस्किट्स वगैरह ये उनको वहाँ पे दिए जाते हैं ताकि उनको कोई इस तरह का कमजोरी महसूस ना हो। और रक्तदाता को सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, उसको ये भी समझाया जाता है कि सर्टिफिकेट के काफी उपयोग होते हैं, और उसके पश्चात वो 3 से 4 महीने के पश्चात एक बार फिर से रक्तदान के लिए तैयार हो सकते हैं, क्योंकि दिए हुए रक्त की आपूर्ति 1 से 2 महीने के बीच में हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की अंतराल पर पूरा रक्त के जितने भी अवयव वो डोनेट हुए थे वो सब बन जाते हैं और 3 से 4 महीने पश्चात वो फिर से रक्तदान कर सकते हैं। अमूमन साल में 3 से 4 बार एक स्वस्थ रक्तदाता अपना रक्तदान कर सकते।
1: और रक्तदान में आने से पूर्व या कैंप में आने से पूर्व आदमी को क्या कुछ खा के आना चाहिए?
0: रक्तदान से पूर्व प्रत्येक रक्तदाता को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इसे कोई किसी तरह की तकलीफ ना हो रही हो, महसूस न कर रहा हो, अपने को अस्वस्थ महसूस न कर रहा हो, और रक्तदान से पूर्व जो है उन्होंने नाश्ता जरूर किया हो या खाना जरूर खाया हो, खाली पेट कभी रक्तदान नहीं करना चाहिए। और कोई भी दवा जैसे एस्पिरिन वगैरह जो कि क्लॉटिंग एंटी प्लेटलेट फैक्टर का काम करती है, तो एस्पिरिन या डिस्पिरिन नाम की जो दवा है अगर वो उन्होंने ली है तो वो रक्तदान नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये दुष्प्रभाव देखे गए हैं। कोई भी दवा का इस्तेमाल रक्तदान से पहले न करें और प्रचुर मात्रा में तरल पेय पदार्थों का उपयोग करें और स्वस्थ होने के पश्चात ही जो है आप रक्तदान में अपनी भागीदारी करें।
1: यानी दवा और नशे का सेवन उससे पूर्व ना हो?
0: हाँ, नशे का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और उसके जो नशे का सेवन करता है उसे रक्तदान से वंचित रखा जाता है।
1: एक प्रश्न मेरा ये आता है कि आप जैसे पिथौरागढ़ जैसे दूरस्थ इलाके में हैं तो वहाँ पर रक्त की कैसी स्थिति, और आप अक्सर कैंप लगाते हैं चंपावत से लेकर के मुंशारी तक थल तक के, तो क्या सब जगह ब्लड बैंक तो अवेलेबल नहीं होगा?
0: हमारे प्रत्येक जनपद में एक रक्त कोष उपलब्ध है और सभी जगह रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रक्तदान शिविर समय समय पर लगाए जाते हैं और खुद भी जो है स्वयंसेवी संस्थाएं इस समय काफी आगे आ रही हैं। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार या प्रत्येक स्टेट की जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने जो है एक पोर्टल भी इससे ई रक्त करके ऑनलाइन रक्त सेवा शुरू की है और उस ई रक्त में लॉग इन करने के पश्चात आप नियरेस्ट ब्लड बैंक को सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर कितना रक्त उपलब्ध है, कौन से ब्लड ग्रुप का रक्त उपलब्ध है आप उससे आसानी से पता लगा सकते हैं अपने मोबाइल पर ये ऐप डाउनलोड करके। ये काफी अच्छी सुविधा दे दी गई है और इससे आपको पता लगेगा कितना रक्त हमारे कोर्स में कौन कौन सी जगह पर उपलब्ध है और हमें ये उपलब्ध हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये भी इससे आप सुनिश्चित कर सकते हैं।
1: तो विश्व रक्तदाता दिवस पर आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे?
0: रक्तदाताओं से यही अपील करूंगा कि वो अपने अपने निकट के रक्तदान शिविरों में जाकर के रक्त कोष में जाकर के अपने को स्वस्थ रखते हुए समय समय पर रक्तदान करें, जिससे कि गंभीर रोगियों को के उपचार में आपका विशेष योगदान हो, आपको पुण्य पुण्य मिलेगा, आपको से एक अनुभूति भी होती है कि हमने रक्तदान किया और हम समाज के या लोगों के काम आ रहे हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि वो रक्तदान में अपना सहयोग करें।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने आकाशवाणी से बातचीत की, आपका जानकारी के बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आइए आज उन्हें धन्यवाद दें और उनके लिए इस दिन को मनाएं जो स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं या इसकी शुरुआत करते हैं। जरूरत है लोगों में जागरूकता की ताकि आवश्यकता पर अधिक से अधिक जिंदगी बचा सके। आज जरूरत भी है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कार्यक्रमों के प्रचलन की जो सशक्त करते हैं और ताकत देते हैं ताकि सभी राष्ट्रों का रक्त संबंधित कार्यक्रम मजबूत हो सके। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट सोसाइटी आज इस कार्यक्रम में लगी है। आइए हम भी इनके हाथ मजबूत करें। हम तो यही कहेंगे कि रक्तदान करके देखिए अच्छा लगता है। तो अगले कार्यक्रम तक इसी आशा के साथ कि आज कई लोग रक्तदान भी करेंगे, अपने मित्र संजय जोशी को आज के इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे विश्व रक्तदाता दिवस पर उत्तराखंड सरकार में NRHM के पूर्व निदेशक डॉक्टर नरेंद्र शर्मा से भेंटवार्ता पर आधारित कार्यक्रम। प्रस्तुतकर्ता थे संजय जोशी। इसी के साथ हमारा आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप News on AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के,
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
5: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेता

0: नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशन को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और सीएसआईआर ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल x@AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से

0: अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी हैं। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
1: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
2: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान की इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ते ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार आईएमए से पास आउट 9 महिला कैडेट, राष्ट्रपति द्रौपदी

0: द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों एंड जॉइंटली इनॉग्रेट भारत इनोवेट्स इवेंट इन नीस टुडे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग लॉन्ग लाइफ मून लैंडर्स capable of surviving up to 200 days, says ISRO chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch-rivals Pakistan in Birmingham this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Prime Minister Modi interacted warmly with members of the community and witnessed colourful cultural performances featuring classical Indian dance forms including Kathak, Odissi, Bharatanatyam presented by French and Italian artists.

और अब बच्चों बारी है आप नन्हे मुन्ने बच्चों की विविध प्रस्तुतियां सुनने की। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस भक्ति वंदन के साथ, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं कनिका।

0: तो बच्चों, आप सभी के साथ मिलकर हम भी परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी सदा नेक राह पर चलें, बुराइयों से दूर रहें और सदा सच्चाई अच्छाई के मार्ग पर चलने का प्रयास जरूर करें। बच्चों, अभी हमने जाना आकाशवाणी अल्मोड़ा की स्थापना दिवस के बारे में, और अब बच्चों रेडियो पर ही एक कविता लेकर हमारे साथ हैं नन्ही युवान।
1: पुराने वक्त से सा दिखता था पर दिल से आवाजें निकलती थी, रेडियो जब चलता था घर में तो खामोशी भी मुराती थी। सवेरे सवेरे भजन सुनाते, शामों को फिल्मी गीत गाते, कभी खबरें कभी किस्से, हर नई बातें बतात। अम्मा चूल्हे पर रोटी सेकती, रेडियो पर गीत बजते जाते, पापा अखबार पढ़ते रहते, कानों से शब्द उतरते जाते। आज स्मार्टफोन की दुनिया में शायद भूल उस यार को, पर अब भी दिल ढूंढता है रेडियो के उस

तो प्यारे बच्चों, ये तो हमने जानी बहुत सी बातें रेडियो के बारे में, है ना। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीवन में सही मार्ग दिखाने हेतु हमें गुरु या पथ प्रदर्शक की जरूरत तो होती ही है, है ना। और माता पिता तो एक गुरु के रूप में सदा हमारे साथ खड़े रहते हैं, है ना बच्चों। तभी तो बच्चों परिवार का साथ होना बेहद जरूरी है। बच्चों, किसी भी परिवार को चलाने के लिए उसमें सभी सदस्यों का होना बेहद जरूरी है, है ना। और तभी तो कहते हैं संस्कारों की नींव है ये परिवार, संवेदनाओं को जीवित करता है ये परिवार, हर त्योहार में रंग भरता है परिवार, घर आंगन को रोशन करता है ये परिवार, और बड़े बुजुर्गों से ही है परिवार की आन बान और शान, है ना बच्चों। बच्चों, परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें आम तौर पर माता पिता, बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी जैसे अनेक रिश्ते समाहित होते हैं, है ना। और इन्हीं रिश्तों से मिलकर बनता है हंसता खिलखिलाता परिवार। परंतु बच्चों, इस खुशहाल परिवार की शिक्षा उन्नति हेतु कई लोग अपने परिवारों से दूर भी रहते हैं। दूर विदेशों में रहकर वहाँ मेहनत कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तभी तो बच्चों, विदेशों में कार्यरत प्रवासी श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है, जो कि हमें ये याद दिलाता है प्रवासी श्रमिकों का योगदान केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इन प्रवासी श्रमिकों के प्रयासों से न केवल उनके परिवारों का जीवन सुधरता

0: बल्कि उनके मूल देशों की अर्थव्यवस्था और समाज भी सशक्त होता है। तो बच्चों, बात जहाँ हमने परिवार पर करी ही है, तो चलिए बच्चों परिवार पर ही हो जाए एक कविता नन्ही प्रियांशी से।
1: माँ की ममता, पापा का साया, भाई की बाहों में है माया, बहन की बातें, दादी की कहानियाँ, दादा का प्यार और नानी की निशानियाँ, चाचा चाची, मामा मामी, सब मिलते हैं जैसे हो एक कहानी, हर रिश्ता अपनी जगह अनमोल, इनसे मिलती जीवन को धड़कन और बोल, कभी हंसी कभी नोक झोंक, फिर भी रहते हैं सब एक लोग।
0: भाई वाह प्रियांशी, आपने तो अपनी कविता से हमें परिवार के सभी रिश्तों के बारे में कितना कुछ बता दिया है ना।

0: तो बच्चों, ये तो हमने जाना अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस के बारे में, है ना। और अब बच्चों, धरती माँ की हरियाली पर क्या है कहना नन्ही सौम्या का, चलिए जानते हैं इस कविता से।
1: धरती हमारी जननी है, धरती है हमारी पालनहार, ये करती हमारी देखभाल। आओ मिलकर प्रण करें, धरती को हरी भरी और खुशहाल बनाएं। इसकी गोद में हमने देखा देखा पूरा संसार, इसकी गोद में हमने खेला खेले खेल हजार। अपने बच्चों से करती बेहिसाब प्यार, आओ मिलकर प्रण करें, धरती को हरी भरी और खुशहाल बनाएं। पशु पक्षियां मिलकर रहते, धरती करती इनकी देखभाल। पक्षियों की ध्वनि प्यारी, धरती की ये शोभा बढ़ाते। आओ मिलकर प्रण करें, धरती को हरी भरी और खुशहाल बनाएं।
0: सच है बच्चों, हम सभी को धरती की हरियाली को बचाने का संकल्प जरूर लेना होगा, क्योंकि बच्चों, पिघलती बर्फ, बढ़ती गर्मी, प्रदूषण, पानी की खपत, ये सभी छोटी छोटी समस्याएं धीरे धीरे हमारी धरती की हरियाली को समाप्त कर रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें सूखा, मरुस्थलीकरण जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और मरुस्थलीकरण जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए तो बच्चों, प्रत्येक वर्ष 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखा से निपटने का विश्व दिवस भी मनाया जाता है, और जिसका उद्देश्य है मरुस्थलीकरण और सूखे की गंभीरता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। तो प्यारे बच्चों, धरती को हरा भरा बनाए रखने में अपनी नन्ही परंतु महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएं। और जब आप ऐसा करेंगे, तभी तो बच्चों हम ये गुनगुना भी पाएंगे

0: तो बच्चों, जहाँ बात हम हरियाली पेड़ पौधों पर कर रहे हैं, तो चलिए आज पेड़ पौधों के अद्भुत संसार क्रम में जान लेते हैं पौष्टिकता से भरपूर अंजीर वृक्ष के बारे में। मीनाक्षी से।
1: उत्तराखंड में अंजीर खूब पाया जाता है। ये एक ऐसा फल है जो औषधीय गुणों से भरपूर है। अंजीर खाने से सेहत को कई फायदे होते हैं। यहाँ पहाड़ों में लोग इसे पेड़ से तोड़कर खाते हैं। सूखने के बाद ये फल और लाभकारी हो जाता है। अंजीर वजन कम करने से लेकर चिड़चिड़ापन सहित अन्य परेशानियों को दूर करने में कारगर है। अंजीर बहुत ही पौष्टिक फल है, जिसे सूखे और ताजे दोनों रूपों में खाया जाता है। सूखे अंजीरों को सूखे मेवों में गिना जाता है। अंजीर खाने से शरीर को अनेकों फायदे मिलते हैं। अंजीर खाने से खून साफ होता है, एनीमिया रोग दूर होता है, पाचन संबंधी रोग जैसे भूख न लगना और कब्ज के साथ साथ जुखाम और दमा जैसे रोगों में भी काफी फायदा मिलता है। अंजीर के पत्तों में विटामिन ए, बी, सी के मैग्नीशियम, कॉपर और फॉलिक एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। इनमें एंटी डायबिटिक गुण भी होते हैं। अंजीर के पत्तों की चाय पीने से शुगर कंट्रोल में रहता है। अंजीर के पत्तों में जिंक और विटामिन सी होता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। अंजीर के पत्तों को पानी में उबालकर पीने से शुगर कंट्रोल में रहता है।
0: तो बच्चों, पेड़ पौधों के अद्भुत संसार क्रम में अंजीर वृक्ष के बारे में हमने मीनाक्षी से कितना कुछ जाना, है ना? तो बच्चों, ये तो हमने जाना धरती की हरियाली के बारे में, है ना? प्यारे बच्चों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हम

हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, है ना। और इस आजादी का जहां पूरे भारत में जश्न मनाया जा रहा था, तो वहीं इस खुशी के माहौल के बीच गोवा एक ऐसा राज्य था जो गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। जब पूरा देश आजाद हवा में सांस ले रहा था, तो वहीं दूसरी ओर गोवा के लोगों को कई अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा था। बच्चों, ऐसा इसलिए था क्योंकि गोवा में ब्रिटिशर का नहीं बल्कि पुर्तगालियों का शासन था, लेकिन गोवा वासियों ने हार नहीं मानी। वहीं आजादी के लिए 14 साल के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार 19 दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा को मुक्ति मिली। बच्चों, गोवा की स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत 18 जून 1946 को हुई थी और जिसे हर साल गोवा क्रांति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बच्चों, गोवा क्रांति दिवस के दिन स्कूलों कॉलेजों में अनेक तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित भी

0: 18 जून 1946 को हुई थी और जिसे हर साल गोवा क्रांति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बच्चों, गोवा क्रांति दिवस के दिन स्कूलों कॉलेजों में अनेक तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित भी किया जाता है। तो बच्चों, ये तो बात हुई गोवा क्रांति दिवस के बारे में। और अब बच्चों, आज है जून माह का दूसरा रविवार, है ना, जिसमें कि हम लेकर आते हैं आओ सैर करें क्रम। तो चलिए, आज आपको आओ सैर करें क्रम में लिए चलते हैं गोवा की सैर पर कनिका के संग।
1: रिसर्च स्टडी और रिपोर्ट्स के अनुसार स्टैंड के लिए गोवा फैक्ट्स यहां दिए गए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा देश का सबसे छोटा राज्य है। गोवा राज्य का एक तिहाई हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। गोवा में दो स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं, पहला 15 अगस्त, दूसरा 19 दिसंबर। 450 साल पुर्तगालियों ने यहां शासन किया था। तेजी से बढ़ता पर्यटक आकर्षक होने के कारण गोवा को भारत के सबसे धनी राज्यों में से एक माना जाता है। देश का पहला मेडिकल स्कूल राजधानी पणजी में स्थित है। यह न केवल देश का बल्कि एशिया का पहला मेडिकल स्कूल है। गोवा की दूध सागर झरने को पूरे भारत में दूसरे सबसे ऊँचे झरने के रूप में पहचाना जाता है।
0: तो बच्चों, आज हमने आओ सैर करें क्रम में गोवा के बारे में कनिका से कितना कुछ जाना, है ना। तो बच्चों, आप भी जब भी कहीं घूमने फिरने जाएं तो दीदी के साथ अपने सैर की यात्रा जरूर साझा करें। प्यारे बच्चों, जब भी आप नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी मिठास भरी आवाज में अपनी कविताएं हमसे साझा करते हैं, तो हमारे कार्यक्रम में तो चार चांद लग जाते हैं, है ना। और आज ऐसे ही अपनी प्यारी तुतलाती आवाज में नन्हे आरव हमें क्या सुनाना चाहते हैं?
2: सुबह सवेरे तुम जग जाना, रोज टहल कर रोज नहान, कंदी आदत कभी न डालो, कल के ऊपर काव न डालो, तुरंत बड़ों की मान, उन्हें जवाब न देना जानो, बच्चों को भी नहीं था लूटे तो उन्हें बनाना।
0: भाई वाह नन्हे आरव, कितनी सीख भरी कविता सुनाई आपने। सुबह जल्दी उठना, रोज नहाना, कल के ऊपर काम ना टालना, ये सभी आदतें ही सदाचार शिष्टाचार हैं, जो कि हमें एक सुव्यवस्थित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। तो चलिए, आज सदाचार अच्छे आचरण के बारे में जान लेते हैं शिक्षिका दीपाली से।
3: बच्चों, आज आपको नैतिकता आचरण या सदाचार के बारे में जानते हैं। छोटे बच्चों में नैतिकता, अच्छा व्यवहार, सदाचार होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके सामाजिक विकास, नैतिक चरित्र के विकास और समग्र कल्याण के लिए आवश्यक है। सदाचार से बच्चे दूसरों के साथ सकारात्मक तरीके से बातचीत करना सीखते हैं, अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेते हैं और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं, जो कि हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी को अग्रसित करती है। सदाचार बच्चों को दूसरों के साथ बेहतर तरीके से बातचीत करने में मदद करता है, जिससे वे स्कूल, घर और समुदाय में सामाजिक संबंध बनाने में सक्षम होते हैं, जो ये सामाजिक विकास की ओर अग्रसर कर। सदाचार बच्चों को ईमानदारी, सम्मान, दया और जिम्मेदारी जैसे नैतिक मूल्यों को विकसित करने में मदद करता है। आत्मविश्वास, जब बच्चे सदाचार का अभ्यास करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे दूसरों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार कर सकते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। सदाचार बच्चों को खुश और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करता है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बना सकते हैं और अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। सदाचार बच्चों को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है, जिससे वे मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बच्चों, हम कहते हैं कि सदाचारी बनो, अच्छा व्यवहार करो, तो हम सदाचार सिखाने के तरीके के बारे में भी जानते हैं। माता पिता और शिक्षक

0: बच्चों को सदाचार का उदाहरण देना चाहिए। जब बच्चे देखते हैं माता पिता और शिक्षक कैसे सदाचार का पालन करते हैं तो वे इसे बेहतर तरीके से समझने और सीखने की अधिक संभावना रखते हैं। बच्चों के साथ सदाचार के बारे में बात करना और उन्हें इसके महत्व को समझाना महत्वपूर्ण है। यह उन्हें सदाचार के सिद्धांतों को समझाने और उनका पालन करने में मदद कर सकता है। जब तक हम में नैतिकता या सदाचार अच्छा व्यवहार करने के गुण नहीं होंगे तो हम एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। तो हम बच्चों से निवेदन करती हूँ कि अपने अंदर सदाचार की भावना लाएं और अच्छा व्यवहार करें।
1: तो प्यारे बच्चों, जाना ना आपने पाली मैम से, अच्छा जीवन जीने के लिए सदाचार नैतिक आचरण का होना कितना जरूरी है ना? तो बच्चों, ये तो बात हुई अच्छे आचरण पर। और अब बच्चों, अगली प्रस्तुति लिए हमारे साथ हैं कनिका।
2: सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी डाल कृपाड़ कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की कथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, निकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सेन घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
1: सच है बच्चों, खूब लड़ी मर्दानी वह तो थी झांसी की रानी। और इसी सप्ताह 18 जून को वीरांगना लक्ष्मीबाई के बलिदान को नमन करने हेतु महारानी लक्ष्मीबाई शहादत दिवस भी मनाया जाता है। बच्चों, 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी नायिका और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम वीरता की श्रेणी में सर्वोपरि है। उनका जीवन न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। जो भारत भूमि की महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था। मणिकर्णिका इनके बचपन का नाम था और इन्हें प्यार से मनु कहकर भी पुकारते थे। मात्र 4 वर्ष की आयु में इनकी माता का देहांत हो गया था। इसके बाद बचपन से ही इन्होंने युद्ध कला लेना प्रारंभ कर दिया और अपने शस्त्रों को ही अपना मित्र बनाया। और महज 12 वर्ष की आयु में युद्ध कला में ये इतनी पारंगत हो गई कि बड़े बड़े अनुभवी योद्धाओं को भी पराजित करने लगी। और इसके उपरांत वर्ष 1848 में झांसी के शासक महाराजा गंगाधर राव से इनका विवाह हो गया और अपने पुत्र के वियोग से गंगाधर राव भी चल बसे। लेकिन बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई जी ने हार न मानी। उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया और उसे ही राजगद्दी में बिठाने का निर्णय लिया, क्योंकि बच्चों, वो जानती थी उनके पति गंगाधर राव की मृत्यु के उपरांत उनके राज्य पर अंग्रेजी सरकार अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगी। बस बच्चों, फिर क्या था, अपनी झांसी के लिए रानी लक्ष्मीबाई जी ने अनेक संघर्ष किए, युद्ध लड़े और अंग्रेजी अधिकारियों को शेरनी की तरह दहाड़ कर बोली, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। मातृभूमि की रक्षा करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो गई। बच्चों, मातृभूमि के लिए इससे बड़ा कोई सम्मान, कोई त्याग हो ही नहीं सकती। बच्चों, हमें भी रानी लक्ष्मीबाई जी के जीवन से वीरता, साहस और भी अनेक गुणों को अपने जीवन में आत्मसात जरूर करना चाहिए और सदा देश प्रेम की भावना बनाए रखनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई शहादत दिवस के उपलक्ष्य पर आइए उन्हें करते हैं
3: जय

और अब बच्चों चलते चलते आपको ये भी बता दें कि इसी सप्ताह 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाएगा। और बच्चों ये दिन शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनकी मदद करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर 2000 को 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है बच्चों कि शरणार्थियों के साथ हो रहे गलत व्यवहार, उनकी सुरक्षा और भलाई के प्रति जागरूकता फैलाना। तो बच्चों ये दिवस शरणार्थियों के प्रति करुणा और सहानुभूति को बढ़ावा देता है और ये दर्शाता है कि शरणार्थी सामान्य लोगों की तरह ही हैं, बस विषम परिस्थितियों से गुजरने के कारण उन्हें करुणा, सहारे और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। और अब बच्चों आपकी जरा दिमागी कसरत करा ली जाए, तो चलिए बूझ डालिए नेहा की ये पहेलियाँ।

0: जो दिन में सोता है रात में चलता है और उसके पैर नहीं है, बताओ वो क्या है?
1: एक तकिया।
0: जड़ से शुरू होकर ऊंची ऊंची शाखाएं फैलाता है, हर रूप में सौंदर्य बिखेरता है, बताओ वो क्या है?
1: पेड़।
0: सफेद कपड़ा बहुत पुराना, रात्रि को आता है दिन को छोड़ जाता है, वह क्या है?
1: चांद।
0: दिन में सोना रात में चांदी, यह क्या है?
1: तारा।
0: हर किसी का अपना सिर्फ एक ही रंग का, दिन में आया रात्रि में गया, बताओ उसका नाम क्या है?
1: सूरज।
0: हरी चादर ओढ़े बारिश में खाते हैं पीले पीले दाने, बताओ क्या?
1: भुट्टा।

0: भाई वाह बच्चों, बूझ डाली ना आपने नेहा की ये पहेलियाँ। और अब बच्चों, इन पहेलियों के साथ ही आपके ज्ञान को और बढ़ाते हैं जतिन की बहुत सी रोचक जानकारियों से।
1: स्कूल में हमने कुछ अद्भुत विज्ञान सीखा है, जैसे आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, आवर्त सारणी और डीएनए प्रतिकृति आदि। यह वैज्ञानिक ज्ञान हमारे शैक्षणिक जीवन में आगे अध्ययन की जाने वाली अन्य सभी आश्चर्यजनक चीजों के लिए आधार तैयार करता है। लेकिन विज्ञान केवल आविष्कारों या नवाचारों के बारे में नहीं है, यह आपको हमारे दैनिक जीवन में आश्चर्यजनक तथ्यों से चकित कर सकता है। हमारे ग्रह पर सौर मंडल के तारों की तुलना में अधिक पेड़ है। पानी एक ही समय में उबल और जम सकता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। टिड्डों के पेट में कान होते हैं। एक कॉकरोच बिना सर के 1 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। छिपकलियां सूंघने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करती है। एक बादल का वजन 10 लाख पाउंड तक हो सकता है। हम अंतरिक्ष में डकार नहीं ले सकते। पुरुषों में रंग अंधता की समस्या महिलाओं से अधिक होती है। एक व्यक्तिगत रक्त कोशिका को पूरे शरीर का चक्कर लगाने में लगभग 1 मिनट का समय लगता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ धातुएं हवा और पानी के संपर्क में आती है तो फट जाती है। दरअसल हवा के संपर्क में आने पे ये धातु तुरंत ही ऑक्सीकृत हो जाती है, क्योंकि ये धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। इन धातुओं में सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम और सीजियम प्रमुख है। उसके बाद जब इन धातुओं को पानी में डाला जाता है तो विस्फोट होता है। ये सभी क्षार धातुएं हैं और इनकी बाहरी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण वे आसानी से इस इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अन्य धातुओं के साथ बंधन बना लेते हैं।
0: तो बच्चों, जतिन की रोचक जानकारियों से हुई ना आपकी दिमागी कसरत। बच्चों, यूं ही आप भी अपने ज्ञान को बढ़ाएं और संपूर्ण जग को ज्ञान रूपी प्रकाश से जगमग करते जाएं। क्योंकि बच्चों, जब तक हम सीखते हैं तब तक हम निरंतर आगे बढ़ते हैं। और ज्ञान से सिर्फ विचार ही नहीं बच्चों, हम सही मार्ग भी चुन पाते हैं। और अब बच्चों, वक्त हो चला है बालवाटिका कार्यक्रम से विदा लेने का। और भी नन्हे मुन्ने बच्चे जो बालवाटिका कार्यक्रम से जुड़ना चाहें, अपनी रचनाएं, अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करना चाहते हैं, तो इसके लिए नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी balwatika1986@gmail.com। और अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9411001122। और पत्र भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम बाल वाटिका द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अल्मोड़ा। पिन कोड संख्या है 263601। और अब बच्चों, मैं आपकी दीदी मेघा रावत लेती हूँ आपसे विदा। अब बच्चों, मिलेंगे अगले रविवार एक नए अंक में आप नन्हे मुन्ने बच्चों की विविध प्रस्तुतियों के संग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,
2: जय हिंद।
3: अभी बच्चे सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम बाल वाटिका। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
5: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
4: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में बताया कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा था। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी मौजूद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने राजा को मॉनसून के स्वागत का त्यौहार बताया। उन्होंने कहा कि त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले समग्र स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका का उल्लेख किया है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में योग सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि योग उन शाश्वत मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी में फीफा विश्व कप 2026 में ब्राजील ने ग्रुप सी के मैच में मोरक्को के साथ 1-1 से ड्रॉ

0: खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। इससे पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया में कतर और स्विट्जरलैंड के बीच भी ग्रुप बी का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। इस बीच हैती और स्कॉटलैंड का मैच जारी है। आज के अन्य मैचों में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप डी में तुर्की से सवेरे 9:30 बजे और जर्मनी रात 10:30 बजे ग्रुप ई में कुराकाओ का सामना करेगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:05 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत निर्झर। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का आज के गीत निर्झर कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी के साथ मैं हूं पूजा। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओ, हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक के आसिफ का जन्म आज ही के दिन यानी कि 14 जून साल 1922 को इटावा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिल्म जगत के इस महान फिल्मकार का पूरा नाम करीम आसिफ था। इन्होंने भारतीय सिनेमा की सर्वकालिक क्लासिक फिल्म मुगले आजम बनाई थी। बहुत कम फिल्में और बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल करने वाले फिल्मकारों में के आसिफ का नाम शायद अकेला ही है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इन्हीं की फिल्म मुगले आजम के इस गीत के साथ। आवाज़ है लता मंगेशकर की।

0: ये गीत फिल्म मुगले आजम से था लता मंगेशकर की आवाज़ में। शकील बदायूनी के बोल थे नौशाद का संगीत और इस गीत की फरमाइश की थी उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा ने। अडारनाथ गांव छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत की फरमाइश की थी बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दीपेंद्र भूषण, संस्कृति, पौरुष और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कुलदीप, कंवल और इनके परिवार के सभी सदस्य। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा ने। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, वर्षा, सुमन, देवाश्री, कीर्ति भारती और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। कस्बा परारा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द राहुल और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।
1: This June, make every drive feel smoother and every journey special.
2: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
1: Equipped with features like 360-degree camera, head-up display and safety through 6 airbags.
2: The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month.
1: Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
2: Hurry, offer still stocks last. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
3: Nexa.
4: सुनील, घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
5: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है।
4: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
5: बल्ब, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI।
4: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
5: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
4: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
6: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
7: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: गीत निश्चय कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत आइए सुनते हैं, अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में साजन फिल्म से। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है समीर ने और फरमाइश की है आप सभी ने। बागपत से संजय ढिंगिया, ममता ढिंगिया और कुणाल ढिंगिया। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शहादरा दिल्ली से हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना और रिधान खुराना। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, ईशान छिम्पा और पूजा परिहार। विरंगाम गुजरात से हैं अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश कुमार भावसार, जैमिन भावसार, राकेश कुमार भावसार और इनके परिवार के सभी सदस्य। मोटक्का माफी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस, मन पटेल और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत की फरमाइश की है सीतामणि से अकरम हुसैन बेगम, इशरत अकरम।

वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वकी, नदीम अकरम, शमीन ममता रानी, पूनम कुमारी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।

0: panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
2: गीत निशा कार्यक्रम में लीजिए अब पेश है मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में जब जब फूल खिले फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। सब्जी मंडी बुलढाणा से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुजू बाबा, आयजा अनम, मुदस्सिर हुसैन और इनके परिवार के सभी सदस्य, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोड़ाना। इसी गीत को सुनना चाहते हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, डब्बू और बब्बू। महाराष्ट्र खुपटी से बंटू लोहार, पोपलघट, माया, शिवांश, चंद्रकला, देवीदास पोपलघट और इनके परिवार के सभी सदस्य। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। सदर बाज़ार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा।

जब जब फूल खिले फिल्म के इस गीत के बाद कार्यक्रम का अगला गीत है दीवाना फिल्म से कुमार सानू की आवाज़ में। समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत और इस गीत की फरमाइश हमसे की है आकोट से विनायक बैंडे, श्रीमती मंगला बैंडे, विजय, शुभम बैंडे, पवन और संजीव। इसी गीत की फरमाइश की है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सिटी दीवाना ने। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीमुन्ना, दानिश आसिफ शेख।

एक और इनके परिवार के सभी सदस्य शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सजदारानी और हिना कौसर, खैल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्म मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू और भाविक सिक्का। इसी गीत की फरमाइश की है फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। छत्तीसगढ़ से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी, नीरा वर्मा, ज्योति और प्रहलाद वर्मा।

0: summers into inspiring getaways. Step into a season of refined drives with exclusive benefits on your favorite Nexa car.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: Enjoy amazing benefits up to ₹25,000. Offer valid till 30th June.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today. Hurry. Offers for a limited time only. TNC apply.
2: गीत निशा कार्यक्रम में लीजिए पेश है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में हसीना मान जाएगी फिल्म का गीत। अख्तर रोमानी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। सुनना चाहा है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी इसी गीत की फरमाइश की है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। तल्लीताल नैनीताल से हैं मोहन सिंह रावत, ममता रावत और वानिया। पदमपुर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी और असमानाज। गांव जाखौद राजस्थान से पूजा खटक, बिमला देवी, शंभुदयाल खटक और इनके परिवार के सभी सदस्य। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान।

कार्यक्रम का अगला गीत जो अब हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, उसकी फरमाइश हमसे की है हल्द्वानी पनियाली से लता हरेंद्र नैनवाल वाची हार्दिक और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ऑरेंज सिटी नागपुर महाराष्ट्र से हैं विठल जाधव, अनुसुईया जाधव, पवन राजे जाधव। ब्लॉक हल्द्वानी से इसी गीत की फरमाइश की है कुसुम विजय अधिकारी, रायमा और शिवम ने। छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से मंगेश इंगले, संध्या इंगले, स्वराज और विराज ने। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, सुहानी शर्मा, पंकज, रोहित, रेशमा, सुनीता, हरिपाल और मीनाक्षी। इसी गीत की फरमाइश हमसे की है देवरी भाटापारा से के एस साहू, आकाश, कमलेश, गन्नू लाल, रजक, मुरली क्षत्री और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। गाजियाबाद से हैं पूरन, नीलम, ऋषि और रूही। संबलपुर कांके से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। सलार पहलगाम कश्मीर से इसी गीत की फरमाइश की है पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, कैसरुद्दीन और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ये गीत है अभिमान फिल्म से लता मंगेशकर और मनहर की आवाज़ों में। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की है और धुन सचिन देव बर्मन की।

आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में आशिकी फिल्म का गीत। रानी मलिक के बोल हैं नदीम श्रवण का संगीत और इस गीत को सुनना चाहा है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने, ग्राम बड़गुड़वा पथरिया से नरेश नेताम, कुसुम नेताम, प्रोमिका और उत्कर्ष, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशिफ और इनके परिवार के सभी सदस्य, मोहल्ला फतेहपुर लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी वीपी रंजू, अशोकपुरी सुशीलपुरी बीकेपुरी कैलाशपुरी नीलम रमा, पालीपुरी सुनील और इनके परिवार के सभी सदस्य, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, मेहानगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गुहाणकर, राही श्रीमती सरिता गुहाणकर, प्रिंस एकांश गुहाणकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता सिद्धांत टुक टुक और इनके परिवार के सभी सदस्य, बहादुरपुरा

नागपुर से वैशाली शैलेश गुहाणकर, श्वेता सुमित गुहाणकर, कुमारी ध्वनि और परी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र वर्मा और नोखेलाल वर्मा। बागरी मोहल्ला रटलाई से मनभावन, शोभा, कपिल, नैना, सत्यनारायण, फुंडीबाई बागरी और इनके परिवार के सभी सदस्य इसी गीत को सुनना चाहते हैं। किशोर नगर अमरावती से हीरामन शिंदे, शीला और सिद्धांत। पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत। लाल माता सुदामा नगर रटलाई, जिला झालावाड़ राजस्थान से हैं हर्षिता रामेश्वर परमेश्वरी।

किशोरनगर अमरावती से हीरामन शिंदे, शीला और सिद्धांत, पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत, लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हैं हर्षिता रामेश्वर परमेश्वरी, मीनाक्षी श्रीमती मनोहर बाई बागरी और फुंदी प्रभुलाल बागरी, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या पाठक, सुच्चा पाठक और विनोद पुरी। इसी गीत की फरमाइश की है आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, पर प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर, विक्रमजीत ग्रोवर और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।

आइए आज के कार्यक्रम के समापन में सुनते हैं अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का गीत मुकेश और शारदा की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। सुनना चाहते हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखुनटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी। इसी गीत की फरमाइश हमसे की है मकेड़ी से जीवन गंगा रूपाली प्रार्थना तन्मय दिया और तेजस ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा महाराष्ट्र से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। गांव जाखौद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और पूजा खटक। इसी गीत को सुनना चाहते हैं सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना, नाजिया, इब्राहिम और इनके परिवार के सभी सदस्य। महाराष्ट्र से संतोष खंडसे और विनोद। तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष विवेक और आयुषी। कोरबी बेलतरा छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनीता राज, सुमित, सोनू और मानस राज। इसी गीत की फरमाइश की है जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी हिमांशा ने। नंगल खेड़ा पंजाब से बाल कृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा। राज पैलेस मऊ नाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। यहीं से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। गांधीनगर गुजरात से जी के परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष और दीपल। ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश और इनके परिवार के सभी सदस्य। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा। मध्य प्रदेश से हैं जगदीश धाकड़, श्रीमती रंजुबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी। इसी गीत की फरमाइश की है रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोटके ने। ग्राम बठेना पाटन छत्तीसगढ़ से परमेश्वर साहू, काजल और इनके परिवार के सभी सदस्य। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी। शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। गांधी ग्राम गुजरात से सुरेश, मंजुला राठौर, विशाल और निशा। इसी गीत की फरमाइश की है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहानी। ये श्रोता हैं पिंगावाला चौक गुराया जालंधर से। गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहिना फातिम, अनजान फैजान, अन्नू और इनके परिवार के

भी सदस्य सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और श्रव्या रामटेके इसी गीत को सुनना चाहते हैं। भूण चौराहा बुलंदशहर से पंकज सिंह, चंचल सिंह, राशिका सिंह, आकृति सिंह और वंशराज सिंह। यमुनापुरम बुलंदशहर से धीरेन्द्र सोलंकी, सुनीता सोलंकी, निष्ठा शौर्य और मून सोलंकी। कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहान, फरहीन, फायरिया और ताहिरा। मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। तो लीजिए पेश है आप सभी की फरमाइश पर अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का ये गीत।

शारदा और मुकेश के गाए अराउंड द वर्ल्ड फिल्म के इसी गीत के साथ आज के गीत नजर कार्यक्रम से पूजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत निर्झर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिनों तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने राजा को मानसून के स्वागत का त्यौहार बताया। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले समग्र स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका का उल्लेख किया है। तजाकिस्तान के दुशांबे में योग सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि योग उन शाश्वत मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं।

0: आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सब रंग। कार्यक्रम का पहला गीत है अभिजीत सावंत की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे पयाम सईदी का कलाम, फनकार थे चंदन दास।
1: Every drive smoother with the Grand Vitara Strong Hybrid. Less fuel stress, more driving pleasure.
2: Experience the Maruti Suzuki Grand Vitara and enjoy amazing benefits up to ₹3,75,000. Offer valid till 30th June.
1: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
2: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: क्या किसी कारणवश शिक्षा का सपना रह गया अधूरा? तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के साथ कीजिए पूरा, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है भारत सरकार द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग बोर्ड, जो आपको बेसिक शिक्षा, OBE, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के 103 से अधिक कोर्स के साथ साथ प्रशिक्षण देकर भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार करता है। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए NIOS क्षेत्रीय केंद्र देहरादून से दूरभाष नंबर 01352532592 अथवा वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अभी आप सुन रहे थे शबीह अब्बास का कलाम, गुलुकारा थीं आशा भोंसले। आइए सब रंग कार्यक्रम के समापन में सुनते हैं मेहदी हसन की गाई ये गज़ल।

मेहदी हसन की गाई इसी गजल के साथ हमारा आज का सब रंग कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 10:30 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप गीता नेगी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उत्तराखंड सरकार ने लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 5 सदस्यीय खोजबीन समिति का गठन किया है। इस संबंध में सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगोली की ओर से आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम 2014 के तहत गठित चयन समिति की 4 जून 2026 को हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। खोजबीन समिति लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्य पदों के लिए योग्य व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार कर चयन समिति को उपलब्ध कराएगी। उत्तरकाशी जिले के यमुना वैली क्षेत्र में वायरल बुखार के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न गांवों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए हैं। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और आवश्यक दवाइयां वितरित की। यमुना वैली की कीट पट्टी की पिंडकी मदेश तथा आसपास के गांवों में आयोजित स्वास्थ्य शिविर के दौरान 83 ग्रामीणों की बुखार, सर्दी जुकाम, शुगर और रक्तचाप की जांच की गई। इनमें बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों का विशेष रूप से स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वहीं मोरी ब्लॉक के सुदूरवर्ती भीतरी गांवों में भी स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में 120 लोगों के स्वास्थ्य की जाँच कर उन्हें आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा 100 दिवसीय टीबी अभियान के तहत ग्राम सभा नागरगांव थाना में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में 70 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जनस्वास्थ्य प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को प्रभावित क्षेत्रों में नियमित निगरानी रखने, दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त चिकित्सा टीमों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। आगामी मानसून अवधि को देखते हुए चंपावत में जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर जिले के सभी तहसीलों में त्वरित प्रतिक्रिया दल QRT गठित किए जाएंगे ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किए जा सकें। जिला प्रशासन के अनुसार 15 जून तक सभी तहसीलों में QRT का गठन किया जाएगा। इन दलों में राहत एवं बचाव, राहत वितरण, पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्निर्माण तथा जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण से जुड़े अलग अलग समूह शामिल होंगे। राहत एवं बचाव दल में SDRF, पुलिस अग्निशमन विभाग, जल पुलिस, सेना, आपदा मित्र, NCC, NSS, स्काउट गाइड, आपदा सखी और प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को शामिल किया जाएगा। वहीं विभिन्न विभागों के अधिकारियों को राहत वितरण और पुनर्वास कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक QRT दल की हर माह कम से कम 2 बैठकें आयोजित की जाएं। साथ ही जून से सितंबर तक प्रत्येक माह की 1, 11 और 21 तारीख को तहसील स्तर पर समीक्षा बैठक कर आपदा प्रबंधन तैयारियों और राहत कार्यों की स्थिति का आकलन किया जाएगा। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हरिद्वार जिले के सभी विकास खंडों में जनकल्याण शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। जिला प्रशासन के अनुसार शिविरों में कुल 2,125 लोगों ने भाग लिया। इनमें 88 लोगों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया गया जबकि 988 लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराई गई। शिविरों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, प्राकृतिक खेती तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पशुपालन और उद्यान विभाग सहित विभिन्न विभाग

0: लोगों ने स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं से अवगत कराया। लक्सर विकास खंड में ग्रामोत्थान योजना के तहत 5 महिलाओं को फूड वैन संचालन के लिए 6 लाख रुपए के चेक वितरित किए गए। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार।

आज के सुरबहार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कीजिए स्वीकार पूजा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओ, आज के कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं राग गारा से, गूंज उठी शहनाई फिल्म से। इस गीत को लिखा है भरत व्यास ने, संगीत दिया है वसंत देसाई ने, गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी। राग गारा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय राग है जो खमाज थाट से संबंधित है। इस राग में सभी सात स्वरों का उपयोग होता है, छह आरोही और सात अवरोही, इसीलिए राग की जाति शादव संपूर्ण है। राग गारा राग जय जयवंती के समान है। राग गारा और राग जय जयवंती में एक जैसे स्वर होते हैं। राग गारा एक दुर्लभ राग है, इसे देर शाम गाया और बजाया जाता है। श्रोताओ, राग गारा के परिवार में राग काफी, पीलू, जंजुला, बरवा और जिला जैसे राग शामिल हैं। साथ ही राग गारा खुशी और उपलब्धि की संतुष्टि की भी भावना व्यक्त करता है, हालांकि ये साथ खोने का दुख भी व्यक्त करता है। राग गारा जीवंत और रोमांटिक भी है।

0: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
1: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सुरबहार कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोंसले की आवाज़ में सौदागर फिल्म से। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन और ये गीत है राग शिवरंजनी पर आधारित। श्रोता, राग शिवरंजनी एक बहुत ही मधुर और लोकप्रिय भारतीय शास्त्रीय राग है जो काफ़ी थाट से संबंधित है। ये एक औड़व जाति का राग है जिसका अर्थ है कि इसमें आरोह और अवरोह दोनों में 5 स्वर होते हैं। राग शिवरंजनी एक भावना प्रधान राग है जो वेदना तथा दर्द को व्यक्त करता है। इसे अक्सर शांत रस का राग माना जाता है। मान्यता है कि शिव के तांडव के बाद उन्हें शांत करने के लिए राग शिवरंजनी को साधु संतों ने गाया था। ये राग भूपाली के समान है लेकिन भूपाली में शुद्ध गांधार का प्रयोग होता है जबकि शिवरंजनी में कोमल गांधार का उपयोग होता है।

0: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
1: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
2: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: कार्यक्रम का अगला गीत है राग भैरव पर आधारित जंगली फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शैलेंद्र के बोल हैं शंकर जयकिशन का संगीत। श्रोता, राग भैरव सुबह का राग है और गंभीर शांति इसका आदर्श भाव है। ये राग गंभीर मनोदशा वाला है और गंभीरता अंतर्मुखता के साथ साथ भक्तिपूर्ण दृष्टिकोण का भी संकेत देता है। राग भैरव सुनने से शरीर और मन ऊर्जा से भर जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और साथ ही मन प्रसन्न भी रहता है।

0: रोज कहता रहे हम प्यार
1: का। जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: सुरबहार कार्यक्रम के समापन में लीजिए पेश है आराधना फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। ये गीत राग पहाड़ी पर आधारित है। श्रोता, राग पहाड़ी एक हल्का लोक आधारित और अत्यंत लचीला हिंदुस्तानी शास्त्रीय राग है जिसका नाम हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र से आया है। राग पहाड़ी को अक्सर धुन कहा जाता है और ये राग भूपाली जैसा दिखता है लेकिन अवरोह में बिलावल की तरह चलता है। राग पहाड़ी हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र से उत्पन्न कश्मीरी लोक संगीत से विशेष रूप से प्रभावित होता है।

आराधना फिल्म के इसी गीत के साथ आज के शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुरबहार से पूजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

सुर बहार। अभी श्रोता फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं। अब फौजी भाई सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

नजर उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान फूटी जो कहर की नजर उस नजर

और जी भैया, कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में शहीद फिल्म से। आइए कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाते हैं। मयूरपुरी का लिखा, प्रीतम का संगीतबद्ध किया, राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल का गाया गीत। फिल्म का नाम है सिंह इज किंग।

फौजी भाई आइए कार्यक्रम में आगे सुनते हैं टू स्टेट्स फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीप्रदा के युगल स्वरों में। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं और धुन बनाई है शंकर एहसान और लॉय ने।

0: June, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like 360-degree camera, head-up display and safety through 6 airbags.
1: The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month.
0: Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offer still stocks last. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम सैनिकों के लिए का। सैनिक भाइयों, कार्यक्रम की अगली पेशकश पीके फिल्म का नगमा शान और श्रेया घोषाल के युगल स्वरों में। नगमा निगार हैं स्वानंद किरकिरे, मौसिकार शांतनु मोइत्रा।

0: and enjoy amazing benefits up to ₹3,75,00. Offer valid till 30th June.
1: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: फौजी भाई आइए कार्यक्रम में आगे सुनते हैं पुलिस गिरी फिल्म का गीत। गीत के बोल शब्बीर अहमद के हैं और धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने।

फौजी भाइयों, आइए कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं पत्थर के फूल फिल्म का गीत एसपी बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। रविंद्र रावल के लिखे इस गीत को सुरों में पिरोया है राम लक्ष्मण ने।

और जी भाइयों, पत्थर के फूल फिल्म के इस गीत के साथ ही हमारा आज का सैनिकों के लिए फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। अनुमति दीजिए। जय हिंद।

0: सैनिकों के लिए अभी श्रोता फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे शास्त्रीय संगीत।
1: June make every drive feel smoother and every journey special.
2: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
1: Equipped with features like 360 degree camera, head-up display and safety through 6 airbags.
2: The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month.
1: Also get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
2: Hurry, offer still stocks last. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
3: Nexa. बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
4: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
5: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
6: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
7: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to ₹80,000. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC.
8: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
9: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
7: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to ₹80,000. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
0: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत में आइए आज सुनते हैं सोमा घोष का राग ललित में गाया ख्याल। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है। बोल हैं अरे मन तू जप राम नाम। द्रुत ख्याल की बंदिश 3 ताल में निबद्ध है। द्रुत ख्याल के बोल हैं जो तू राम नाम जप ले। आपके साथ तबला संगत की है पंडित मदन मिश्रा ने।

राम नाम धन पावे तू, राम नाम धन पावे। श्रोताओ, अभी आपने इन बोलों पर सोमा घोष का राग ललित में ख्याल गायन सुना। आपके साथ तबला संगत की थी पंडित मदन मिश्र ने। और अब इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। अब श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

मेरी पसंद के चंद गीतों के साथ हाजिर हूँ मैं रोशनी वालिया। सभी श्रोताओं को मेरा सस्नेह अभिवादन। श्रोताओं, आज संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती, जिन्हें अक्सर केवल प्रीतम के नाम से जाना जाता है, अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं। कोलकाता में जन्मे प्रीतम ने धूम, लाइफ इन अ मेट्रो और ये जवानी है दीवानी जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अपने शानदार संगीत से दर्शकों और श्रोताओं का दिल जीता है। आज उनके जन्मदिन पर देते हैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और

दोस्तों, बॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध संगीतकारों, गायकों और वादकों में से एक प्रीतम एक संगीत परिवार में पले बढ़े और उन्होंने अपने पिता

श्रोताओ, प्रीतम ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से भूविज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की, लेकिन पुणे के FTII में साउंड रिकॉर्डिंग और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके अपना करियर पथ बदल लिया। शुरुआती संघर्षों और जीत प्रीतम की जोड़ी में थोड़े समय के लिए काम करने के बाद उन्होंने 2004 की एक्शन थ्रिलर फिल्म धूम के लिए जबरदस्त संगीत तैयार कर एक एकल संगीतकार के रूप में बड़ी सफलता हासिल

प्रीतम की विशिष्ट संगीत शैली सूफी और कव्वाली धुनों से लेकर कोमल ध्वनिक चालित लय तक बदलती रहती है। उन्होंने वर्ष 2016 में जैम 8 की स्थापना की, जो एक संगीत इनक्यूबेशन प्लेटफॉर्म है जो उभरते संगीतकारों और रचनाकारों को उद्योग में प्रवेश करने में मदद करता है। अपने 2 दशक के करियर में प्रीतम को कई सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रमुख हैं सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए कई फिल्म फेयर पुरस्कार और अनेक IIFA और मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स।

दोस्तों प्रीतम अकसर बॉलीवुड के शीर्ष निर्देशकों जैसे अनुराग बासु, इम्तियाज अली और अयान मुखर्जी के साथ काम करते रहे। उनकी प्रमुख प्रसिद्ध एल्बमों में जब हम मिले, बर्फी, ए दिल है मुश्किल, ब्रह्मास्त्र, भाग एक, शिव और दंगल शामिल हैं। आज उनके जन्मदिन पर हम पुनः उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वे आगे भी यूं ही अपने सुदृढ़ सफल संगीत से हमारा मनोरंजन करते रहेंगे और उत्तरोत्तर सफलता हासिल करेंगे। ईश्वर उन्हें स्वस्थ दीर्घायु जीवन प्रदान करें।

दोस्तों अब इसी के साथ अपनी रेडियो सखी रोशनी वालिया को दीजिए आज के कार्यक्रम से इजाज़त। कल एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे, तब तक के लिए कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार।

मेरी पसंद। अभी श्रोता फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार।

0: स्वागत है मैंने आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम घर संसार के आज के अंक में। सभी श्रोता सखियों को आपकी सखी किरण बिष्ट का प्यार भरा नमस्कार। चलिए बहनों करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत आज के दिन के साथ। बहनों आज रक्तदाता दिवस मनाया जा रहा है और यह दिन रक्तदाताओं को रक्तदान करने व रक्तदान के लिए जागरूक व प्रेरित करने का दिन है। तो बहनों रक्तदान के विषय में हम और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए सुनते हैं रक्तदान का महत्व विषय पर श्री हेम भोगणा सोशल वेलफेयर ऑफिसर ब्लड बैंक मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा से हमारी ये क्षेत्र संकलित बातचीत। स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम घर संसार में।
1: जी धन्यवाद।
0: तो सर जैसे कि आज विश्व रक्तदान दिवस है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि रक्तदान का क्या महत्व है।
1: देखिए रक्तदान जो है बहुत बड़ा दान माना जाता है और एक तरह से अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो एकमात्र ऐसा दान है जो मनुष्य अपने जिंदा रहते रहते दूसरे को दे सकता है अपने शरीर से। और हमारा दिया हुआ जो खून है ये दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए, थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे के लिए, या जब डिलीवरी होती है प्रसव के दौरान महिला गंभीर स्थिति से जूझ रही होती है तो उसकी जान बचा सकता है। जैसे कि आपको पता ही है कि खून का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है, इसे बाहर नहीं बनाया जा सकता, फैक्ट्री में दुकान में नहीं बनाया जा सकता, तो मानव जीवन को बचाने के लिए रक्तदान ही रक्त का एकमात्र विकल्प है।
0: अच्छा सर रक्तदान कौन कर सकता है?
1: कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। इसमें थोड़ा आयु के मानक है, उम्र उसकी कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अगर वो पहली बार खून दे रहा है मतलब उसने पहले खून कभी नहीं दिया है तो 60 साल होनी चाहिए अधिकतम आयु सीमा। लेकिन अगर 60 साल से पहले वो दे चुका है पहले कभी तो 65 साल तक वो खून दे सकता है, मतलब कि 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष के बीच उनकी आयु हो, वजन कम से कम 45 किलो होना चाहिए और हीमोग्लोबिन के इसमें मानक है, हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम या उससे अधिक होना चाहिए रक्तदान के लिए। और एक चीज और है इसमें बहुत जरूरी कि उसे पिछले कुछ समय में कोई गंभीर बीमारी या संक्रमण न हुआ हो।
0: अच्छा सर क्या रक्तदान के बाद रक्तदाता को किसी तरह की कोई शारीरिक दिक्कत या कमजोरी हो सकती है?
1: देखिए इसे एक धर्म कह सकते हैं हम शारीरिक दिक्कत और कमजोरी को, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है उसमें हमारे वजन के हिसाब से खून होता है और लगभग 5 लीटर तक खून हमारी बॉडी में होता है और इसमें से जब हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो हम 350 ml से लेके 450 ml के बीच ही ब्लड लेते हैं और कुछ ही घंटों में हमारा शरीर उसे जो है उसकी पूर्ति कर लेता है किस चीज से, लिक्विड चीजों से, तरल पदार्थों से, क्योंकि हम जब डोनेशन लेते हैं किसी व्यक्ति का स्वैच्छिक रक्तदाता का तो हम उसे क्या करते हैं उसे हम पानी या जूस कोई चीज पीने के लिए देते हैं और बाद में अगले कुछ हफ्तों में नई कोशिकाएं बन जाती हैं हमारे शरीर में और सही खान पान रहेगा तो कोई कमजोरी नहीं आती है।
0: सर रक्तदान से पहले और रक्तदान के बाद रक्तदाता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए पहले की अगर हम बात करें तो रक्तदान से पहले वो पूरी रात अच्छी नींद ली हो उन्होंने, वो खाली पेट न हो रक्तदाता जब वो रक्तदान के लिए आए तो हल्का भोजन या नाश्ता करके आए और उन्होंने पर्याप्त मात्रा में पानी या जूस जो है पिया हुआ हो, ये तो है पहले के लिए रक्तदान से पहले के लिए। अब आपने पूछा कि रक्तदान के बाद क्या किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो रक्तदान के जो बाद है उसमें 10 से 15 मिनट आपको वहीं का आराम करना चाहिए ब्लड बैंक में ही, जहाँ पे ब्लड बैंक में या कैंप में जहाँ पे आप रक्तदान कर रहे हैं, ताकि अगर कोई एडवर्स इफेक्ट कुछ हो रहा हो, कुछ अगर कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं तो उसको वहीं पर मैनेज कर लिया जाए डॉक्टर की टीम के द्वारा और उन्हें तरल पदार्थ लेना चाहिए, जूस या पानी लेना चाहिए और उस दिन भारी वजन न उठाएं, जैसे कि लोग जिम जाते हैं या व्यायाम करते हैं कोई या कोई इस तरह का काम करते हैं कि जिसमें शारीरिक श्रम होता है, तो उस दिन न करें, अगर रक्तदान के दिन न करें और कोशिश करें कि जिस दिन आपने रक्तदान किया है उस दिन आप धूम्रपान या ऐसा अल्कोहल का सेवन न करें।
0: अच्छा सर रक्तदान के बाद रक्तदाता कितने समय बाद अपनी दिनचर्या को सामान्य रूप से कर सकता है?
1: 20 से 30 मिनट के बाद हल्के काम किए जा सकते हैं, जैसे नॉर्मल वर्क है, ऑफिस का वर्क है या अपने रूटीन के वर्क है उसमें लौटा जा सकता है आधे घंटे के बाद। और जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया कि उस दिन जिम जाना है, भारी वजन उठाना है या ज्यादा कठिन शारीरिक श्रम वाले कामों से बचना है और अगले दिन से सब कुछ पूरी तरह सामान्य ढंग से कर सकते हैं।
0: सर महिलाओं के लिए रक्तदान के क्या मानक
1: हैं? हाँ ये अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि महिलाओं के लिए क्या मानक है, तो इसमें पुरुषों के जैसे ही मानक है महिलाओं के लिए भी, उनकी उम्र 18 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए और उनका वजन कम से कम 45 किलो होना चाहिए। एक मुख्य अंतर इसमें है हीमोग्लोबिन का है कि जो हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया कि 12.5 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए,

0: और दूसरा जो महिलाएं देखे गर्भावस्था में है, प्रेगनेंसी में है, उनको जो महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं उस अवधि के दौरान और मासिक धर्म के दौरान, मतलब उनके पीरियड्स के दौरान, जब वो असहज महसूस कर रही हो तो वो रक्तदान नहीं कर सकती। ये इतना ही अंतर है।
1: अच्छा सर, कोई भी व्यक्ति चाहे वो महिला हो या पुरुष, वो एक बार रक्तदान करने के बाद फिर दोबारा कितने अंतराल में रक्तदान कर सकता है?
0: इसमें भी महिला और पुरुष के लिए थोड़ा सा मानक का अंतर है। एक जो स्वस्थ पुरुष है वो हर 3 महीने में रक्तदान कर सकता है, मतलब कि 90 दिन बाद, एक बार रक्तदान करने के 90 दिन बाद वो दोबारा कर सकता है, और महिला हर 4थे महीने में रक्तदान कर सकती है 120 दिन के अंतराल पर, और सुरक्षित रूप से वो दोबारा रक्तदान कर सकते हैं।
1: सर, रक्तदान करने से रक्तदाता को क्या कोई स्वास्थ्य लाभ हो सकता है?
0: हाँ, ये माना जाता है कि रक्तदान करने से हमारे शरीर में नए जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हमारी आरबीसी होती है, उसका निर्माण तेजी से होने लगता है, और उससे क्या है कि शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, और दूसरा क्या है कि ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में और आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और दिल की कुछ बीमारियों के खतरों को कम करने में मददगार है, और साथ में इसमें एक स्वास्थ्य के, आपने जो फायदे की बात कही, तो एक मुख्य फायदा ये भी है कि जो रक्तदाता होता है उसके रक्त की कुछ बुनियादी जांचें भी रक्त केंद्र के द्वारा की जाती हैं, तो उससे भी उसे पहले ही पता चल जाता है कि अगर उसे कोई इस तरह की बीमारी है जिसकी उसे जानकारी नहीं है, तो उसे रक्तदान के माध्यम से वो जानकारी पता चल जाती है और वो अपना इलाज करा सकता है समय रहते हुए।
1: जैसे रक्तदाता से जो रक्त प्राप्त होता है उसे ब्लड बैंक में किस तरह से सुरक्षित रखा जाता है?
0: देखिए, जो रक्तदाता से हम रक्त लेते हैं तो उसे एक हमारे बैग तो होते हैं जिसमें हम कलेक्ट करते हैं, तो स्पेशल बैग होते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि उनको वो बैग हम कलेक्ट करने के बाद ब्लड बैंक में रेफ्रिजरेटर होते हैं कुछ अच्छे हाई क्वालिटी के, तो उनमें 2 से 6 डिग्री के टेम्परेचर में उसको रखा जाता है। और अभी जैसे हम अपने ब्लड बैंक की बात करेंगे, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का जो ब्लड बैंक है, यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट की फैसिलिटी है। कंपोनेंट से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ही ब्लड की एक ही यूनिट से हम उसके घटक तैयार करते हैं अलग अलग। तो जैसे कि हमने एक खून लिया रक्तदाता से, तो उससे हमने प्लेटलेट्स बनाया, उससे हमने आरबीसी बनाया और उससे हमने प्लाज्मा बनाया, इससे हम एक यूनिट से 3 अलग अलग मरीजों की जान बचाने की कोशिश करते हैं।
1: अगर कोई रक्तदाता रक्तदान करना चाहता है और उसने उससे पहले कभी रक्तदान नहीं किया, तो वो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकता है रक्तदान करने के लिए?
0: देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि सरकार का और WHO का ये मानना है कि जो स्वैच्छिक रक्तदाता है वो सबसे बड़ा रक्तदाता है, तो इसलिए हम एक लाइन भी बोलते हैं कि स्वैच्छिक रक्तदाता जीवन दाता, क्योंकि स्वैच्छिक रक्तदाता अपना खून अपनी मर्जी से दे रहा है और वो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए दे रहा है जिसे वो जानता भी नहीं है, मतलब सबसे बड़ा दान है वो, महादान। अब अगर कोई रक्तदान करना चाहता है तो वो हमसे संपर्क 2 तरीकों से कर सकता है। एक तरीका तो यह है कि वो हमारे ब्लड बैंक में आ जाए, हमारा जो ब्लड बैंक है वो 7ों दिन और 24 घंटे वर्किंग में रहता है हमेशा, किसी भी समय आके वो अपना यहाँ पर आके अपना रजिस्ट्रेशन करा के और रक्तदान कर सकते हैं अगर वो उसके लिए उपयुक्त पाए जाते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, भारत सरकार का एक पोर्टल है ई रक्त कोष, उसमें अपना लॉग इन करके उसमें भी वो अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं ब्लड डोनेशन की, और वो ब्लड बैंक में आके ब्लड डोनेशन कर सकते हैं।
1: तो सर, आपने रक्त

0: सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: This June, make every drive smoother with the Grand Vitara Strong Hybrid. Less fuel stress, more driving pleasure.
3: Experience the Maruti Suzuki Grand Vitara and enjoy amazing benefits up to ₹3,75,000. Offer valid till 30th June.
2: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
3: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
4: मैंने प्राचीन व्यायाम पद्धति योग आज पूरे विश्व में स्वस्थ रहने का पर्याय बन गया है। पूरे विश्व भर में योग का महत्व किसी से छिपा नहीं है। योग शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम व्यायाम है। मैंने योग को किस तरह से हम अपने जीवन में शामिल करके स्वस्थ रह सकते हैं और योगाभ्यास के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आइए

0: या योग साधक शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा फिट है तो वो इसकी आवृत्ति को बढ़ा सकता है अपनी क्षमता के अनुसार। लेकिन अगर कोई नया योग साधक कर रहा था वो 2 या 3 बार इसकी आवृत्ति को बार बार प्रयोग कर सकता है।
1: जैसे योगाभ्यास के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है, सुबह का या फिर शाम का?
0: जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि योग अभ्यास के लिए सबसे जो अच्छा समय वह ब्रह्म मुहूर्त का है। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से लेकर 5 बजे का समय होता है, अगर ऐसे समय पर ना उठ पाए तो सूर्योदय के साथ साथ, जैसे हमारे जिस क्षेत्र में भी हम रहते हैं उस क्षेत्र में जिस समय सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय के साथ साथ अगर हम योगाभ्यास करते हैं तो उसके हमें उत्तम रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि उस समय चारों ओर का आवरण शुद्ध रहता है और मन भी शांत रहता है।
1: सर, योगाभ्यास के दौरान किन बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए?
0: योगाभ्यास करते समय हमें मुख्य रूप से इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो खाना खाया है हमने उससे लगभग 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए, जिससे कि हमारा भोजन पूरा पचा हो और जहाँ पर भी हम योगाभ्यास कर रहे हैं वहाँ का वातावरण स्वच्छ हो और मन शांत हो। जब वातावरण स्वच्छ होगा तो मन अपना आप ही शांत हो जाएगा। अगर वातावरण ही हमारे वहाँ का चारों ओर का पर्यावरण खराब है तो फिर मन का चंचल होना अवश्य है।
1: तो क्या योगाभ्यास संपूर्ण व्यायाम है?
0: हाँ, योगाभ्यास संपूर्ण व्यायाम है, क्योंकि योग केवल हमारे शारीरिक रोगों को ही दूर नहीं, हमारे शरीर की शारीरिक क्षमता को ही नहीं बढ़ाता अपितु शारीरिक मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ाता है। योग हमारा सर्वांगीण विकास करता है।
1: सर, योगाभ्यास किस तरह से हमें स्वस्थ और फिट रखता है?
0: योगाभ्यास के माध्यम से सर्वप्रथम जब हम योगाभ्यास करते हैं तो जब हम धीरे धीरे तो उस समय हमारे जो शरीर है वो क्या, शरीर आगे पीछे झुकने में हम लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं होती है। तो ऐसे समय में क्या, योगाभ्यास द्वारा सबसे पहले हमारा शरीर लचीला होने लगता है। जैसे जैसे शरीर लचीला होने लगता है वैसे ही वैसे हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है, अर्थात हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। जब शरीर लचीला हो गया, ऊर्जा उत्पन्न हो गई, तो स्वयं के जो हमारा शरीर का जो संतुलन, अच्छा जो हमारे शरीर की जो चंचलता है वो चंचलता भी संतुलित हो जाती है, तनाव कम होने लगता है और व्यक्ति मानसिक और भावात्मक रूप से स्वस्थ होने लगता है।
1: यानी कि हम कह सकते हैं कि योग न केवल हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है बल्कि हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखता है।
0: जी बिल्कुल, हमें मानसिक रूप से भी पूर्ण रूप से स्वस्थ रखता है।
1: सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आने वाली 21 जून को अब

0: कौन कौन से कार्यक्रम योग विभाग के द्वारा योग दिवस को सफल बनाने के लिए किए जा रहे हैं?
1: जैसा कि एक प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है,
0: जी
1: और जहां योग विज्ञान विभाग सोगन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आओ हम सब योग करें अभियान के तहत गांव गांव, घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, प्रत्येक विद्यालयों में जाकर योगाभ्यास करा रहा है और योग लोगों को जागरूक कर रहा है। साथ ही साथ रैलियां चला रहा है जिससे कि जन जागरूकता बढ़े और लोग अधिक से अधिक 21 जून के दिन प्रतिभाग करें। वहीं आयुष मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में प्रत्येक जिले के आयुष विभाग भी अपने वहाँ अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। जैसे कि हरित योग के रूप में इस बार आयुष मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान प्रत्येक जिले के आयुष विभाग नियमित रूप से हर जिले के अलग अलग क्षेत्र में कभी जैसे अल्मोड़ा की बात करें हम, कभी जागेश्वर, कभी सूर्य मंदिर कटारमल, कभी कसार देवी, प्रत्येक स्थानों में जाकर योगाभ्यास करा वहाँ पर जन जागरूकता बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारे पहाड़ों को जो पर्यटक आ रहा है, टूरिस्ट जो आ रहा है, उसको भी उसके साथ जोड़ने का कार्य कर रहा है।
0: सर, आपने हमें समय दिया और दैनिक जीवन में योग से स्वास्थ्य लाभ विषय पर हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक जीवन में योगाभ्यास से स्वास्थ्य लाभ विषय पर बने अभी आप डॉक्टर गिरीश सिंह अधिकारी, योग प्रशिक्षक, योग विभाग सुबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा से हमारी ये क्षेत्र संकलित बातचीत सुन रहे हैं। आइए बहन, आप कार्यक्रम में सुनते हैं ये मधुर गीत।
2: मैंने

0: Alexa car.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: Enjoy amazing benefits up to Rs. 25,000. Offer valid till 30th June.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today. Hurry. Offers for a limited time only. TNC apply.
2: बिना ISI के निशान वाला कोई सामान मत लाया करो।
3: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो। सारा सामान ISI का ही है।
2: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है, हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
3: ये तो है। ISI के निशान वाला सामान लाएं,
2: झगड़ा मिटाएं,
3: विश्वास जगाएं।
4: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियाँ भी नहीं देख सकती है, वो सपना भारत की बेटियाँ साकार कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
5: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर,
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
7: आपने तो बचा लिया दीदी।
6: काम से नहीं।
8: RBI कहता है,
9: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
10: बनों केंद्र सरकार के 12 वर्षों के सफल कार्यकाल में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिला सशक्तिकरण और गरीब कल्याण की सबसे बड़ी क्रांतिकारी योजनाओं में से एक रही है। इसके तहत देश भर में करीब 11 करोड़ से ज्यादा LPG गैस कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। और बहनों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण व गरीब तबके की महिलाओं को चूल्हे के हानिकारक धुएं और प्रदूषण से मुक्ति दिलाना है। साथ ही लकड़ी के चूल्हे से होने वाले धुएं के हानिकारक प्रभाव से बचाकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना भी है। अबेनो, इन 12 वर्षों में उज्ज्वला योजना की उपलब्धियों की बात करें तो इस योजना के माध्यम से ग्रामीण व वंचित वर्ग की महिलाओं को बिना किसी लागत के मुफ्त LPG कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही उज्ज्वला लाभार्थियों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा प्रति LPG सिलेंडर पर 300 रुपये की नकद सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बहनों, इस तरह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी बदलने का काम किया। पहले महिलाएं लकड़ी और उपलों में खाना बनाती थी, लेकिन इस योजना के तहत मिलने वाली मुफ्त गैस कनेक्शन से महिलाओं की सेहत में सुधार के साथ साथ उनके समय की भी बचत होती है, ताकि वे अपने बच्चों और खुद पर ध्यान दे सकें। साथ ही घरों में गैस कनेक्शन के आने से स्वच्छता भी बढ़ी है। बहनों, यह योजना महिला सशक्तिकरण की बड़ी मिसाल बन गई है। तो बहनों, ये थी उज्ज्वला योजना सरकार के 12 वर्ष विषय पर थोड़ी सी बातचीत। आइए अब कार्यक्रम में सुनते हैं ये गीत।

मैंने उस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी दीपिका पंत। बहनों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, इस विषय पर आप अपने विचार हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411001122 पर भेज सकते हैं। आपके सुझावों और आपके विचारों को प्रत्येक माह घर संसार कार्यक्रम के अंतिम अंक में बहनों की चिट्ठी कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। और बहनों, इसी के साथ हमारा घर संसार कार्यक्रम यहीं पर समापन करने की अपनी सखी किरण बिष्ट को अनुमति दीजिए। अगले अंक में फिर से आपके साथ करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए नमस्कार।

0: घर संसार अभी महिलाएं अपना ये कार्यक्रम सुन रही थीं। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने को है। अब कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा ऐसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री

0: मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की संगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मैटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रुद्रप्रयाग के खलियाण बांगर क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया। हरिद्वार में कल होने वाले सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल

0: की है और इसका दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। श्री गडकरी ने कहा कि ई संजीवनी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्वच्छ भारत मिशन जैसी पहलें देश में समावेशी और सुदृढ़ स्वास्थ्य व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रुद्रप्रयाग के जखौली विकासखंड के खलियाण बांगड़ क्षेत्र में हाल ही में हुई अतिवृष्टि से हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत उपलब्ध कराई जाए तथा नुकसान का शीघ्र आकलन कर नियमानुसार मुआवजा और अन्य सहायता प्रदान की जाए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, इसलिए सभी विभाग आपदा प्रबंधन की तैयारियां पूरी रखें। उन्होंने राहत सामग्री, चिकित्सा सुविधाओं, जेसीबी मशीनों और रेस्क्यू टीमों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश भी दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत टपकेश्वर मंदिर प्रांगण में विशेष सफाई अभियान में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के शहीद दुर्गा मल्ल मंडल के पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मंदिर परिसर में एवं तमसा नदी में स्वच्छ कार्य किया और आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। श्री जोशी ने कहा कि सभी कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान सहित अन्य पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, स्वच्छता केवल एक सरकारी अभियान नहीं बल्कि जन भागीदारी से जुड़ा एक सतत सामाजिक संकल्प है। नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कल आयोजित होने वाले श्री कैंची धाम मेला के मद्देनजर भीमताल और बेतालघाट विकासखंड अंतर्गत संचालित समस्त विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिवसीय अवकाश घोषित किया है, जबकि इन विकासखंडों के अंतर्गत स्थित सभी सरकारी कार्यालय कामकाज के लिए सामान्य रूप से खुले रहेंगे। बीमार पशुओं को अब एक फोन कॉल पर पशु चिकित्सक एवं स्वयं पशुपालकों के घर द्वार तक पहुंचकर उपचार उपलब्ध करा रहे हैं। 1962 मोबाइल वेटनरी यूनिट सेवा पौड़ी जिले में पशु स्वास्थ्य सेवाओं की नई पहचान बनकर उभरी है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत संचालित सेवा पौड़ी के द्वारिखाल, एकेश्वर, जहरीखाल, कलजीखाल, नैनीडांडा, पाबो, पौड़ी तथा थलीसैण विकासखंडों में 8 मोबाइल वेटनरी यूनिट संचालित की जा रही हैं। इन यूनिटों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले पशुपालकों को उनके घर द्वार पर ही निशुल्क पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. विशाल शर्मा ने बताया कि 1962 मोबाइल वेटनरी यूनिट सेवा का उद्देश्य पशुपालकों को त्वरित, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है।
1: पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न समस्त जनपदों में मोबाइल वेटनरी यूनिट का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कि जनपद पौड़ी में भी वर्तमान में 8 विकास खंडों में इसका संचालन किया जा रहा है। मोबाइल वेटनरी यूनिट को कहते हैं, जिनके द्वारा ग्रामीणों को आकस्मिक सेवाएं प्रदान की जाती है, जिसमें इसका कार्यक्रम का शुभारंभ, जिसमें पौड़ी जनपद की हम अगर बात करें तो लगभग 55,000 कॉल्स हमें प्राप्त हो चुकी हैं। ये कॉल्स जो प्राप्त होती हैं, ये पशुपालन विभाग के 19 बास टोल फ्री नंबर कॉल सेंटर पर प्राप्त होती हैं, जो कि सीधे सीधे हमारी मोबाइल वेटनरी यूनिट से जुड़ा होता है। एक मोबाइल वेटनरी यूनिट में हमारे एक डॉक्टर साहब, एक उनके सहायक पैरावेट और एक वाहन चालक होते हैं।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: ब्रेक के बाद उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचारों में आपका स्वागत है। हरिद्वार में कल होने वाले सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर मेले की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों को अपने अपने ड्यूटी मुस्तैदी से निभाने के निर्देश दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि सोमवती अमावस को लेकर आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी तरह की कोई भी असुविधा न हो, इसके लिए यातायात प्लान बनाया गया है। साथ ही पार्किंग स्थलों को भी आरक्षित कर दिया गया है।
3: सोमवती अमावस्या स्नान के लिए हरिद्वार पुलिस पूरी तरह घेरा है और स्नान को अच्छे से भली भांति कराने के लिए पूरा जो मेला क्षेत्र है इसको 6 सुपर जोन, 16 जोन और 40 सेक्टर्स में बांटा गया है। और सुपर जोन में एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी हैं, जोन में जो है सीओ रैंक के अधिकारी हैं और सेक्टर में सब इंस्पेक्टर और स्तर के अधिकारी हैं, और इसमें हमारे एसएसबी, पैरामिलिट्री फोर्स, साथ में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बीडीएस स्क्वाड, एटीएस और विभिन्न यूनिट जो हैं वो इसमें जो हैं हमारी लगी हुई है और पूरी तरह हम इस गियर में।
0: मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि मनसा देवी पैदल मार्ग को भी खोलने का आग्रह किया है ताकि भीड़ के दबाव को अलग अलग भागों में बांटा जाए।
4: सोमावती अमावस आने वाली और सोमावती में समझता हरिद्वार में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आता है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो भी यात्री यहाँ आएगा वो बिल्कुल सुरक्षित यहाँ जाए और यहाँ से वापस सुरक्षित जाए। मैंने यही कहा कि देखिए यहाँ यात्री को हम रुकाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए यात्री आए और यहाँ से नीचे जाए। और ये भी हमारे यहाँ डीएम साहब ने कहा है जिस समय यहाँ भीड़ होता नीचे से रोपवे से यात्री नहीं आता है, ऊपर से जितने यात्री उनको नीचे उतारा जाता है। और आपने देखा होगा आजकल हमारा जो सीढ़ी का रास्ता वो बंद है, एक ही रास्ता आपने पैदल रास्ता देखा होगा, और हमारा प्रयास है बहुत जल्दी सीढ़ी का रास्ता भी उसकी मरम्मत हो जाए, वो भी खुल जाए।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। उन्होंने रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें जीवन बचाएं। सुरक्षित रक्त के महत्व के बारे में जागरूकता लाने और स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर गोपेश्वर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान महादान कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं और स्वयं सेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर रक्तदान किया। इस अवसर पर भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी शाखा चमोली के चेयरमैन ओम प्रकाश डोभाल ने कहा कि समाज सेवा के अनेक माध्यम हैं, लेकिन किसी का जीवन बचाने में रक्तदान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। प्रदेश में फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग ने 11 जिलों में बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में कई जिलों में बारिश, बिजली चमकने और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। देहरादून समेत 11 जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो 22 जून के आसपास राज्य में मानसून की दस्तक हो सकती है। फिलहाल प्री मानसून बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रुद्रप्रयाग के खलियाण बांगड़ क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया। हरिद्वार में कल होने वाले सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:15 हुए हैं। लीजिए पेश है सुगम संगीत। श्रोताओं कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं नसीम अजमेरी के इस कलाम के साथ। गुलकारा हैं मिताली सिंह।

मिताली सिंह के गाए नसीम अजमेरी के इस कलाम के बाद आइए कार्यक्रम में आगे सुनते हैं यामिनी दास का कलाम। फनकार हैं चंदन दास।

0: चंदन दास की गाई यामिनी दास की गजल के साथ ही हमारा आज का सुगम संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत के व्यक्तित्व पर आधारित ये विशेष रूपक एक अनमोल हिमरत्न।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है पंडित गोविंद बल्लभ पंत के व्यक्तित्व और कृतित्व के कुछ प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित रूपक एक अनमोल हिमरत्न। आलेख डॉक्टर अनिल कुमार जोशी, प्रस्तुतकर्ता प्रतुल जोशी।
2: प्री लक्ष्मी राजा, अब तक तुम्हारी छमाही परीक्षाएं समाप्त हो गई होंगी, अब तुम्हें कुछ नई पुस्तकें पढ़ने का समय मिलेगा। लुइसा मे एलकॉट की किताबें बहुत अच्छी हैं। क्या तुमने उसकी लिटिल मैन पढ़ी है? मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम इन दिनों टॉम ब्राउन्स स्कूल डेज पढ़ रहे हो। वैसे जूल्स वर्ने की पुस्तकें भी काफी मनोरंजक हैं। 24 जून 1944।
3: इन पंक्तियों को सुनकर किसी को भी लगेगा कि ये एक कोमल हृदय पिता के उद्गार हैं, जो अपने बच्चों की दिन रात चिंता करता है।
4: और शायद इससे ये अंदाजा भी नहीं लगेगा कि अपने बच्चों को ऐसा मर्म स्पर्शी पत्र लिखने वाले ये सज्जन साइमन कमीशन के भारत आने पर पुलिस की लाठियों से लहूलुहान कर दिए गए थे, जिसके चलते शेष जीवन वो सही तरीके से चल भी नहीं पाते थे।
5: All you people, stop! Hold your step!
6: What a charge!
7: हम नहीं रुकेंगे। साइमन शुड गो बैक इमीडिएटली। हत्थे और निर्दोष लोगों पर लाठी बरसाना बहुत बर्बर काम है।
8: अरे ये क्या अनर्थ हो गया अनर्थ! हमारे महान नेता को स्कॉट ने लाठियों से मार मार कर घायल कर दिया।
9: अरे बोले उठाओ, जल्दी से अस्पताल पहुंचाओ, जल्दी चलो।
3: अपने व्यक्तित्व में बहुत सारी खूबियों को समेटे ये शख्स कोई और नहीं वरन हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम के एक महान नायक, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित और देश के 5वें गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे।
4: गोविंद बल्लभ पंत, जिनका जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा जनपद के एक गांव में मनोरथ पंत और गोविंदी बाई के घर हुआ।
3: 19वीं सदी के आखिरी दशक में कुमाऊं अंचल का जनपद अल्मोड़ा कितना दुर्गम और सुविधा

रहा होगा, लेकिन उस कठिन स्थान से निकलकर बालक गोविंद बल्लभ ने अपनी लगन, प्रतिभा और मेहनत से पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया।

0: आइए चलते हैं पंत जी के गांव हमारे सहयोगी प्रतुल जोशी के साथ।
1: अल्मोड़ा से 25 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा जिले में कोसी नदी के पास स्थित है खूट गांव, जो कि आज पूरी दुनिया में जाना जाता है क्योंकि यहां एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को हुआ। आज खूट गांव में पंत जी की स्मृति में एक भवन है जिसमें उनकी एक खूबसूरत मूर्ति, जिसे भारत के महान कलाकार राम सुतार ने बनाया। इसके अलावा यहाँ पर एक संग्रहालय का निर्माण हो रहा है। इस संग्रहालय में पंत जी के जीवन से संबंधित चीजों को रखा जाएगा और साथ ही कुछ वर्ष पहले एक आईटीआई का निर्माण भी खूंट में हुआ था। प्रतिवर्ष 10 सितंबर को पंत जी के जन्मदिवस के अवसर पर यहाँ एक बड़ा आयोजन होता है और उस आयोजन में यहाँ के जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के लोग और साथ ही आसपास के गांव के लोग एकत्रित होते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। आज यही जानने के लिए मैं खूंट गांव में हूं और यहां के एक भूतपूर्व ग्राम प्रधान, जो कि इस कार्यक्रम के कई वर्षों से संयोजक भी रहे हैं, चंदन सिंह भोज साहब, वो हमारे साथ हैं। भोज साहब, ये बताएं कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जो आप लोग जन्म दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष 10 सितंबर को, तो उसमें क्या आप लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं?
2: इस कार्यक्रम में हम क्षेत्र के जितने भी विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज, प्राइमरी पाठशाला और अन्य जो सांस्कृतिक कलाकार अल्मोड़े में रहते हैं उनको भी हम आमंत्रित करते हैं और पंजी के जीवन से संबंधित एक निबंध प्रतियोगिता भी इसमें आयोजित की जाती है और प्रथम, द्वितीय और तृतीय वालों को फिर यहाँ पर पुरस्कार भी वितरण किया जाता है। विभिन्न विद्यालयों से आए हुए बच्चे अपने अनेक प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते हैं। पूरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, चाहे ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, यहाँ का विधायक हो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, यहाँ पर हर वर्ष कोई न कोई यहाँ आते रहते हैं और उनके सम्मुख हमको भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। इसी कार्यक्रम के जरिए यहाँ पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोविंद वल्लभ पंत म्यूजियम जो बन रहा है और खूंट महादुरेश्वर मोटर मार्ग और अन्य कई कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं या कुछ हो चुके हैं।
1: बहुत साहब, इस खूंट गांव में कुछ ऐसे बुजुर्ग भी रहे होंगे जो पंत जी के जीवन काल से, पंत जी से जुड़े रहे होंगे, उनकी यादें यहाँ चर्चा का विषय होती होंगी कि किस तरह पंत जी अपना जीवन बिताते थे, उनके जीवन की क्या खासियतें थीं जब वो भारत के गृह मंत्री थे या संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री थे या उससे पहले, आज़ादी से पहले संयुक्त प्रांत के वो प्रीमियर शेफ कहलाते थे। तो क्या कुछ ऐसे लोगों से कभी आप मिले गांव में, आपको उनकी जानकारी है?
2: मुझे मेरे पिताजी बताया करते थे, मेरे पिताजी हल्द्वानी में रहते थे, दूध का कारोबार करते थे, भैंसें पालते थे, तो गांव की निकटता के कारण मेरे पिताजी मुझे बताते थे कि मैं गोविंद वल्लभ पंत जी को दूध दिया करता था। मेरे पिताजी का नाम पान सिंह भोज था और वो कहा करते थे गोविंद वल्लभ पंत जी की, पनवा तू भी यहाँ बस जा हल्द्वानी में, जैसे आप नगर बसा है, तो हमारे बुजुर्ग से भी कहा था उन्होंने।
1: उस समय पंजी हल्द्वानी में रहते थे?
2: उस समय हल्द्वानी में रहते होंगे, मेरा जन्म तो 1956 में हुआ है, उससे पहले की कहानी ये रही होगी। पिताजी कहा करते थे कि उन्होंने कहा हमारे पहाड़ के जितने भी यहाँ लोग जाते थे हल्द्वानी में परिवार पालने के लिए, कुछ अपना धंधा करने के लिए, तो उनसे कहा करते थे कि आप लोग भी यहाँ बसो, लेकिन यहाँ के लोग वहाँ बस नहीं पाए, क्यों यहाँ मुरे मच्छर खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं करके डरते थे। जिसका आज ये हल्द्वानी, तिवारी जी कहा करते हैं गुलदस्ता, छोटा गुलदस्ता है हिंदुस्तान का करके आज वो बना है।

0: गोविंद वल्लभ पंत जी आज भी अगर आवाम में बेहद लोकप्रिय हैं, तो इसका कारण है उनका वो पारदर्शी व्यक्तित्व जिसने एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अनवरत संघर्ष किया तो दूसरी तरफ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नए भारत के निर्माण में अपना कुशल नेतृत्व दिया। उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पौड़ी के कुलपति एवं गोविंद वल्लभ पंत जी के विचारों और आदर्शों का जनता के बीच लगातार प्रसार करने वाले प्रोफेसर अजीत कर्नाटक पंत जी के व्यक्तित्व के बारे में कहते हैं।
1: स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब भारत आजाद हुआ और जब गोविंद वल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने, उससे पहले वो उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री प्रीमियर रह चुके थे। चार साल पहले से ही धीमे धीमे धीमे धीमे सत्ता को चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो इन सब लोगों को हो रहा था। और दूसरी बात यह है कि ये जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के समय के नेता हैं, चाहे आप राजेंद्र प्रसाद जी को ले लीजिए, चाहे अब्दुल कलाम आजाद को ले लीजिए, चाहे पंडित नेहरू को ले लीजिए, चाहे नरेंद्र जी को ले लीजिए, आप उस समय के जितने भी लोगों को लेंगे तो आप देखेंगे कि ये सब लोग या बहुत बुद्धिजीवी थे और या तो ये अध्यापक रहे थे और या ये वकील थे। तो ये पढ़े लिखे लोगों की जमात, बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत ही विद्वान लोग थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। गोविंद वल्लभ पंत जी का जहां तक बात है, आपको पहले से पता होगा कि बड़े मेधावी छात्र थे और रेमजे से हाई स्कूल करने के बाद फिर वो इलाहाबाद गए थे और फिर उसके बाद उन्होंने लॉ किया और लॉ में उनकी प्रथम श्रेणी आई थी और उस लॉ करने के बाद वो काशीपुर में और उससे पहले नैनीताल में उन्होंने अपनी वकालत करने की कोशिश की। और चूंकि उस समय पूरे देश में आंदोलन चल रहा था और खासकर बाल गंगाधर तिलक का नाम उस समय बहुत जोरों से लिया जाता था, गांधी जी उस समय हिंदुस्तान में आने वाले थे, गांधी जी से ही ये प्रभावित हुए। और जब पहली बार गांधी जी यहाँ आए थे कुमाऊं की यात्रा पर, तो गोविंद वल्लभ पंत जी उनके साथ थे और नेहरू जी का भी उनको बड़ा आशीर्वाद प्राप्त था, बहुत प्रेम था और गांधी जी से भी बड़ा प्रभावित थे वो। और सबसे बड़ी बात उनमें ये थी, उन्होंने कभी किसी पद की आकांक्षा नहीं की। यही बात उनको राजनीतिक क्षितिज में बहुत ऊपर तक ले गई। और आपको मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ, जब वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे और यहाँ पर एक उन्होंने जमींदारी प्रथा उन्मूलन का बड़ा जबरदस्त काम उठाया था, तो उस समय ही ये हुआ था कि इनको वित्त मंत्री के पद पर इनको बुलाया गया था केंद्र में, लेकिन उन्होंने ये बात बता के कि मेरा यहाँ कुछ काम चल रहा है स्टेट में, इसे पूरा करना है, तो वित्त मंत्री का पद उन्होंने ठुकरा दिया था।
2: पंत जी की स्मृति में 10 सितंबर को जो बड़े पैमाने पर आयोजन होते हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा बताएं।
1: जन्म शताब्दी वर्ष में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था, तभी उससे कुछ दिन पूर्व हम लोगों ने पंतनगर में गोविंद वल्लभ पंत जी की एक बहुत बड़ी विशालकाय मूर्ति स्थापित कराई थी। जैल सिंह साहब ने उसका उद्घाटन किया था और उसके बाद फिर निरंतर उसे एक वर्ष तक मैंने लगातार पूरे कुमाऊं में और विशेष रूप से पंतनगर में कई व्याख्यान आयोजित किए थे, जिसमें बड़े बड़े लोग साइंस के और एनवायरमेंट के, चाहे चंडी प्रसाद भट जी हों, चाहे सुंदरलाल भैगुणा हों, चाहे अच्छे कई खिलाड़ी हों, तो उन सबको मैंने बुलाया था और उनके व्याख्यान उसमें कराए थे और कई कार्यक्रम हमने साल में ऑर्गेनाइज किए। उसके बाद ये लगातार हम लोग 10 तारीख को मनाते रहे। पंतनगर में तो मैं ही इस कार्य को कराता था, बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। पंजी के बारे में लोग जानते हैं, समझते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी युवा के लिए, उनके लिए ये बहुत बड़े आदर्श है।

0: गोविंद बल्लभ पंत जी का जीवन एक सतत विकासमान व्यक्ति का जीवन था, एक ऐसे युग पुरुष का जीवन जिसने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, असफलताओं से सीख ली और फिर आगे बढ़े। देश की स्वतंत्रता के अमृत वर्ष में आजादी के आंदोलन के इस अग्रणी पुरुष के जीवन की मुख्य घटनाओं को आइए जानते हैं।
1: आप अल्मोड़ा के रैमजे स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर उच्च शिक्षा हेतु इलाहाबाद चले गए, जो उस समय शिक्षा और जन चेतना का बड़ा केंद्र था।
0: कानून की पढ़ाई पूरी कर 1910 में अल्मोड़ा में वकालत प्रारंभ की।
1: 1912 में हल्द्वानी के समीप स्थित काशीपुर चले गए, जहां वकालत खूब चलने के लिए साथ साथ देश सेवा में भी व्यस्त रहे। वहां प्रेम सभा और उदय राज इंटर कॉलेज की स्थापना की।
0: 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा।
1: कुमाऊं परिषद का प्रमुख उद्देश्य कुमाऊं में जागृति का प्रसार करना था। कुली बेगार, वन और राजस्व से जुड़े कई प्रश्नों पर कुमाऊं परिषद में विचार विमर्श होता रहा।
0: 1921 में वनाधिकारों को लेकर पर्वतीय क्षेत्रों में प्रतिक्रिया होने लगी। पंत जी ने इस समस्या का गहन अध्ययन किया। 1922 में उनका अध्ययन फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं नाम से प्रकाशित हुआ।
1: पंत जी 1916 की लखनऊ कांग्रेस में महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू से भेंट कर चुके थे। उनकी गिनती मॉडरेट यानी मध्य मार्गी नेताओं में होने लगी थी, जबकि कुमाऊं परिषद तथा कुली बेगार जैसे स्थानीय आंदोलनों की कमान बद्री दत्त पांडे जैसे प्रखर नेताओं के हाथ में थी। पंत जी स्थानीय राजनीति में सक्रिय भी रहना चाहते थे, लेकिन मर्यादित रूप में। उनकी ये दुविधा शक्ति समाचार पत्र में प्रकाशित राष्ट्रवादी कवि गोरधा की कविता से उजागर होती है।
2: काशीपुर के नामी प्लीडर, जिसको नहीं लाट का डर, श्री गोविंद पंत जी आज सजे हुए हैं अद्भुत साज। है परिषद इनको ही प्यारा, होवे नहीं रात दिन न्यारा, मॉडरेट अपने को कहते, बिना नाव मझधार में बहते।
1: १९२० में संयुक्त प्रांत की काउंसिल के लिए हुए पहले चुनाव में पंत जी नैनीताल से प्रत्याशी थे, परंतु अपनी साख के बावजूद वो ढिकुली रामनगर के धनी जमींदार से 39 मतों से हार गए। यूं तो इस पराजय के कई कारण थे, परंतु मुख्य था अधिकांश स्थानीय कांग्रेसी नेताओं का चितरंजन दास के आह्वान पर इस चुनाव का बहिष्कार करना, जबकि पंत जी काउंसिल में जाने के पक्षधर थे। चुनाव में हारने के बाद भी पंत जी ने हार नहीं मानी। अपनी सफल वकालत को छोड़ वो पूर्णतः राजनीतिक और सामाजिक सरोकारों में लग गए। इस बीच वो नैनीताल जिला परिषद के अध्यक्ष भी रहे। लिहाजा जब 1923 में काउंसिल के लिए दोबारा चुनाव हुए, तो वे सरकार परस्त बद्री दत्त जोशी को हरा कर

0: काउंसिल में जाने के पक्षधर थे। चुनाव में हारने के बाद भी पंत जी ने हार नहीं मानी। अपनी सफल वकालत को छोड़ वो पूर्णतः राजनीतिक और सामाजिक सरोकारों में लग गए। इस बीच वो नैनीताल जिला परिषद के अध्यक्ष भी रहे। लिहाजा जब 1923 में काउंसिल के लिए दोबारा चुनाव हुए तो वे सरकार परस्त बद्री दत्त जोशी को हरा कर नैनीताल से विधायक चुने गए और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
1: १९२८ का वर्ष पंथजी के जीवन में एक निर्णायक मोड़ लेकर आया। साइमन कमीशन के विरोध में लखनऊ में एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए वो पुलिस की लाठियों से बुरी तरह लहूलुहान हो गए। पंथजी अपने लंबे चौड़े शरीर के कारण आसानी से पुलिस के डंडों का निशाना बने, जिसके फलस्वरूप वो आजीवन शारीरिक विकृतियों से प्रभावित रहे। इस घटना ने पंथजी के राजनीतिक जीवन में उत्प्रेरक का कार्य किया। कुछ ही महीनों बाद जब महात्मा गांधी अपनी पहली कुमाऊं यात्रा पर आए तो इस यात्रा की पूरी व्यवस्था पंथजी ने ही की थी। गांधी की इस यात्रा ने पूरे कुमाऊं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने पूरे क्षेत्र में आजादी की अलख जगा दी।

0: स्थानीय मुद्दों जैसे जंगलात का प्रश्न, नायक जाति में सुधार, पहाड़ों में शिक्षा का विकास आदि में पंत जी के प्रयास सराहनीय रहे।
1: स्वाभाविक ही था कि 1937 में जब संयुक्त प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी तो पंत जी को ही प्रीमियर बनाया गया। यहाँ उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया। औपनिवेशिक दास्ता के अधीन एक राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार चलाना आसान नहीं था। स्वाधीनता के उपरांत उन्हें ही दोबारा संयुक्त प्रांत का मुख्यमंत्री बनाया गया। संयोग से राज्यपाल के पद पर पहले सरोजनी नायडू और फिर प्रखर विद्वान और राजनेता कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी रहे, जो पंत जी के व्यक्तित्व और कार्य कुशलता से परिचित थे। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में पंत जी ने कितने ही ऐतिहासिक निर्णय लिए। जमींदारी उन्मूलन, तराई में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को स्थापित करना, प्रदेश में सहकारिता आंदोलन का सफल संचालन, प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू करना, भारी उद्योग जैसे सीमेंट फैक्ट्री और लघु उद्योग जैसे रेशम, फल संरक्षण, चमड़ा उद्योग को बराबरी से विकसित करना।
0: तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बार बार जोर देने पर पंत जी ने 10 दिसंबर 1954 को केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर शपथ ली। ये स्वाधीन भारत के लिए एक चुनौती भरा समय था। देश में संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद जैसी भावनाएं पनप रही थी। पंत जी के मार्गदर्शन में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन इस कुशलता से किया गया कि इतने बरस बाद भी कतिपय अपवादों को छोड़कर वो कायम है। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें 1957 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
1: पंत जी की प्रशासनिक क्षमताओं के बारे में उनके समकालीन बहुत से

0: राजनीतिज्ञों एवं विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए। आप हैं देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा।
1: बहुत से ICS ऑफिसर्स ने चोटी के मुझसे कहा कि एक व्यक्ति है जिसे हम अपना गुरु मान लेंगे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। वो पहली बात ये थी, जो आमतौर से मंत्री नहीं करते, वो अपने विषय का स्वयं अध्ययन भी करते थे। हर फाइल को मुझे बताया गया कि पूरी उनकी पढ़ी रहती थी, और किसी ICS ऑफिसर के लिए, किसी ऑफिसर की हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने जाए और इधर उधर की बात कर ले। अगर उसने कुछ किया तो स्वयं बता देते थे कि देखो इस फाइल में पहले ये लिखा हुआ है। शुरू शुरू में लोगों का प्रयास रहता है। तो ये वो थे जिनको, जो उस समय के सबसे अच्छे सूझबूझ वाले सिविल सर्वेंट जिन्हें अंग्रेजों के साथ भी काम किया था, उन्होंने एक नहीं कईयों ने मुझसे यह कहा कि उसे मानते थे। फिर एक चीज उनकी खास थी कि वो इसको चलाने के लिए व्यक्तियों पर भी बहुत ध्यान देते थे। जैसे उनको मालूम रहता था कि यही नहीं कि कौन कौन कलेक्टर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, SP हैं, बल्कि ये कौन हैं, इनका पुराना रिकॉर्ड क्या है, कहाँ से आते हैं। बल्कि एक उनके लिए हंसी में कहा जाता था कि वो जन्म पत्री मिलाते थे। वो बराबर देखते थे कि वहां का, उस समय जो बहुत महत्व का था कि जो कलेक्टर है और SP है, उनके आपस में दोनों मिलकर कैसे चलेंगे। और उसके बाद हर एक को मालूम था कि पंत जी उससे व्यक्तिगत जानते हैं, और इसलिए हर आदमी इस कोशिश में रहता था कि मैं अच्छे से अच्छा करूं, और अगर कहीं कुछ गलती होती थी तो अपने ढंग से ऐसी तंबीह करते थे, वो समझ जाता था कि अब ये नहीं होना है। वो एक उनका अपना ढंग था, कह देते थे बड़ी से बड़ी बात बजाय कुछ उसको ज्यादा जोर से कहने के, लेकिन वो बहुत बामानी होती थी, अर्थ रखती थी। और उसी तरह से वो बराबर, क्योंकि ये चीज कम होती है, वो व्यक्ति कौन वहां के हालात में, किस क्षेत्र के हालात में वो कैसा कर सकेगा, उसका ज्ञान। और उसके लिए कभी कभी लोगों ने हमसे ये कहा कि शायद उनको एक फायदा था कि उनके पास एक ट्रेमेंडस मेमोरी थी, एक ऐसी याददाश्त थी जो भूलते नहीं थे किसी चीज को। तो मेरा तो ये कहना था कि वो तो ईश्वर की कृपा थी, लेकिन एक बात खास मेरे मन में जो रहती थी वो ये है कि वो जो काम है उसमें वो हृदय से, लगन से उसकी तरफ है। जब किसी बात में मन लगा हो तो वो फिर बात दूसरी हो जाती है, उसमें सब चीज आ जाती है, याद रहती है, उसमें थकान भी नहीं मालूम होती। तो इसलिए वो बराबर उस प्रकार से काम किया। और उन्होंने जो एक सबसे बड़ी खूबी होना चाहिए कि जो साथ में काम करते हों उनसे काम लेना, उसकी बड़ी भारी क्षमता थी। खुद तो आदमी बहुत काम कर लेते हैं, लेकिन खुद के साथ साथ जो लोग काम करने वाले हैं उनको, उनसे काम लेने की क्षमता कम होती है। और एडमिनिस्ट्रेशन में ये सबसे बड़ी चीज होती है। वो उनमें बहुत जबरदस्त थी, और जैसा मैंने कहा कि वो नाराजगी से भी और साथ साथ प्रेम से बहुत सा काम करा लेते थे। उनके साथ जिन लोगों ने काम किया, मुझे जितने भी मिले, वो उसको भूलते नहीं है, बल्कि उनको तो ये तक कहानियां सुनाते कि वो उस वक्त हुआ था ये तो ये पंत जी ने किया था। क्योंकि मुझे अवसर मिला कि जिन लोगों ने उनके साथ काम किया था, उन्होंने मेरे साथ, जब मैं मुख्यमंत्री और मंत्री बना तो मेरे साथ भी काम किया, तो वो अक्सर मुझे बताया करते थे कि पंत जी ने इस मामले में ये किया था, इसमें ये किया था। तो वो मेरे लिए भी, मैं तो एक प्रकार समझता हूं कि मार्गदर्शक हो जाता था। और गहराई के साथ, दिलचस्पी की बात जैसा मैंने कही, कोई प्रश्न उनके लिए छोटा नहीं होता था, कोई जिला छोटा नहीं था, कोई मसला छोटा नहीं था।
2: गोविंद बल्लभ पंत एक नेता ही नहीं अपितु एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। जात पात, क्षेत्रवाद

0: राजनीतिक तिगड़मबाजी से कोसों दूर देश की सेवा को समर्पित इस बहुमुखी प्रतिभा ने 7 मार्च 1961 को इस दुनिया को अलविदा कहा।
1: एक अनमोल हिमरत्न, पंडित गोविंद वल्लभ पंत के व्यक्तित्व और कृतित्व के कुछ प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित ये विशेष रूपक अभी आपने सुना। आलेख डॉ. अनिल कुमार जोशी, वाचन स्वर मनोज कुमार जोशी और उर्मिला जोशी, अतिरिक्त स्वर ज्योति जाटव और प्रतुल जोशी, प्रस्तुति सहयोग दीपिका पंत, संजय जोशी, प्रस्तुतकर्ता प्रतुल जोशी।
2: ये रूपक आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से प्रसारित किया गया।

FM 14.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम उत्तराखंड के लोकगीत।

आरती गौर के गाए इस गढ़वाली लोकगीत के बाद आइए कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाते हैं विक्रम सिंह बिष्ट और साथियों का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं उत्तराखंड के लोकगीतों का। कार्यक्रम के समापन में लीजिए सुनिए विनय तिवारी का गाया ये लोकगीत।

0: वीणा तिवारी के गाए इस कुमाऊनी लोकगीत के साथ ही हमारा आज का उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। दोपहर के 2:15 होने को हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
2: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
3: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की

0: की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मानसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, अरीसा पीठा, चकुली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव।

0: सभे प्रकाश दास आकाशवाणी समाचार भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह केरलम माहे ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी और कार्यकाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब किसान भाई सुने खेती की बातें। किसान भाइयों, आज की जानकारी का विषय है फसलों में उर्वरकों का संतुलित उपयोग एवं लाभ। जानकारी दे रही हैं डॉक्टर दीपा बिष्ट।
3: किसान भाइयों, हमारे देश की जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। त्वरित गति से बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्य सामग्री की मांग में काफी वृद्धि हुई है। चूंकि फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफलों में भी लगातार कमी आ रही है, अतः कम भूमि से अधिक उत्पादन लेकर ही खाद्यान्न आपूर्ति को बनाए रखा जा सकता है। यदि प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक उत्पादन लिया जाता है तो उस दिशा में मृदा से पोषक तत्वों का अत्यधिक दोहन होता है। ऐसी परिस्थिति में मृदा उर्वरा क्षमता में गिरावट आना स्वाभाविक है। अतः खाद्यान्न सुरक्षा बनाए रखने और खेती के टिकाऊपन के लिए मृदा उर्वरा क्षमता प्रबंधन अति आवश्यक है। मृदा उर्वरता का अभिप्राय उसकी उस क्षमता से है जो पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों को उचित एवं पर्याप्त मात्रा में प्रदान करके उनकी अच्छी वृद्धि में सहायक हो। उचित फसल चक्र अपनाकर मृदा उर्वरता में सुधार लाया जा सकता है। इसके अलावा संतुलित पादप पोषण द्वारा भी पौधों की वृद्धि व फसल उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। किसान भाइयों, आज हम फसलों में उर्वरकों के संतुलित प्रयोग व उसके लाभ पर चर्चा करते हैं। किसान भाइयों, पौधों के संपूर्ण जीवन काल में पोषक तत्व का महत्वपूर्ण स्थान है। पौधों के संतुलित विकास और फसलों से अधिक उपज लेने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रमुख कार्य पौधों को संरचनात्मक स्वास्थ्य प्रदान करना है, ये तीनों पोषण

तत्व हवा और जल से मिलते रहते हैं, अतः इन्हें अलग से डालने की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य 14 पोषक तत्वों में से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस व गंधक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं, जबकि पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम अन्य पोषक तत्वों के लिए नियात्मक तथा वाहक का कार्य करते हैं। वहीं लोहा, मैग्नीज, बोरान, जस्ता, ताबा, मॉलिब्डेनम, निकिल और क्लोरीन सूक्ष्म तत्व के रूप में पौधों के पोषण के साथ साथ उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इन पोषक तत्वों में से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, गंधक, जस्ता एवं लौह की कमी प्राय भारतीय मृदाओं में महसूस की जा रही है। देश के अनेक क्षेत्रों में इनकी अत्यधिक कमी हो चुकी है। शेष पोषक तत्वों की उपलब्धता की कोई खास समस्या नहीं है। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी का पता 3 विधियों से लगाया जा सकता है। पत्तियों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण देखकर, उसके उत्तकों का रासायनिक विश्लेषण करके और मिट्टी की जांच करके। इन विधियों में मिट्टी की जांच सबसे महत्वपूर्ण है। इससे मृदा में उपलब्ध पोषक तत्व की मात्रा का ठीक ठीक पता चल जाता है, जिसे मृदा उर्वरा क्षमता जांच भी कहते हैं। मिट्टी की जांच के उपरांत आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा में पूर्ति की जानी चाहिए। संतुलित पादप पोषण द्वारा पौधों की वृद्धि को बढ़ाया जा सकता है तथा फसलों के उत्पादन में भी वांछित वृद्धि की जा सकती है। संतुलित पादप पोषण की संकल्पना अत्यंत सरल है। संतुलित पादप पोषण की व्याख्या विश्व में सर्वप्रथम जर्मन रसायन शास्त्री निकोलस वान लिबिंग ने अपने द्वारा प्रतिपादित न्यूनता का नियम के द्वारा की थी। इस नियम के अनुसार यदि मृदा में किसी पोषक तत्व की कमी है, तब पौधों की वृद्धि इस सीमित तत्व द्वारा निर्धारित होगी, भले ही अन्य आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध क्यों न हो। इस सीमित तत्व के मृदा में प्रयोग से पौधों में वृद्धि को बढ़ाया जा सकता है। यदि एक से अधिक तत्वों की कमी पाई जाती है, तो न्यूनतम मात्रा वाला तत्व पौधों की वृद्धि को अधिकतम प्रभावित करता है। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी जंजीर की मजबूती उसकी सबसे कमजोर कड़ी निर्धारित करती है। यह तो सर्वविदित तथ्य है कि पोषक तत्वों की असंतुलित मात्रा न केवल कम व निम्न गुणवत्ता का उत्पादन देती है, अपितु मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों के भंडार का भी अत्यधिक दोहन करती है। जिन तत्वों को मांग से अधिक मात्रा में डाला जाता है, उनकी संपूर्ण मात्रा पौधों द्वारा अवशोषित नहीं हो पाती और निशालन या लीचिंग व किसी अन्य माध्यम से उसकी हानि हो जाती है। साथ ही कुछ पोषक तत्व जैसे लौह, जस्ता, ताबा की अधिक मात्रा के प्रयोग से पौधों में विषाक्तता, टॉक्सिसिटी हो सकती है। इस प्रकार संतुलित पोषण प्रबंधन सीमित संसाधनों का दुरुपयोग है। हमारे देश में हुए अनेक दीर्घकालीन प्रयोगों से यह सिद्ध होता है कि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए संतुलित पोषण श्रेष्ठतम विकल्प है। एक पोषक तत्व की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति अन्य तत्व के अवशोषण को भी प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए फॉस्फोरस व पोटेशियम उर्वरकों की अनुपस्थिति में पौधों की नाइट्रोजन के प्रति अनुक्रिया कम होती रहती है। पौधों में बढ़वार हेतु इन मुख्य पोषक तत्वों की अत्यंत आवश्यकता होती है। इनको यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं म्यूरेट ऑफ पोटाश या केवल NPK व यूरिया अथवा DAP यूरिया व म्यूरेट ऑफ पोटाश के रूप में फसलों में दिया जाता है। लेकिन तीनों तत्वों को एक संतुलित अनुपात में पूर्ति करना आवश्यक होता है, अन्यथा यूरिया का प्रभाव उस फसल में परिलक्षित नहीं होगा और वांछित उपज प्राप्त नहीं होगी। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस व पोटाश का अनुपात 8:3:1 तक पहुंच गया है, जो संतुलित नहीं है। इन तीनों में कम से कम 4:2:1 का अनुपात अब आवश्यक हो गया है। नाइट्रोजन के साथ यदि फॉस्फोरस व पोटाश की उपयुक्त मात्रा का प्रयोग किया जाए, तो फसल के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही गंधक या अन्य सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता अनुसार पूर्ति करनी चाहिए, अन्यथा यूरिया का प्रभाव फसल में निम्न कोटि का देखने को मिलेगा। परीक्षणों के परिणामों के आधार पर

0: यह भी सिद्ध हो गया है कि विभिन्न फसलों को मिट्टी की जांच के आधार पर यदि संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश के साथ साथ आवश्यक सूक्ष्म तत्वों को की आपूर्ति की जाए तो उपज में वांछित वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। किसान भाइयों, तीन मुख्य पोषक तत्वों के अलावा कभी कभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। मृदा में जस्ता, लौह, मैग्नीज व तांबा की आपूर्ति, इनके सल्फेट क्रमशः जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और कॉपर सल्फेट 300 से 400 ग्राम प्रति नाली की दर से की जा सकती है। मॉलिब्डेनम को सोडियम मॉलिब्डेट 10 से 20 ग्राम प्रति नाली व बोरान को बोरेक्स 40 से 100 ग्राम प्रति नाली के रूप में डाला जा सकता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले इन उर्वरकों का प्रयोग मृदा में मिलाकर, बीजों में मिलाकर एवं पत्तियों में छिड़काव द्वारा किया जा सकता है। चूंकि सूक्ष्म पोषक तत्व वाले इन रसायनों की थोड़ी सी मात्रा को ही काफी क्षेत्रफल में प्रयोग करना होता है, अतः महीन बलुई मिट्टी में वांछित रसायन की संतुलित मात्रा को मिलाकर प्रयोग किया जा सकता है। बोने से कुछ समय पूर्व वांछित तत्व वाले उर्वरकों को किसी जैविक पदार्थ या नम मृदा में मिलाकर उसे बीजों में मिश्रित कर देने से बीजों पर एक परत चढ़ जाती है जो अंकुरण के समय से ही तत्व की उपलब्धता बनाए रखती है। लेकिन तत्व की सांद्रता अधिक होने से बीजों का जमाव प्रभावित हो सकता है, अतः आवश्यकता है संतुलित मात्रा में ही उर्वरकों का प्रयोग किया जाए। सूक्ष्म तत्वों का एक निश्चित सांद्रता का घोल बनाकर पत्तियों में छिड़काव करना भी लाभप्रद होता है। किसान भाइयों, जैविक अथवा गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट सूक्ष्म पोषक तत्वों का खजाना होती है, अतः इनका खनिज उर्वरकों के साथ प्रयोग करने में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति की जा सकती है। साथ ही उर्वरकों की क्षमता में भी वृद्धि होती है, अतः फसलों से भरपूर पैदावार प्राप्त करने के लिए उन्नतशील किस्मों की बुआई तथा खाद व उर्वरकों का संतुलित प्रयोग अति आवश्यक है। अधिक उपज हेतु उर्वरकों की सही मात्रा का प्रयोग मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ साथ प्रदूषण रहित वातावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।
1: फसलों में उर्वरकों का संतुलित उपयोग एवं लाभ। अभी किसान भाई डॉक्टर दीपा बिष्ट से इस विषय पर जानकारी ले रहे थे। इसी के साथ हमारा आज का खेती की बातें कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब एक नज़र हमारे केंद्र से आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों पर।

आज रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन और रात्रि 10 बजे रविवासरीय संगीत सभा में सुनिएगा श्री जे एस श्रीराम का कर्नाटकी शैली में गायन। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और संध्या 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

शाम 5:05 पर कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम होगा शैल स्वर। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा कल्याण बोरा के गाए कुमाऊनी लोकगीत। युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुनते हैं शाम 5:15 पर। आज इस कार्यक्रम में जानकारी के विषय रहेंगे विश्व रक्तदाता दिवस और माय भारत प्लेटफॉर्म भारत के 12 वर्ष।

उत्तरायण कार्यक्रम का समय रहता है सायं 5:45। आज इस कार्यक्रम में सुनेगा कुमाऊनी गढ़वाली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम बुरांश। साथ ही चर्चा होगी विश्व रक्तदाता दिवस और योग की तकनीक आसन और लाभ विषय पर।

संध्या 6:41 पर भक्ति संगीत में आज के कलाकार रहेंगे दीपा नारायण और मुकेश। किसान भाई संध्या 7:15 पर आज सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियों का प्रबंधन विषय पर वार्ता सुनिएगा। वार्ताकार होंगे श्री मनोज भट्ट और संचालक होंगी श्रीमती रेणु संधवाल।

मिले जुले गीत और गजलों का कार्यक्रम सब रस होगा रात्रि 8 बजे और फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा संध्या 7:40 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम के तहत और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता लीजिए अब पेश है फिल्म संगीत एक ही फंडकार कार्यक्रम। आज इसके तहत हम आपको सुनवाएंगे अभिनेता भारत भूषण अभिनीत चंद फिल्मों के गीत। दोस्तों आज हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता भारत भूषण की जन्म जयंती है। भारत भूषण आज के दिन वर्ष 1920 को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में जन्मे थे। वे अपनी बेहतरीन संगीतमय और ऐतिहासिक भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में कालिदास, तानसेन, कबीर, बैजू बावरा और मिर्जा गालिब जैसे एक से बढ़कर एक लोगों की भूमिका निभाई।

दोस्तों, भारत भूषण के पिता राय बहादुर मोतीलाल वकील थे और चाहते थे कि भारत भी उन्हीं की तरह वकील बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि भारत भूषण तो एक्टर बनना चाहते थे। भारत भूषण ने अलीगढ़ से ग्रेजुएशन किया और इसके बाद मुंबई चले आए। उन्हें पहला ब्रेक दिया डायरेक्टर नरेश शर्मा ने अपनी फिल्म भक्त कबीर में काशी नरेश का रोल और 60 रुपये महीना की नौकरी के रूप में। इस प्रकार सन 1942 में रिलीज हुई फिल्म भक्त कबीर में उनका पहला रोल था। भक्त कबीर फिल्म के बाद भारत भूषण की किस्मत ही खुल गई। इसके बाद उन्होंने भाईचारा, सावन, जन्माष्टमी, बैजू बावरा, मिर्जा गालिब जैसी कई फिल्में की। ये वो दौर था जब किस्मत भारत भूषण पर मेहरबान थी। देखते ही देखते उन्होंने मुंबई में न सिर्फ कई बंगले खरीद लिए बल्कि महंगी महंगी कारें भी खरीद ली। और इसी बीच उनके बड़े भाई रमेश ने उन्हें प्रोड्यूसर बनने की सलाह दी। भाई का कहा मानकर भारत भूषण ने कई फिल्में प्रोड्यूस की। इनमें से 2 फिल्में बसंत बहार और बरसात की रात सुपरहिट हुई और भारत भूषण मालामाल हो गए।

तो भारत भूषण की फिल्में हिट होने के बाद उनके भाई ने उन्हें और फिल्में बनाने और अपने बेटे को हीरो बनाने के लिए उकसाया। भारत भूषण ने उनकी बात मान ली, लेकिन अफसोस कि बाद में उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई वो सब फ्लॉप होती गईं। ऐसे में भारत भूषण कर्ज में डूब गए और पाई पाई को मोहताज हो गए। भारत भूषण ने जितना कमाया था वो सब गंवा दिया। जिंदगी के आखिरी दिनों में भारत भूषण काफ़ी परेशान हो गए। इज्जत, दौलत, शोहरत सब तबाह हो चुका था। काफ़ी महंगी गाड़ियों में घूमने वाला टॉप मोस्ट हीरो अब लोगों को बस की लाइन में खड़ा दिखता था।

श्रोताओ, भारत भूषण आखिरी दिनों में बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और 27 जनवरी 1992 को वे इस फानी दुनिया को छोड़ गए। बड़े अफसोस की बात है कि उनके आखिरी वक्त में न कोई इलाज कराने वाला था और न अर्थी उठाने वाला। भारत भूषण ने अपने आखिरी वक्त में कहा था, मौत तो सबको आती है लेकिन जीना सबको नहीं आता, और मुझे तो बिल्कुल नहीं आया। आज उनकी जन्म जयंती पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज भले ही वे हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनके द्वारा अभिनीत और उनकी बनाई फिल्मों के माध्यम से वे सदैव हमारे स्मृति पटल पर बने रहेंगे।

श्रोताओ, एक ही फनकार के तहत आज की हमारी कलाकार थी क्षमा कीजिएगा, हमारे कलाकार थे अभिनेता भारत भूषण। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म संगीत सदाबहार फिल्मी गीत।

फिल्मी गीत के सभी श्रोताओं को रोशनी वालिया का सास्नेह अभिवादन। श्रोताओं, आज मैं आपको सुनवा रही हूँ गुजरे जमाने की पार्श्व गायिका शारदा राजन अयंगर के गाए चंद फिल्मी की। शारदा राजन अयंगर, जी हाँ दोस्तों, जिन्हें शारदा के नाम से जाना जाता था। 25 अक्टूबर सन 1933 को जन्मी शारदा आज के ही दिन यानी 14 जून सन 2023 को 86 वर्ष की आयु में इस फानी दुनिया से रुखसत हो गई। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें अपने भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और सुनते हैं उन्हीं के गाए चंद फिल्मी की।

श्रोताओं, शारदा विशेष तौर पर फिल्म सूरज के मशहूर गीत तितली उड़ी के लिए याद की जाती हैं। उन्होंने 60 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। उन्हें फिल्मकार राज कपूर ने ईरान में गाते हुए सुना था और बॉलीवुड में पहला ब्रेक दिया था।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया है शारदा और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में, सीमा फिल्म से। गुलजार के बोलों को सुरों में पिरोया है शंकर जय किशन ने।

दोस्तों शारदा को वर्ष 1970 की फिल्म जहां प्यार मिले के कैबरे गीत बात जरा है आपस की के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था। बहुभाषी प्रतिभा की धनी शारदा ने तेलुगु, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी में भी गाने गाए हैं। बहरहाल इस वक्त हम आपको सुनवा रहे हैं सपनों का सौदागर फिल्म का गीत शारदा, मुकेश और साथियों की आवाज़ों में। गीत के बोल शैलेंद्र के हैं, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

ये सदा बहार फिल्मी नगमे इस वक्त आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली पेशकश गुमनाम फिल्म का नगमा। इस नगमे में शारदा का साथ दिया है मोहम्मद रफ़ी ने, हसरत जयपुरी के बोल हैं और धुन बनाई है शंकर जय किशन ने।

श्रोतों, 1970 के दशक के उत्तरार्ध में शारदा ने मंदिर, मस्जिद और मेला जैसी फिल्मों के लिए सफल संगीत तैयार किया। वर्ष 2007 में उन्होंने अंदाजे बयां और नामक एक समीक्षकों द्वारा प्रशंसित एल्बम जारी किया, जिसमें मिर्जा गालिब की गजलों पर आधारित उनकी अपनी रचनाएं शामिल थी। तो आइए इस वक्त आपको सुनवाते हैं शारदा का गाया दीवाना फिल्म का ये गीत। गीत के बोल शैलेंद्र के हैं, धुन बनाई है शंकर जय किशन ने।

तो दीवाना फिल्म के इस गीत के बाद अब हम आपके लिए लेकर आए हैं कल आज और कल फिल्म का नगमा शारदा की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और धुन बनाई है शंकर जय किशन ने।

प्रणव शारदा ने फिल्म उद्योग में संगीत निर्देशक के रूप में काम करने वाली कुछ गिनी चुनी महिला पार्श्व गायिकाओं में से एक के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश और महेंद्र कपूर जैसे दिग्गज पुरुष गायकों के साथ काम किया और कैबरे और रोमांटिक पॉप हिट गानों का एक अविस्मरणीय संग्रह पीछे छोड़ दिया। तो आइए चलते चलते अब हम आपको सुनवाते हैं शारदा और मुकेश के युगल स्वरों में अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का गीत। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में गीत के बोल हैं हसरत जयपुरी के।

तो दोस्तों ये था आज का सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम पार्श्व गायिका शारदा राजन अयंगर के नाम। और अब इसी के साथ अपनी रेडियो सखी रोशनी वालिया को दीजिए आज के कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।

सदाबहार फिल्मी गीत। अभी श्रोता फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय अपराह्न के ठीक 3:30 हुए हैं और अब हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारण यहीं पर संपन्न होते हैं। अपने सायंकालीन सभा में सायं 5 बजे पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को हैं अब हमारी आज की सायंकालीन सभा के प्रसारण आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में अन्य देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और उद्यम पूंजीदाता भी शामिल हुए। इसमें उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा तथा जैव प्रौद्योगिकी सहित 13 प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार प्रदर्शित किए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और फ्रांस के मजबूत संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
2: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के बाहर इस विशेष पहल की मेजबानी को फ्रांस के लिए सम्मान का विषय बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को न केवल अपार प्रतिभाओं से संपन्न देश के रूप में देख रही है, बल्कि नवाचार के देश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में भी देख रही है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद और इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति सहित कई प्रमुख व्यापारिक नेता भी उपस्थित थे। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों आज भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि राज्य को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रेलवे परियोजनाओं और बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक गलियारा परियोजना के लिए भी बड़ी राशि दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 1.25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारम्भ और उद्घाटन भी किया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट वन के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है।

0: दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोम्मा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहत ने रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे डेओक को 5-1 से हराया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंगम के एजबेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम शैलसर। इस कार्यक्रम में आज सुनिए कल्याण बोरा का गाया ये कुमाऊँनी लोकगीत।

कल्याण बोरा और साथियों के स्वरों में ये छपेली स्वरूप का कुमाऊनी लोकगीत अभी आपने सुना। इसी के साथ आज का शैलस्वर कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण, हमारे आज के शेष और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। पहले एक नजर आज के शेष कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, आज रात्रि 10 बजे रविवासरीय संगीत सभा में हम आपको सुनवाएंगे जेएस श्रीराम का कर्नाटक गायन। ये कार्यक्रम सुनिएगा हमारे दिल्ली केंद्र से रात्रि 10 बजे। अब से कुछ देर बाद 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। उत्तरायण कार्यक्रम में श्रोता साथी आज सुनेंगे कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का फरमाइशी साप्ताहिक कार्यक्रम बुरांश। भक्ति संगीत कार्यक्रम आप सुनते हैं रोजाना 6:41 पर। 7 बजे प्रादेशिक लोक संगीत में आज हम आपको सुनवाएंगे गढ़वाली लोकगीत। 7:15 पर प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि में सुनिएगा ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियों का प्रबंधन। वार्ताकार होंगे श्री मनोज भट्ट और आपसे बातचीत करेंगे श्रीमती रेणु सनवाल। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 7:40 पर। रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रमों में मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस होगा रात्रि 8 बजे। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत। ये था हमारे आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। अब एक नजर कल की दोनों सभाओं पर। श्रोताओ, हमारी कल की प्रातःकालीन सभा का आरंभ होगा 5:25 पर। सुबह 6:05 पर विचार बिंदु कार्यक्रम में कल विचार प्रसारित होगा कोरे कागज की महिमा। आराधना कार्यक्रम के तहत भक्ति संगीत हम आपके लिए लेकर आते हैं 6:10 पर। कल सुबह 6:50 पर विविधा कार्यक्रम में सुनिएगा आकाशवाणी अल्मोड़ा स्थापना दिवस पर चर्चा। श्री रामचरित मानस गान पाठ का 125वां अंक सुनिएगा सुबह 7:10 पर। 7:30 पर कल सुबह लोक मंजरी कार्यक्रम में शैलजा मसीह के गाए कुमाऊनी लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में सहनाई वादन सुनिएगा 8:30 पर। सुबह 9:05 पर फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत निर्झर हम आपके लिए लेकर आते हैं। सबरंग कार्यक्रम होगा 10:05 पर। 10:35 पर सुनिएगा फिल्म संगीत सुरबहार। फिल्म संगीत हम आपको फिर सुनवाएंगे 11 बजे सैनिकों के लिए कार्यक्रम में। मध्याह्न 12 बजे मेरी पसंद कार्यक्रम में। 2:45 पर फिल्म संगीत एक ही फनकार और सभा के समापन में 3 बजे सदाबहार फिल्म गीत कार्यक्रमों के तहत। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का आनंद उठाइएगा 11:30 पर। महिलाएं सुनती हैं कार्यक्रम घर संसार 12:30 पर। कल चर्चा का विषय होगा बुजुर्गों का हो सम्मान और उत्तराखंड की पिरूल वुमेन श्रीमती मंजू आर साह से मुलाकात करेंगी संगीता तिलारा। सुगम संगीत कार्यक्रम का आनंद उठाइएगा 1:15 पर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1306वीं कड़ी प्रसारित होगी 1:30 पर। उत्तराखंड के लोकगीत आप सुनते हैं अपराह्न 2 बजे। 2:30 पर काश्तकार भाई सुनेंगे खेती की बातें में पर्वतीय क्षेत्रों में भट्ट की वैज्ञानिक खेती। वार्ताकार होंगी सुश्री पूजा ओली। श्रोताओ, हमारी कल की सायंकालीन सभा में रात्रि 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे दिल्ली केंद्र से। शाम 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम में शैलजा मसीह का गाया कुमाऊनी लोकगीत प्रसारित होगा। युवा साथी वाणी कार्यक्रम सुनेंगे 5:15 पर। कल वार्ता प्रसारित होगी युवाओं का साथी आकाशवाणी। वार्ताकार होंगी हिमानी रोतेला। उत्तरायण कार्यक्रम श्रोता साथी सुनते हैं 5:45 पर। कल इस कार्यक्रम में सुनिएगा योग बढ़ती उम्र के साथ कैसे स्वस्थ रहें का विज्ञान। इस विषय पर क्षेत्र संकलित कार्यक्रम। भक्ति संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:41 पर। कल शाम 7 बजे ग्राम जगत कार्यक्रम में सुनिएगा जैविक खादों का उपयोग और लाभ विषय पर चर्चा। 7:40

मिनट पर और रात्रि 9:15 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे फिल्म संगीत, मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस होगा रात्रि 8 बजे, रात्रि 10 बजे सुगम संगीत और सभा के समापन में रात्रि 10:30 पर आनंद उठाइएगा फिल्म संगीत का। श्रोताओ, ये थे कार्यक्रम विवरण हमारे आज के शेष और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: तो स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी रेडियो मित्र अंजलि। दोस्तों, हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन सभी स्वैच्छिक रक्तदाताओं को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जो बिना किसी स्वार्थ के अपना रक्तदान करके अनगिनत लोगों का जीवन बचाते हैं। दोस्तों, रक्त हमारे शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने का कार्य रक्त ही करता है। किसी दुर्घटना, गंभीर बीमारी, बड़े ऑपरेशन के दौरान कई बार मरीजों को रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे समय में रक्तदान किसी व्यक्ति के लिए जीवनदान साबित हो सकता है। विश्व रक्तदाता दिवस हर वर्ष 14 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये दिन प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी जिसके कारण सुरक्षित रक्त चढ़ाना संभव हो सका। इनके इस योगदान ने चिकित्सा विज्ञान में एक नई क्रांति ला दी। कई लोग रक्तदान को लेकर विभिन्न प्रकार की गलत धारणाएं रखते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है या ये स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित है। रक्तदान के बाद शरीर कुछ ही समय में खोए हुए रक्त की पूर्ति कर लेता है। दोस्तों, एक यूनिट रक्त से कई लोगों की मदद की जा सकती है। रक्त को अलग अलग घटकों जैसे लाल रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार एक रक्तदाता एक साथ कई मरीजों के जीवन को बचाने में योगदान दे सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित रक्तदान करने से समाज में मानवता, सहयोग और सेवा की भावना मजबूत होती है। रक्तदान एक ऐसा दान है जिसे कृत्रिम रूप से बनाया नहीं जा सकता। इसका एकमात्र स्रोत स्वस्थ मानव ही है। इसलिए प्रत्येक योग्य व्यक्ति को समय समय पर रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी बात विश्व रक्तदाता दिवस के बारे में। अब कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं मेडिकल की छात्रा समृद्धि रौतेला से विश्व रक्तदाता दिवस विषय में हमारी ये खास भेंट वार्ता। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम युववाणी में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जा रहा है, सबसे पहले आप बताइए कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है।
1: विश्व रक्तदाता दिवस लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने और उन लोगों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है जो स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं।
0: जी मैम, रक्तदान को महादान क्यों कहा जाता है?
1: क्योंकि रक्त का कोई आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट नहीं है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर रक्त मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है।
0: जी हाँ, आज के समय में रक्तदान की आवश्यकता कितनी है?
1: अस्पतालों में दुर्घटना, ऑपरेशन, प्रसव और कई बीमारियों के मरीजों को नियमित रूप से रक्त की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसकी आवश्यकता हमेशा बनी रहती है।
0: जी हाँ मैम। मैम, क्या हर व्यक्ति रक्तदान कर सकता है?
1: नहीं, केवल स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्वास्थ्य मानकों को पूरा करना जरूरी होता है।
0: जी हाँ, लोग रक्तदान करने से क्यों घबराते हैं?
1: अक्सर जानकारी की कमी और कुछ गलत धारणाओं के कारण लोग घबराते हैं। कई लोगों को लगता है कि रक्तदान से

0: कमजोरी आ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है।
1: जी हाँ, क्या रक्तदान करने से शरीर पर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है?
0: नहीं, स्वस्थ व्यक्ति के लिए रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित प्रक्रिया है। शरीर कुछ समय में रक्त की कमी को पूरा कर लेता है।
1: जी हाँ, युवाओं की इसमें क्या भूमिका हो सकती है?
0: युवा रक्तदान के प्रति जागरूकता फैला सकते हैं और स्वयं भी नियमित रक्तदाता बनकर समाज की मदद कर सकते हैं।
1: क्या रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी आ जाती है?
0: नहीं, यूजुअली स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान से कोई स्थायी कमजोरी नहीं होती। कुछ समय आराम और पर्याप्त पानी पीने से व्यक्ति जल्द ही सामान्य हो जाता है।
1: रक्तदान के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: कुछ समय आराम करना चाहिए, पर्याप्त पानी पीना चाहिए और उसी दिन बहुत अधिक शारीरिक मेहनत से बचना चाहिए।
1: जी हाँ, विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आपका क्या संदेश है?
0: यदि आप स्वस्थ हैं और रक्तदान के योग्य हैं, तो कम से कम एक बार रक्तदान अवश्य करें। आपका यह छोटा सा कदम किसी के लिए जीवन दान बन सकता है।
1: जी मैम, मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम युववाणी में आए।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारी ये खास भेंट वार्ता। अब कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
6: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
7: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
8: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
9: जी,
8: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
9: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
8: पर ये होगा कैसे?
9: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
8: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो
9: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
8: बस समझ गया।
9: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
10: RBI कहता है,
11: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: दोस्तों, अब कार्यक्रम में आपको बताते हैं माई भारत प्लेटफॉर्म के बारे में। दोस्तों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। देश की बड़ी आबादी युवाओं की है। युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार ने माई भारत प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। ये एक तकनीक आधारित मंच है जिसका उद्देश्य युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें देश के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के अवसर प्रदान करना है। ये युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एक राष्ट्रीय मंच है। इसका उद्देश्य युवाओं को समान अवसर उपलब्ध कराना है ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकें। इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये युवाओं को सरकारी विभागों, निजी संस्थानों और गैर लाभकारी संगठनों द्वारा उपलब्ध विभिन्न अवसरों से जोड़ती है। इसके माध्यम से युवा स्वयं

सेवा, प्रशिक्षण, कौशल विकास, नेतृत्व विकास जैसे कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। माय भारत युवाओं को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें वास्तविक कार्यस्थलों और सामाजिक गतिविधियों से जोड़ता है। इसे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कहा जाता है। इससे युवाओं को व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है और उनके रोजगार कौशल में भी वृद्धि होती है। दोस्तों, माय भारत प्लेटफॉर्म का उद्देश्य केवल युवाओं को अवसर देना नहीं है, बल्कि उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाना भी है। पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान, सामाजिक जागरूकता और सामुदायिक सेवा जैसे गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने कौशल, ज्ञान और सामाजिक योगदान को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो माय भारत प्लेटफॉर्म आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। ये केवल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि युवाओं को सशक्त बनाने का एक राष्ट्रीय अभियान है। तो दोस्तों, ये थी बात माय भारत प्लेटफॉर्म के बारे में। अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों कार्यक्रम में बढ़ते हैं हमारे आज के अंक विशेष घटनाक्रम की ओर और बताते हैं आपको सप्ताह भर की प्रमुख घटनाओं के बारे में। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा, ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की ओर से मिसाइल और हवाई हमलों की खबरें सामने आई हैं। इस स्थिति ने पूरे पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ा दी है। भारत सहित कई देशों ने संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की है। इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार भी प्रभावित हुआ है। दोस्तों 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। इस अवसर पर समुद्री प्रदूषण और समुद्री जैव विविधता संरक्षण पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न देशों ने समुद्रों को स्वच्छ रखने और प्लास्टिक कचरे को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है और इस अवसर पर भारत में भी जागरूकता अभियान चलाए गए। दोस्तों विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह G7 के सम्मेलन की तैयारी तेज रही। वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों पर चर्चा प्रमुख विषय है। कई देशों के नेताओं ने आपसी सहयोग बढ़ाने और आवश्यकता बताई है। सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि ये 52वां G7 शिखर सम्मेलन है। और दोस्तों आज 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जा रहा है। देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि रक्तदान से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो दोस्तों ये थी सप्ताह भर की प्रमुख घटनाएं। अब कार्यक्रम में आपका मनोरंजन करवाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ।

तो सब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आज के इतिहास की ओर और बताते हैं आपको कि आखिर क्यों है आज का दिन इतिहास के पन्नों में खास। आज ही के दिन वर्ष 1901 में पहली बार गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। वर्ष 1951 में आज ही के दिन पहले कॉमर्शियल कंप्यूटर दुनिया के सामने आया था। यूनिवैक 1 नामक इस कंप्यूटर को अमेरिकी जनगणना ब्यूरो ने इस्तेमाल किया था। वर्ष 1940 में आज दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेनाएं पेरिस में बिना रोक टोक घुस गई थी और पेरिस पर कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों, ये थी आज के इतिहास की बातें। अब कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों अब कार्यक्रम में हो चला है समय हमारे आज के प्रश्न का। कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पूछते हैं आपसे प्रश्न और बताते हैं बीते दिन पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर और सही उत्तर लिख भेजने वाले हमारे साथियों के नाम। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे कल के प्रश्न की ओर। हमारा कल का पूछा गया प्रश्न था, दिवंगत भारतीय खिलाड़ी जसपाल राणा का संबंध किस खेल से था? इसका सही उत्तर है निशानेबाजी। इसका सही जवाब हमें भेजा है छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू और आराध्या साहू ने। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा और पूजा परिहार ने। छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और जगदीश जोहरी ने। अब नोट कीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? अगर जानते हैं आप इस प्रश्न का सही उत्तर तो हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर

9411011122 पर। हमें रहता है इंतजार आपके मैसेजेस का। इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। कल एक नए अंक के साथ फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।

उत्तरायण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं के मैं नीरू गोस्वामी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत छो आपू सब लोगों का हमारे आज एक उत्तरायण कार्यक्रम में है। श्रोताओं आज छो इतवार और आज एक दिन हमारे उत्तरायण कार्यक्रम में हम प्रस्तुत करनो आपू लोगों के कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम बुनास। तो श्रोताओं यह कार्यक्रम की शुरुआत हवेर पहली आप लोगों तगर कर लियो दो चार बातचीत और बातचीत तक शुरुआत करनो श्रोताओं रक्तदान दिवस अखबार में। तो श्रोताओं प्रत्येक वर्ष यानी कि आज एक दिन 14 जून के विश्व रक्तदाता दिवस मनाई जा। यह दिवस का उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करण और लोगों के रक्तदानक प्रति जागरूक करण छो। श्रोताओं रक्त मानव जीवनक अमूल्य तत्व छो। दुर्घटनाओं और गंभीर बीमारियों प्रसवक दौरान होने वाले रक्तस्राव थैलेसीमिया कैंसर और विभिन्न शल्य चिकित्साओं में रक्त आवश्यकता पड़े। श्रोताओं विज्ञान और चिकित्सा क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां प्राप्त कर रखी लेकिन अल तक रक्त कोई कृत्रिम विकल्प विकसित नहीं करी जा सको। यह कह लीजिए रक्त आवश्यकता केवल रक्तदान बटे ही पूरी करी जा सके। श्रोताओं विशेषज्ञों के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति सुरक्षित रूप पर रक्तदान कर सकनी और रक्तदान अल शरीर के कोई हानि नहीं हुई बल्कि शरीर कुछ ही वक्त में रक्त कमी पूर्ति कर लें और रक्तदान करना समाजक प्रति उत्तरदायित्व भावनालय विकसित है और कोई जरूरतमंद मनखिक जीवन हम बचा सकनो। श्रोताओं आज ले कई लोगों में रक्तदान के लिबेर भ्रांतियां और डर मौजूद छो। कुछ लोग सोचने की रक्तदानल कमजोरी है जाए जबकि चिकित्सकीय दृष्टि या धारणा सही नहीं छो। श्रोताओं यदि रक्तदान निर्धारित मानकों के अनुसार करी जाओ तो यह पूर्व प्रकार सुरक्षित प्रक्रिया छो और विश्व रक्तदाता दिवस हमन के यह संदेश दियो कि रक्तदान के एक सामाजिक आंदोलन बनाई जाओ। युवाओं स्वयंसेवी संस्थाओं शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य विभाग के मिले हुए लोगों के नियमित और स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करण छे। तो यह अवसर पर हम संकल्प लिनो कि आवश्यकता पड़न पर रक्तदान करूँ और दुहर कहले यह लीजिए प्रेरित करूँ। हमर एक नानो नन प्रयास कोई मनखी के नई जीवन दी सकूँ। तो श्रोताओ रक्तदान महादान छू किला की यह कह के कोई नई जीवन प्रदान करूँ। श्रोताओ रक्तदान दिवसक अवसर पर हम आप लोगों के लिए लेवे आ रहे हैं।

क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता। तो श्रोताओ सुनो, यह भेंट वार्ता विषय छु रक्तदान महाकल्याण। और श्रोताओ, यह विषय पर जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा पैथोलॉजी विभाग में रक्त केंद्र प्रभारी डॉक्टर कपिल तिवारी जू दगड़ बातचीत और इनर दगड़ भेंट करण लाग रही नीरू गोस्वामी। श्रोताओ, आधुनिक चिकित्सा में रक्त का कोई अन्य कृत्रिम विकल्प उपलब्ध नहीं है, इसलिए मानव जीवन को बचाने के लिए केवल मानवीय रक्तदान ही एकमात्र सहारा है। यह दिवस न केवल जीवन रक्षक दाताओं के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है, बल्कि समाज में सुरक्षित और नियमित रक्तदान की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। तो इसी विषय पर आज हमसे बातचीत कर रहे हैं जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा पैथोलॉजी विभाग

0: बल्कि समाज में सुरक्षित और नियमित रक्तदान की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। तो इसी विषय पर आज हमसे बातचीत कर रहे हैं जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा पैथोलॉजी विभाग के रक्त केंद्र प्रभारी के पद पर कार्यरत डॉक्टर कपिल तिवारी जी से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए।
1: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कपिल तिवारी जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में रक्त केंद्र प्रभारी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं MD पैथोलॉजी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झांसी से मैंने MD पैथोलॉजी किया है और वर्तमान में सन 2025 से मैं अल्मोड़ा में कार्यरत हूँ।
0: डॉक्टर साहब, जैसे कि रक्तदान कहा गया है, तो रक्तदान क्या है और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, ये हमारे श्रोताओं को आप बताइए।
1: देखिए, सर्वप्रथम हम जानते हैं कि विश्व रक्तदाता दिवस प्रथम बार 14 जून 2004 को मनाया गया। यह तिथि आधुनिक रक्त समूह प्रणाली के जनक कार्ल लेविस्टर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चुनी गई।
0: जी,
1: इसे 58वीं स्वास्थ्य सभा द्वारा नामित किया गया तथा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सहयोग के साथ मनाया गया। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए धन्यवाद देना, सुरक्षित रक्तदान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना तथा लोगों को नियमित और स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करना है, ताकि सभी जरूरतमंद मरीजों को समय पर सुरक्षित रक्त उपलब्ध हो सके। सन 2026 की थीम वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड एंड सेव लाइव्स है।
0: जैसे कि रक्तदान कहा गया है, तो रक्तदान कौन कौन कर सकते हैं और किस उम्र तक ये किया जा सकता है?
1: रक्तदान सामान्यतः 18 से 65 वर्ष की आयु के स्वस्थ कोई भी स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर या उससे अधिक हो एवं उसका वजन कम से कम 45 किलोग्राम हो। इसके अतिरिक्त रक्तदाता का सामान्य स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। कोई भी पुरुष रक्तदाता जिसका पिछला रक्तदान 90 दिन पूर्व हुआ हो अथवा महिला रक्तदाता जिसने 120 दिन पहले रक्तदान किया हो, वह रक्तदान कर सकते हैं। इन सभी मापदंडों को पूर्ण करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से रक्तदान कर सकता है।
0: जी डॉक्टर साहब, ये तो हुई रक्तदान कौन कौन कर सकता है, तो रक्तदान से पहले या बाद में क्या क्या जांचें होती हैं?
1: देखिए, रक्तदान से पूर्व रक्तदाता के सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है, जिसके अंतर्गत वजन, रक्तचाप एवं ऊंचाई इत्यादि की जाँच की जाती है। रक्त दौरान के दौरान एवं उसके बाद में रक्त नमूने की प्रयोगशाला में जांच की जाती है, जिसमें हीमोग्लोबिन, रक्त समूह, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, सिफिलिस एवं मलेरिया की जांच होती है। इन जांचों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रक्त दाता स्वस्थ है एवं प्राप्त जिस रोगी को वो रक्त प्राप्त हो रहा है वह रक्त उसके लिए सुरक्षित।
0: डॉक्टर साहब, क्या हर व्यक्ति का रक्त सीधे किसी मरीज को चढ़ाया जा सकता है?
1: नहीं, सामान्यतः रक्त को रक्त अवयवों में, मतलब जो उसके कंपोनेंट होते हैं, उसमें विभाजित किया जाता है एवं मरीज की आवश्यकता अनुसार अवयव को ही मरीज को चढ़ाया जाता है, जिसमें पेंड RBC, प्लेटलेट्स एवं प्लाज्मा होता है। नितांत आवश्यक होने पर होल ब्लड को उपयोग में लिया जाता है, जिसके लिए भी मेरे द्वारा पहले बताई गई जितनी समस्त जांचें हैं उन जांचों में सही पाए जाने के उपरांत एवं क्रॉस मैचिंग में मरीज के खून के साथ मेल होने पर ही होल ब्लड को मरीज को दिया जाता है।
0: जी, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने हमारे श्रोताओं को। तो डॉक्टर साहब, रक्तदान करने से पहले और बाद में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: रक्तदान से पूर्व रक्तदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह स्वयं पूर्ण रूप से स्वस्थ है। रक्तदान के दिन अगर वो किसी भी प्रकार की अस्वस्थता महसूस कर रहे हैं तो उस दिन उनको रक्तदान नहीं करना चाहिए। रक्तदान से पूर्व किसी भी प्रकार की फास्टिंग अथवा व्रत नहीं रखना चाहिए। हाइड्रेटेड अर्थात पूरा, मतलब पानी वगैरह पूरा पीना चाहिए, भोजन लेना चाहिए एवं रक्तदान के बाद दिए जाने वाले रिफ्रेशमेंट को लेना चाहिए और कम से कम 15 मिनट तक आराम करना चाहिए। अगले 24 घंटे में अतिरिक्त तरल लेने जैसे जूस, पानी इत्यादि लेनी चाहिए एवं भारी काम से बचना चाहिए। जिस स्थान से सुई से खून लिया गया है उसका ध्यान रखना चाहिए एवं अगर किसी भी प्रकार की रक्तदाता को कोई समस्या

0: समस्या होती है तो अपने नजदीकी चिकित्सालय जाकर चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे आजकल के जो युवा हैं वो रक्तदान करने में हिचकते हैं, तो युवाओं को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है?
0: देखिए, अभी हम तकनीकी के दौर में जी रहे हैं, हमारे पास संचार के अनेकानेक माध्यम उपलब्ध हैं। इन संचार माध्यमों का उपयोग करते हुए हम जो हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी है उसको समय समय पर रक्तदान के चिकित्सीय के साथ साथ जो इसके सामाजिक पहलू भी हैं, रक्तदान करने से विभिन्न समाज भी एक तरीके से साथ में आता है, उसमें कई एक सामाजिक सौहार्द बढ़ाने का भी एक रूप है रक्तदान करना। तो हमें इन्हीं सब बातों को, मतलब जो संचार माध्यम है उनका प्रयोग करते हुए हमें युवाओं को और मोटिवेट करना है।
1: डॉक्टर साहब, रक्तदान से संबंधित आपने हमें बहुत सी अच्छी जानकारी दी है, तो क्या दान करने से शरीर में कमजोरी होती है या फिर इस प्रकार की कोई प्रक्रिया होती है, और ये रक्तदान करने में कितना समय लगता है?
0: ये एक स्वस्थ रक्तदाता को सामान्य परिस्थितियों में रक्तदान करने के उपरांत कोई कमजोरी नहीं होती, जिसमें हम एक यूनिट जो रक्तदाता का जो रक्त लेते हैं बॉडी उसको एक महीने में कम्पनसेट कर लेती है। इसीलिए जो एक रक्तदाता का स्वस्थ होना नितांत आवश्यक है।
1: जी।
0: स्वस्थ रक्तदाता में किसी भी प्रकार की कमजोरी सामान्य स्थितियों में नहीं होती है। रक्तदान की प्रक्रिया में मात्र 15 से 30 मिनट का समय लगता है।
1: जी, तो रक्तदान करने के लिए हमें घबराना नहीं है, बस यह है कि डॉक्टर की सलाह से हम रक्तदान कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अंत में आप हमारे श्रोताओं को रक्तदान के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, सभी श्रोताओं से मैं कहना चाहूंगा, रक्त का सर्वोत्तम विकल्प मात्र रक्त ही है। रक्तदान कर आप अपने मानवीय कर्तव्य के निर्वहन में एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं। आप रक्तदान कर मात्र एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि उसके परिवार को व्यक्त भी ना किए जा सकने वाले कष्ट से उभारने में एक सार्थक कार्य करते हैं। अंततः मैं आपसे कहना चाहूंगा, रक्तदान करके देखिए, अच्छा लगता है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने हमें और हमारे श्रोताओं को रक्तदान से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में अल्ले आप लोगों सुनो, रक्तदान महाकल्याण विषय पर जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा पैथोलॉजी विभाग में रक्त केंद्र प्रभारी डॉक्टर कपिल तिवारी जीव दगड़ बातचीत और इनर दगड़ भेंट करन लाग रही थी नीरू गोस्वामी। और श्रोताओं, कार्यक्रम एक शुरुआत करनो अब आप लोगों को फरमाइशी लोकगीत पर। तो श्रोताओं, पहली फरमाइश हम आप लोगों कार्यक्रम में शामिल करनो, तो श्रोताओं यह अरे ग्राम कामा जिला अल्मोड़ा बटी, और यह हमारे श्रोता छिन यह छिन दीपा देवी, प्रमोद भंडारी और इनर परिवारक सभी सदस्य। श्रोताओं, यह लोग सुनन चाहनी अनिशा गुसाई स्वर में गाई यह लोकगीत, तो आओ सुनो यह लोकगीत।

0: श्रोताओ, कार्यक्रम में अल्ले आप लोगों सुनो यो गढ़वाल फरमाइसी लोकगीत अनिसा गुसाई स्वर में।
1: देखो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: श्रोताओ, कार्यक्रम में थोड़ी बातचीत आई कर लेनो और हम बात करनू योग अखबार में। श्रोताओ, योग भारतक प्राचीन सांस्कृतिक अमूल्य धरोहर छू। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं छू बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करनक एक वैज्ञानिक पद्धति छू। श्रोताओ, आजक तनावपूर्ण व्यस्त जीवन में योगक महत्व और ले बढ़ गो।

0: योगक अभ्यास करण बखत कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों के ध्यान धरण बहुत आवश्यक छू। श्रोताओं, योग सदैव शांत वातावरण में खल पेट अथवा भोजनक कम से कम 3 घंटक बाद करण चाहिए और योगाभ्यासक शुरुआत सरल आसनों और प्राणायामल करण चाहिए और अपन क्षमता के अनुसार मठोमठ अभ्यास बढ़ून चाहिए। और श्रोताओं, आसनों के दौरान श्वास प्रश्वासन पर विशेष ध्यान देना चाहिए और कोई लय आसन के जोर जबरदस्ती नहीं करण चाहिए। योगक अनेक आसन छिन जनन में ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन, वज्रासन, त्रिकोणासन, पवनामुक्त आसन और श्वासासन प्रमुख छिन। श्रोताओं, ताड़ासन शरीरक मुद्रा के संतुलित करूं और वृक्षासन एकाग्रता और संतुलन बढ़ूं और भुजंगासन रीढ़क हड्डी के मजबूत बनने में सहायक हूँ। और श्रोताओं, वज्रासन पाचन क्रिया के बेहतर बनने में सहायक हूँ जबकि श्वासासन मानसिक तनाव के कम करने में लाभदायक मानी जा। और श्रोताओं, योगक एक महत्वपूर्ण अंग प्राणायाम रचो। अनुलोम विलोम और कपालभाति और भ्रामरी जस प्राणायाम श्वसन तंत्र के मजबूत बनोनी और मन के शांति प्रदान करनी और नियमित प्राणायामल मानसिक तनाव, चिंता और थकान में कमी है। श्रोताओं, यदि योगक लाभों के बारे में हम बात करूं तो यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी स्तरों पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलनी और योग शरीर के लचीला और मजबूत बनूं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ूं और हृदय और श्वसन तंत्र के स्वस्थ धरण में ले बहुत मदद करूं। श्रोताओं, मानसिक स्तर पर योग तनाव, अवसाद और चिंता के कम कर सकारात्मक सोच विकसित करूं और नियमित योगाभ्यास एकाग्रता, आत्मविश्वास और कार्य क्षमता में ले वृद्धि है। तो श्रोताओं, ये तो अच्छी योग के बारे में आप लोगों दगर थोड़ा बातचीत और कार्यक्रम में योग और व्यायाम संबंधित एक क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता हम आप लोगों के सुनो। और श्रोताओं, योग और व्यायामक महत्व विषय पर निजी विद्यालय में कार्यरत व्यायाम शिक्षक प्रवींद्र नाजू दगर बातचीत और इनर दगर भेंट करण लागरी नीरू गोस्वामी।
1: व्यायाम का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। अगर हम व्यायाम और योग से जुड़े हैं तो इससे हमारे जो जीवन की बहुत सी जो कठिनाइयां हैं या बीमारियां हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो सकती हैं। तो इसी विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं एक निजी विद्यालय में कार्यरत व्यायाम अध्यापक श्री प्रवीण नाथ जी। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रवीण जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि व्यायाम क्या है।
2: व्यायाम का अर्थ है कि शारीरिक गतिविधियां और जिसके द्वारा हम अपने शरीर को विभिन्न दशाओं में जो है गतिमान रखते हैं।
1: अच्छा,
2: उसको हम व्यायाम की संज्ञा देते हैं। इसमें जो है व्यायाम को अलग अलग रूप में अंगीकृत किया गया है। पहला तो है कि नॉर्मल मूवमेंट, जिसमें कि एक आम दिनचर्या आदमी की रहती है, चलना फिरना, उठना बैठना, दौड़ना, ये जो क्रियाएं हैं ये एक सामान्य व्यायाम के अंतर्गत आती हैं। दूसरे प्रकार का जो व्यायाम है उसको विशिष्ट व्यायाम के अंतर्गत रखा गया है। उस व्यायाम को जो है कैटेगराइज किया गया है अलग अलग प्रकार के पॉस्चर को डेवलप करने के लिए। अलग अलग प्रकार के व्यायाम को क्लासिफाइड किया गया है
1: जी।
2: तो उसमें जो है विभिन्न प्रकार से उन जो व्यायाम को किया जाता है उसको भी हम व्यायाम ही कहते हैं
1: जी। जी, अच्छा प्रवीण जी, जैसे कि व्यायाम और योग, क्या ये दोनों चीजें एक ही हैं?
2: वर्तमान परिवेश में मनुष्य का जो दिनचर्याएं हैं वो बहुत ज्यादा व्यस्त हो गई हैं। इस वजह से जो है आजकल चिकित्सकों ने और विभिन्न प्रशिक्षितों ने और प्रोफेशनल्स ने जो है योग को विशेष महत्व दिया है।

0: यद्यपि योग का जो हमारा ट्रेडिशनल जो अर्थ था उसका जो मतलब था वो केवल हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन था
1: जी,
0: लेकिन आज जो आदमी की दिनचर्याएं अस्त व्यस्त हो गई हैं तो उन दिनचर्याओं को अस्त व्यस्त दिनचर्याओं से विभिन्न प्रकार के टेंशन और अवसाद आदमी को शारीरिक जो है पैदा हो गई है
1: जी,
0: जिसके वजह से जो है आदमी को एक योग की ओर को प्रेरित किया गया जो कि उसके उन विभिन्न प्रकार के शारीरिक बीमारियों को दूर करने के लिए लाभदायक होती हैं। अच्छा, व्यायाम जो है व्यायाम के अलग अलग स्टेप्स हैं। व्यायाम दौड़ के किया जाता है, व्यायाम जो है बैठ के किया जाता है, चरणबद्ध तरीके से किया जाता है
1: जी जी
0: और योग का जो कॉन्सेप्ट है योग जो है वो आत्मा का परमात्मा से मिलन है। दूसरा, योग के अंदर जो है एक तो इंटरनल ऑर्गन्स को साफ करने के लिए जो है क्रियाएं अपनाई जाती है जिनको हम शुद्धि क्रिया के नाम से जानते हैं
1: जी,
0: और योग जो होता है उसमें जो है कई तरीके के स्टेप हैं कि हम बैठ के योग करते हैं, खड़े होकर योग करते हैं, सो के योग करते हैं, तो उनको विभिन्न प्रकार के जो है पोस्चर्स में डिफाइन किया गया है
1: जी,
0: और उसी आधार पर जो है योग को अपनाया गया ताकि उससे हमारा जो है मेंटल बैलेंस बना रहे और हमारा जो है शारीरिक जो है पोस्चर जो हमारे खराब हो गए हैं उन पोस्चर्स को इम्प्रूवमेंट किया जाए।
1: जी अच्छा, आप जैसे एक निजी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हैं तो आप अपने जो छात्र हैं उनको किस तरह से व्यायाम की शिक्षा देते हैं?
0: देखिए, व्यायाम तो कहता है कि आओ करके सीखें
1: जी,
0: तो डेमोंस्ट्रेशन तो बहुत एसेंशियल चीज है चाहे वो योग हो या व्यायाम हो। व्यायाम के अंदर जो है डेमोंस्ट्रेशन के बाद जो है बच्चों को चरणबद्ध तरीके से सिखाया जाता है कि आपने कौन सा व्यायाम किस प्रकार से करना और कितने ड्यूरेशन का करना है और उसी पहले उनको डोमेस्टिस किया जाता है, उसके बाद जो है बच्चे सेम पैटर्न को जो है फॉलो करते हैं
1: जी,
0: और उस फील्ड में जो है अपना परिपक्वता को प्राप्त करते हैं। इससे कोई रिलेशंस नहीं होता क्योंकि व्यायाम के अपने स्टेप्स होते हैं और इतना जरूर होता है कि जो सर्दी का मौसम है उसमें जो जो स्वेटनिंग जो शरीर से होती है ड्यूरिंग द एक्सरसाइजेस वो थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि जो टेम्परेचर है इस टाइम पे जो है कम हो जाता है
1: जी,
0: और मेरे अनुसार तो जो है मैं जो बच्चों को गाइड करता हूँ उसके अनुसार सबसे पहला जो हमारा प्राथमिक कॉन्सेप्ट है व्यायाम का
1: जी,
0: या योग का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो वार्मिंग अप है। वार्मिंग अप इज द एसेंशियल फैक्टर। इसके अनुसार जो है शरीर को पहले गर्म किया जाता है क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर सीधे सीधे व्यायाम करने लग जाए तो उससे जो है उसके स्पाइनल कॉर्ड पे या उसके और भी मसल्स पे या उसकी जो है बोन्स पे उसका इफेक्ट हो सकता है। किसी भी प्रकार के व्यायाम को किसी भी प्रकार के योग को करने के लिए सबसे पहले हमें वार्मिंग अप एक्सरसाइज की तरफ जाना चाहिए। वार्मिंग अप में जैसे आपकी जॉगिंग हो गई, आपकी हल्की स्लो रनिंग हो गई आपकी, उसके बाद धीरे धीरे अदर एक्सरसाइज को आपने जो है अपने लिए अपनाना चाहिए।
1: जी अच्छा, व्यायाम करने का सही समय क्या है?
0: एक्चुअली ये माना गया कि व्यायाम करने के जो तरीके हैं सवेरे सवेरे जो वेदर होता है वो हमारे शरीर के अनुकूल होता है क्योंकि उसमें बहुत फ्रेश ऑक्सीजन आदमी को मिलती है और फ्रेश ऑक्सीजन तो एसेंशियल है हर व्यक्ति के लिए और हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो एक तरीके से एनर्जी का मेन सोर्स है
1: जी।
0: क्योंकि जैसे हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है क्योंकि ऑक्सीजन जो है एक एसेंशियल एनर्जी के रूप में हमारे शरीर को प्राप्त होती है। इसी ऑक्सीजन के द्वारा हम जो है अपने शरीर के विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप है उनको जो है कम्प्लीट कर पाते हैं और सही जो समय है व्यायाम करने का वो सुबह माना गया है लेकिन कुछ लोग जो है व्यायाम को या वॉकिंग जॉगिंग को जो है सवेरे समय की आयामकालीन भी अपनाते हैं।
1: अच्छा प्रवीण जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें और आप हमें ये बताइए कि जैसे कि व्यायाम करने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए।
0: मैंने अभी आपको कहा कि व्यायाम के लिए सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखें कि आपका जो फिजिकल फिटनेस है वो परफेक्ट होना चाहिए। पता चला कि आपका जो फिजिकल फिटनेस है वो सही नहीं है और आप व्यायाम करने लगे तो उसके जो है एडवांटेज के अपेक्षा डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको अपना शरीर का जो है चेकअप करना चाहिए कि दैट इज एबल टू परफॉर्म द एक्सरसाइज और नॉट, वो जो है सही महीने में तैयार है भी नहीं। दूसरी चीज है कि आप किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले जो है अपने शरीर की को जो है वार्म अप करें ताकि जो है आपका शरीर जो है ढंग से जो है उस

0: एक्टिविटी के लिए परिपूर्ण हो पाए।
1: जी, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं और वयस्क होते हैं या वृद्ध लोग होते हैं, क्या उनके लिए व्यायाम अलग अलग प्रकार के होते हैं?
0: जी हाँ, बच्चे तो जो है, कहा भी गया कि बच्चों का तो जो व्यायाम है वो नेचर से ही प्राप्त रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चा कभी भी चिल्लाता है या घुटने के बल रेंगता है या हल्के हल्के दौड़ने की कोशिश करता है, उसको ज्यादातर खेलना अच्छा लगता है। ये सारी जो गतिविधियां हैं ऑटोमेटिक नेचुरली उसके साथ विद्यमान रहती है, जो कि एक तरीके से हम व्यायाम का ही प्रारूप कह सकते हैं। अच्छा, जो लोग एडल्ट स्टेज में आते हैं उन लोगों के लिए जो है जरा सा व्यायाम को जो है डेवलप्ड किया गया है और उन लोगों के लिए स्पेसिफाई जो है व्यायाम अपनाया जाता है। और बुजुर्गों के लिए जो है मोर देन 60 ईयर्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट भी जो है लॉन्च किए गए हैं। उसमें जो है उनकी अवस्थाओं को देखते हुए, उनकी स्थितियों को देखते हुए विभिन्न प्रकार के जो है इजी जो है वार्म अप और इजी एक्सरसाइजेस जो है उनके लिए रखी गई हैं। जैसे सीनियर सिटीजन के लिए जो है चेयर पे बैठने वाली एक्सरसाइज होती हैं, आराम से चलने वाली एक्सरसाइजेस होती हैं। इस प्रकार की एक्सरसाइज तीनों क्लासिफिकेशंस में अलग अलग डिफाइन की गई।
1: श्रोताओ, कार्यक्रम में अल्ले अपुलोगों सुनो, यह भेंट वार्ता योग और व्यायामक महत्व विषय पर निजी विद्यालय में कार्यरत व्यायाम शिक्षक प्रवीण नाजू दगड़ बातचीत और इनर दगड़ भेंट करन लागरी छी नीरू गोस्वामी
2: के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
3: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
4: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट bis.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
5: क्या किसी कारणवश शिक्षा का सपना रह गया अधूरा? तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के साथ कीजिए पूरा, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है भारत सरकार द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग बोर्ड, जो आपको बेसिक शिक्षा, OBE, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के 103 से अधिक कोर्स के साथ साथ प्रशिक्षण देकर भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार करता है। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए NIOS क्षेत्रीय केंद्र देहरादून से दूरभाष नंबर 01352532592 अथवा वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: और श्रोताओ, कार्यक्रम में अब हम शामिल करनो अपन दुहर फरमाइश यो एरे गरुड़ जिला बागेश्वर बटीक, और यह हमारे श्रोता छिन प्रीति आर्या, अर्चना बेस्ट, गोदावरी देवी, मुन्नी देवी और इनर सबे दगड़ी। और श्रोताओ, यह लोग सुनन चाहनी शंकर उप्रेती स्वर में गाई यो लोकगीत, तो आओ सुनो इनर फरमाइश पर शंकर उप्रेती गाई यो लोकगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अल्लाह अपन लोगों सुनो शंकर उप्रेतिक स्वर में गाई और फरमाई सी लोकगीत। और श्रोताओं, कार्यक्रम में हम शामिल करनो हमार अगिल फरमाइश। तो वी हबेर पहले आप लोग हमार व्हाट्सएप नंबर नोट कर लियो। हमार व्हाट्सएप नंबर छो 9411101122। तो श्रोताओं, अगर आप लोगों को फरमाइश छू कोई ले कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीत सुनने, तो आप लोग हमन के यह नंबर में व्हाट्सएप कर सकता। और श्रोताओं, कार्यक्रम में हम शामिल करनो अगिल फरमाइश यो अरे ब्लॉक चौकुटिया जिला अल्मोड़ा बेटिक। और यह हमारे श्रोता छिन जीवंती बिष्ट, प्रहलाद सिंह बिष्ट और इनर परिवार सब सदस्य। और श्रोताओं, यह लोग सुनन चाहनी गोकुल सिंह बिष्ट और उनर दगड़ियों स्वर में गाई यह लोकगीत।

श्रोताओ, गोकुल सिंह बिस्तर गाई फरमाइसी यही लोकगीत दगर हमारा आज अक उत्तरायण कार्यक्रम इति के संपन्न हूँ। एल नीरू गोस्वामी के अनुमति दियो, नमस्कार। श्रोताओ, अब बखत हो उत्तराखंड प्रादेशिक समाचारों जो हमारे देहरादून केंद्र बटिक प्रसारित करी जाल, आपू लोग थोड़ प्रतीक्षा करिया। नमस्कार।

0: ಬಲಿ ಬಲಿ. श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उत्तरायण. हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं. थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार.
1: कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन. बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है. फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक. अभी करता हूँ.
1: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना.
2: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है. क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी.
2: थैंक्स गप्पू, बचा लिया. ये ले तेरी समझदारी का फल.
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो.
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे.
5: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है. और हुकुम सिंह भी. PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर.
6: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता. कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है, और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है. महात्मा गांधी. सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो. स्वामी विवेकानंद. जिसने गर्व

0: किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास, सुशासन और जनकल्याण के नए युग में प्रवेश कर चुका है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने रामनगर में बुक्सा जनजाति की महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र का लोकार्पण किया और बागेश्वर में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उपलब्धि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में अन्य देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और उद्यम पूंजीदाता भी शामिल हुए। इसमें उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा तथा जैव प्रौद्योगिकी सहित 13 प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार प्रदर्शित किए गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और फ्रांस के मजबूत संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के बाहर इस विशेष पहल की मेजबानी को फ्रांस के लिए सम्मान का विषय बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को न केवल अपार प्रतिभाओं से संपन्न देश के रूप में देख रही है, बल्कि नवाचार के देश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में भी देख रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास, सुशासन और जनकल्याण के नए युग में प्रवेश कर चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा प्रवास के दौरान शहीद हरिकिशन शिक्षण संस्थान बगुलिया में आयोजित जन जन की सरकार मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम में ये बात कही। श्री धामी ने कहा कि पिछले वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं के हित में ऐतिहासिक फैसले लेकर देश को नई दिशा देने का कार्य किया है।
2: देश और उत्तराखंड विकास के एक स्वर्णिम कालखंड से गुजर रहा, जिसकी कल्पना आज से 10-12 साल पहले नहीं हो सकती थी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर एक से एक नए इतिहास बनेंगे, एक से एक नए काम होंगे। आम जनता को, सामान्य जनता को, गरीबों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सारी योजनाएं आ जाएंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, 12 वर्षों के कालखंड में भारत के इतिहास में ये साहस का, संकल्प का और सिद्धि का एक काल रहा है और मोदी जी के इन संकल्पों ने देश में एक बड़ा बदलाव करके दिखाया है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है और जन जन की सरकार आपके द्वार कार्यक्रम इसी संकल्प को मजबूत करने का माध्यम है। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के स्नान घाटों की स्वच्छता और संरक्षण के लिए व्यापक कार्य योजना का काम किया जाएगा। चारधाम यात्रा के दौरान देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालु मां गंगा और यमुना में पूजा अर्चना के बाद श्रद्धा स्वरूप साड़ियां और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करते हैं, जिससे घाटों और नदी तटों पर कचरे का दबाव बढ़ जाता है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए जिला प्रशासन ने स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा के माध्यम से एक विशेष मास्टर प्लान तैयार किया है। योजना के तहत चार विभागों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी और दोनों धामों में स्वच्छता, संरक्षण तथा पुनर्चक्रण के कार्य किए जाएंगे। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कहा कि परियोजना को प्रारंभिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
3: यमुना दोनों नदियों का जो हमारा एक्वा कल्चर है, प्लस जो वहाँ का मरीन इकोसिस्टम है उसको रिस्टोर करेंगे, वो एक हिस्सा है। नंबर दो, जो ये सामग्री लोग डालते हैं इसको ट्रीटमेंट के बाद उस पानी को नदी में छोड़ा जाएगा। दो, नंबर तीन, जो ये साड़ियाँ इकट्ठा होंगी या सामग्री इकट्ठा होगी उसको किसी ना किसी रूप में रिपर्पस करेंगे, चाहे बैग बनाए, चाहे पायदान बनाए, चाहे कोई चीज सामग्री बनाए, थैले बनाए, ये तीन। और चौथा है फॉरेस्ट के साथ, उनका कंपोनेंट है फॉरेस्ट, क्योंकि वो नदियां ऑब्वियसली उनका एक्ट के अनुसार फॉरेस्ट का एक मैंडेट है जिसमें वो

0: प्रोटेक्शन के काम करते हैं, तो वो एक प्रोटेक्शन वाला कंपोनेंट उनका है।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। ब्रेक के बाद उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने रामनगर के सावलदिक क्षेत्र में बुक्सा जनजाति की महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने के उद्देश्य से स्थापित प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये केंद्र जनजातीय मातृशक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा उन्हें रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री उनियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य सरकार जनजातीय समुदायों के उत्थान, महिला सशक्ति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी संकल्प के तहत बुक्सा जनजाति की महिलाओं को कौशल विकास, प्रशिक्षण एवं उत्पादन गतिविधियों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके उत्पादों को बाजार से जोड़ने में भी सहायक सिद्ध होगा। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बागेश्वर के विकास भवन में उपलब्धि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं तथा विभिन्न विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से अवगत कराया गया। विभागीय अधिकारियों ने लोगों को योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और मिलने वाले लाभों की जानकारी भी दी। विधायक पार्वती दास ने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनियां लोगों को योजनाओं से जोड़ने और सरकारी प्रयासों की जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
2: प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष पूर्ण होने, उनके कार्यकाल 12 वर्ष पूर्ण होने पर जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जो उनके कार्यक्रम लगाए गए हैं, उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारे जो शिविर भी लगे हैं और यहाँ पर महिलाओं द्वारा, जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री जी ने लखपत दीदी और उनके माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य आज हमारी महिलाएं हर समूह के द्वारा भी बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं इन समूह के माध्यम से, आज अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि महिलाएं इतने आगे बढ़ रही हैं।
1: समूह संचालक लीला आर्य ने कहा कि इस अचीवमेंट एग्जीबिशन का उद्देश्य सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी आमजन तक पहुंचाना है।
3: पहले तो मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो महिलाओं को यहाँ तक बढ़ाने में उन्होंने हमारी हेल्प की, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं सरकार का और राज्य सरकार, केंद्र सरकार। मतलब हम आज तक बाहर ही नहीं निकलते थे, जैसे मैंने धीरे धीरे समूह से जुड़ी, मैं एक छोटे से समूह में जुड़ी, उसके बाद धीरे धीरे हमारा एक वो बना, ग्राम संगठन बना, ग्राम संगठन बन के हमारा एक क्लस्टर बना, उसमें कुछ नहीं भी है तो आज हम 100 से ज़्यादा महिलाएं वर्क कर रही है।
1: पिथौरागढ़ में ऐतिहासिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सौरगढ़ किले में पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से किले परिसर एवं आसपास के क्षेत्र में व्यापक साफ सफाई अभियान संचालित किया जा रहा है। साथ ही पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने, क्षतिग्रस्त टोंटियों एवं जलापूर्ति संबंधी व्यवस्थाओं की मरम्मत तथा अन्य आवश्यक जन सुविधाओं को दुरुस्त करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किले में आने वाले पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध हो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास, सुशासन और जनकल्याण के नए युग में प्रवेश कर चुका है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने रामनगर में बुक्सा जनजाति की महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र का लोकार्पण किया और बागेश्वर में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उपलब्धि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार
4: दादी। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। 6:41 हुए हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। पहली प्रस्तुति में आइए सुनते हैं दीपा नारायण झा के स्वर में ये भक्ति वंदन।

श्रोताओं, आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत। आइए आप सुनते हैं मुकेश के स्वर में ये भक्ति वंदन।

श्रोताओं, मुकेश के स्वर में ये भक्ति वंदन अभी आपने सुना। इसी के साथ भक्ति संगीत कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 होने को हैं। अब आप सुनेंगे गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून भटिन गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में दीपक नेगी। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में देश विकास, सुशासन और जन कल्याण को नए युग में प्रवेश करयाली। केंद्र सरकार का 12 वर्ष पूर्ण होने का उपलक्ष्य में बागेश्वर का विकास भवन में उपलब्ध प्रदर्शनी को आयोजन करे गए। कैबिनेट मंत्री

0: बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में देश विकास सुशासन और जनकल्याण को नए युग में प्रवेश करयाली। केंद्र सरकार का 12 वर्ष पूर्ण होने का उपलक्ष्य में बागेश्वर का विकास भवन में उपलब्ध प्रदर्शनी को आयोजन करे गए। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रुद्रप्रयाग का जोखली का खलियाणा बांगड़ क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए नुकसान को स्थलीय निरीक्षण करी और हरिद्वार में भोल होने वाली सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर प्रशासन तैयारियां पूरी करयाली। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में देश विकास सुशासन और जनकल्याण का नए युग में प्रवेश कर चुकी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह खटीमा प्रवास का दौरान शहीद हरिकिशन शिक्षण संस्थान बगुलिया में आयोजित जन जन की सरकार मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम में ये बात बोलीं। श्री धामीन बोली कि पिछला वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीब किसान महिला और युवाओं का हित में ऐतिहासिक फैसला लेकर देश ते नई दिशा देने को कार्य करी। मुख्यमंत्री ने बोली कि आयुष्मान भारत किसान सम्मान निधि मुफ्त राशन उज्ज्वला योजना और जल जीवन मिशन जनी योजनाओं करोड़ों लोगों का जीवन में सकारात्मक बदलाव लीनी। मुख्यमंत्री ने बोली कि प्रदेश सरकार को उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति तक विकास को लाभ पहुंचाने और जन जन की सरकार आपके द्वार कार्यक्रम ई संकल्प ते मजबूत करने को माध्यम च। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों को निरीक्षण करी और ग्रामोत्थान परियोजनाओं का अंतर्गत सद्भावना CLF द्वारा संचालित दीदी कैफे को शुभारंभ करी। केंद्र सरकार का 12 वर्ष पूर्ण होने पर उपलक्ष्य में बागेश्वर का विकास भवन में उपलब्धि प्रदर्शनी को आयोजन करे गए। प्रदर्शनी में केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रमुख उपलब्धियों जन कल्याणकारी योजनाओं तथा विभिन्न विकास कार्यों ते प्रदर्शित करे गए। विभिन्न विभागों द्वारा लगे स्टॉलों को माध्यम से लोगों ते योजनाओं की जानकारी दिए गए और लाभार्थियों ते मिलने वाली सुविधाओं ते अवगत कराए गए। विभागीय अधिकारियों लोगों ते योजनाओं की पात्रता आवेदन प्रतिक्रिया और मिलने वाली लाभों की जानकारी भी दी। विधायक पार्वती दासन बोली कि ये प्रकार की प्रदर्शनियां लोगों ते योजनाओं से जुड़ने पर और सरकारी प्रयासों की जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगी।
1: प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष पूर्ण होने उनके कार्यकाल 12 वर्ष पूर्ण होने पर जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जो उनके कार्यक्रम लगाए गए हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारे जो शिविर भी लगे हैं और यहाँ पर महिलाओं द्वारा जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री जी ने लखपत दीदी और उनके माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य आज हमारी महिलाएं हर समूह के द्वारा भी बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं इन समूह के माध्यम से आज अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि महिलाएं इतने आगे बढ़ रही हैं।
0: नैनीताल का जिलाधिकारी ललित मोहन रयालन भोल आयोजित होने वाली श्री कैंची धाम मेला के मद्देनजर भीमताल और बेताल घाट विकास खंड अंतर्गत संचालित समस्त विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिवसीय अवकाश घोषित करयाली, जबकि इन विकास खंडों के अंतर्गत स्थित सभी सरकारी कार्यालय कामकाज को सामान्य रूप से खुला राला। विश्व रक्तदाता दिवस का अवसर पर गोपेश्वर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी का संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर को आयोजन करेंगे। रक्तदान महादान कार्यक्रम का तहत आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं और स्वयंसेवकों उत्साहपूर्वक भाग लेकर रक्तदान करी। ये अवसर पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा चमोली का चेयरमैन ओम प्रकाश डोवालन बोली कि समाज सेवक अनेक माध्यम छन लेकिन कई कुछ जीवन बचोण में रक्तदान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण
2: छी। प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रुद्रप्रयाग का जोखली विकास खंड का खलियाणा बांगड़ क्षेत्र में हाल ही में हुए अतिवृष्टि से हुए नुकसान को स्थलीय निरीक्षण करी। उन आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात करी, उनकी समस्याएं सुनी और हर संभव सहायता करने को आश्वासन दिनी। मंत्री ने अधिकारियों ते निर्देशित दे कि प्रभावित परिवारों ते तत्काल राहत उपलब्ध करे जो और नुकसान को शीघ्र आकलन करी नियमानुसार मुआवजा और अन्य सहायता प्रदान करे जो। कैबिनेट मंत्री ने बोली कि मानसून सत्र शुरू होने वाले छन, यहाँ का वास्ता विभाग आपदा प्रबंधन की तैयारी पूरी रखें। उन राहत सामग्री चिकित्सा सुविधाओं JCB मशीन और रेस्क्यू टीमों ते अलर्ट मोड में रहने का निर्देश भी दिने। हरिद्वार में भोल होने वाली सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी करयाली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लरन बताई कि सोमवती अमावस्या को लेकर आने वाला तीर्थ यात्रियों

0: कह भी की असुविधाएं ना हो यहाँ का वास्ता यातायात प्लान बनेगे दगड़ा ही पार्किंग स्थलों को भी आरक्षित कर्याचन
1: स्नान के लिए हरिद्वार पुलिस पूरी तरह घेरा है और स्नान को अच्छे से भली भांति कराने के लिए पूरा जो मेला क्षेत्र है इसको 6 सुपर जोन 16 जोन और 46 सेक्टर्स में बांटा गया है और सुपर जोन में एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी हैं, जोन में जो है सीओ रैंक के अधिकारी हैं और सेक्टर में सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी हैं और इसमें हमारे SSB पैरामिलिट्री फोर्स साथ में SDRF NDRF BDS स्क्वाड ATS और विभिन्न यूनिट जो है वो इसमें जो है हमारी लगी हुई है और पूरी तरह इस गेला में।
0: मनसा देवी ट्रस्ट का अध्यक्ष महंत रविंदर पुरी ने बताई कि मनसा देवी पैदल मार्ग को भी खोलने का आग्रह करी ताकि भीड़ को दबाव ते अलग अलग भागों में बांटे जा सकू।
2: सोमावती अभाव आने वाली और सोमावती में मैं समझता हूँ हरिद्वार में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आता है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो भी यात्री यहाँ आएगा वो बिल्कुल सुरक्षित यहाँ जाए और यहाँ से वापस सुरक्षित जाए। मैंने यही कहा कि देखिए यहाँ यात्री को हम रुकाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए यात्री आए और यहाँ से नीचे जाए। और ये भी हमारे यहाँ DM साहब ने कहा है जिस समय यहाँ भीड़ होता नीचे से रोपवे से यात्री नहीं आता है, ऊपर से जितने यात्री उनको नीचे उतारा जाता है। और आपने देखा होगा आजकल हमारा जो सीढ़ी का रास्ता वो बंद है, एक ही रास्ता अपने पैदल रास्ता देखा होगा और हमारा प्रयास है बहुत जल्दी सीढ़ी का रास्ता भी उसकी मरम्मत हो जाए वो भी खुल जाए।
0: बीमार पशुओं तो अब एक फोन कॉल पर पशु चिकित्सक एवं पशुपालक का घर द्वार तक पहुंची की उपचार उपलब्ध कराना छन। 1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट सेवा पौड़ी जिला में पशु स्वास्थ्य सेवाओं की नई पहचान बनी की उभरी च। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल शर्मन बताई कि 1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट सेवा को उद्देश्य पशुपालकों ते त्वरित सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना च।
3: एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न समस्त जनपदों में मोबाइल वेटनरी यूनिट का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कि जनपद पौड़ी में भी वर्तमान में 8 विकास खंडों में इसका संचालन किया जा रहा है। मोबाइल वेटनरी यूनिट को कहते हैं जिनके द्वारा ग्रामीणों को आकस्मिक सेवाएं प्रदान की जाती है, जिसमें इसका कार्यक्रम का शुभारम्भ जिसमें पौड़ी जनपद की हम अगर बात करें तो लगभग 55,000 कॉल समय प्राप्त हो चुकी है। ये कॉल जो प्राप्त होती है ये पशुपालन विभाग के 19 टोल फ्री नंबर कॉल सेंटर पर प्राप्त होती है जो कि सीधे सीधे हमारे मोबाइल वेटनरी यूनिट से जुड़ा होता है। एक मोबाइल वेटनरी यूनिट में हमारे एक डॉक्टर साहब, एक उनके सहायक पैरावेट और एक वाहन चालक होते।
0: आखिरी मां मुख्य समाचार एक बार फिर। बोली ची कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में देश विकास सुशासन और जनकल्याण को नए युग में प्रवेश करयाली। केंद्र सरकार का 12 वर्ष पूर्ण होने का उपलक्ष्य में बागेश्वर का विकास भवन में उपलब्ध प्रदर्शनी को आयोजन करेंगे। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रुद्रप्रयाग का जोखली का खलियाणा बांगड़ क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से हुए नुकसान को स्थलीय निरीक्षण करी और हरिद्वार में भोल होने वाली सोमवती अमावस्या स्नान ते लेकी प्रशासन तैयारी पूरी करयाली। यहाँ का दगड़ ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को युवांक समाप्त हुए। नमस्कार।
4: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गढ़वाली लोकगीत। पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं गढ़वाल का थड़िया स्वरूप का लोकगीत संवेद स्वर में।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रादेशिक लोक संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं गढ़वाली गीत। आइए आप सुनते हैं नरेंद्र सिंह नेगी के स्वर में ये गढ़वाली लोकगीत।

0: दादू मी पर्वतों का वासी, नरेंद्र सिंह नेगी का गाया है गढ़वाली लोकगीत, अभी आपने सुना। इसी के साथ आज का प्रादेशिक संगीत संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि समृद्धि।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा।
2: नमस्कार कास्कार बंधुओं, कृषि समृद्धि कार्यक्रम में मैं रेनु सनवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। कास्कार बंधुओं, आज हमारी चर्चा का विषय है ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियों का प्रबंधन, और इसके लिए हमने विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के तकनीकी अधिकारी श्री मनोज भट्ट जी को। नमस्कार मनोज जी।
3: नमस्कार।
2: कृषि समृद्धि कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: मनोज जी। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप हमारे कास्कार बंधुओं को यह बताइए कि सब्जी प्रबंधन से हमारा क्या अभिप्राय है।
3: जी रिन जी, आज का विषय सब्जी प्रबंधन काफी रोचक है, और इसका सीधा मतलब है कि सब्जियों की बुआई से लेके उन्हें बाजार में बेचने और उनके रख रखाव की जो पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से संभालना होता है
2: जी।
3: और प्रबंधन का उद्देश्य यह होता है कि सब्जियों की पैदावार सबसे अच्छी हो, लागत कम आए, बीमारियां और कीड़े ना लगें।

0: और कटाई या फिर तुड़ाई के उपरांत सब्जियां खराब ना हो, ताकि किसान भाइयों को उनका सही दाम मिल सके।
1: मनोज जी, जैसे अभी तो हमने सब्जी प्रबंधन के बारे में बात की कि क्या अभिप्राय है इसका, तो हमारे जो काश्तकार बंधु हैं वो किस प्रकार से सब्जी प्रबंधन करें ताकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
0: जी रेणु जी, सब्जी प्रबंधन के अंतर्गत जो है हम इसको प्रबंधन को जो है मुख्य रूप से तीन भागों में बांट सकते हैं, जिसमें फसल से पूर्व प्रबंधन और फसल अवधि के में प्रबंधन, जब फसल आपकी लगी हुई है, और कटाई उपरांत प्रबंधन। तो फसल जो पूर्व प्रबंधन होता है उसमें किसान भाइयों को सब्जी लगाने से पहले और लगाते समय की जाने वाली जो तैयारियों को ध्यान में रखना पड़ता है। इस प्रबंधन में जैसे कि मौसम, मिट्टी और बाजार की मांग के हिसाब से सही और उन्नत बीजों, जैसे अगेती किस्म है, कोई पिछेती है या संकर किस्मों का चयन करना पड़ता है
1: जी।
0: इसके पश्चात मिट्टी और खेत की तैयारी का होता है, जिसमें किसान भाइयों को मिट्टी की जांच करवानी चाहिए और सही मात्रा में गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाकर खेत को भी समतल करके सभी कार्य कर लें
1: जी।
0: और अब बात आती है कि किसान भाई किस प्रकार की सब्जियां लगा रहे हैं
1: जी।
0: क्योंकि कुछ सब्जियों को जो है पौध से तैयार करता है, पौध से जो तैयार करके लगाया जाता है, और कुछ को जो है सीधे बीज उनका जमीन में बोया जाता है। तो जो कि पौध तैयार की जाती है, जैसे टमाटर है, शिमला मिर्च है या गोभी वर्गीय सब्जियां है, इसके लिए पौधशाला में पौध तैयार करके पौधशाला का प्रबंधन करना पड़ता है और मतलब कि नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। और पौधशाला में स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए किसान भाई नेट हाउस या पॉली हाउस का प्रयोग करना चाहिए उनको। अगर पॉली हाउस नहीं है किसी किसान भाई के पास, तो वह घर में भी पॉली टनल बना के उसमें पौध तैयार कर सकते हैं
1: जी।
0: और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सब्जियों के जो हाइब्रिड बीज होते हैं, संकर बीज, वे काफ़ी महंगे होते हैं, और हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि प्रति बीज से जो है वे अच्छी पौध तैयार कर सकें, उसमें नुकसान ना हो
1: जी। मनोज जी, यह तो रही कि फसल पूर्व प्रबंधन हमारे काश्तकार बंधु किस तरह से करेंगे, लेकिन अगर जो है हमारे किसान भाई अपनी फसल लगा चुके हैं
0: जी,
1: तो वे अपनी फसल की देखभाल किस प्रकार से उन्हें करनी चाहिए
0: जी। के अंतर्गत अगर किसान भाई फसल लगा चुके हैं तो वे अपनी फसलों की देखभाल किस तरह से करेंगे, इसमें कई बातें होती हैं। जैसे किसान भाइयों ने फसल लग गई है तो उन्हें सिंचाई प्रबंधन करना पड़ता है, तो सिंचाई कब और कितनी मात्रा में करनी है, कब पानी की ज़रूरत है, इसको ध्यान में रखना चाहिए किसान भाइयों को। जैसे कि अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है तो इस वक्त सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, और ख़ास तौर पर जब फसल अपनी पुष्पावस्था में हो या उसमें फल बन रहा हो, जिसको हम फ्रूटिंग स्टेज बोलते हैं, उस समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा फसल पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और जिन क्षेत्रों में किसान भाइयों के पास पानी की कमी है, वे अपनी फसल में टपक सिंचाई, जिसे ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, उसको प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि फसल में जल प्रबंधन करने से ही आप एक अच्छी फसल ले सकते हैं। क्योंकि ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि जो पानी बूंद बूंद के द्वारा जड़ों तक पहुंचता है और इसमें पानी की बर्बादी नहीं होती है
1: जी।
0: इसी तरह से जो इसमें दूसरा प्रबंधन होता है वो पोषण प्रबंधन है, कि आपने फसल लगा दी है तो उसको उचित मात्रा में खाद, पानी और जो आपके उर्वरक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सूक्ष्म तत्व है, इसको सही समय पर देना होता है। इसके लिए मैंने अभी पूर्व में बताया था कि पहले मिट्टी की जांच करा लेनी चाहिए आपको, उसी के अनुसार जो है आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास अपने खेतों में डालना चाहिए
1: जी।
0: इसी तरह से जो इसमें तीसरा प्रबंधन करेंगे किसान भाई, वो खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खरपतवार जो हमारी फसल के साथ सीधे प्रकाश, पोषक तत्व, इन चीज़ों के साथ जो है प्रतिस्पर्धा करते हैं और यह कई कीटों को आमंत्रण भी देते हैं, इसलिए बुआई के तुरंत बाद हमें खरपतवार नाशी, जैसे पेंडी मेथिलीन आती है, खरीफ ऋतु चल रहा है तो इस वक्त पेंडी मेथिलीन नामक जो दवा है उसकी 4 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करनी चाहिए बोने के ठीक बाद। इससे क्या होता है कि इससे 30 से 40 दिनों तक जो है लगभग किसान भाइयों को जो है खरपतवार
1: मुक्त
0: फसल मिलती है, और खरपतवार अगर थोड़ा बहुत होता है तो उसकी बढ़ने की संभावना भी कम हो जाती है धीरे धीरे।
1: मनोज जी, जैसे ये हम, क्योंकि हमारे काश्तकार बंधु फसल लगा चुके होंगे हम कह रहे हैं, तो इस समय उसमें कीट और रोग का भी जो है प्रकोप हो सकता है
0: जी, हाँ,
1: तो
0: जी।
1: उसका प्रबंधन हमारे काश्तकार बंधु कैसे कर सकते हैं
0: जी? जैसे कि कीट और इसमें रोग भी आता है, तो हम जानते हैं कि अगर कीट और रोग से हमारी फसल को 30 से जो है लगभग 70% तक का हिस्सा जो है रोग और कीटों के द्वारा जो है बर्बाद कर दिया जाता है
1: जी।
0: तो फसलों के अनुसार जैसे सब्जियों में की बात करें तो उस पर झुलसा रोग, उकठा रोग जिसे विल्ट बोलते हैं, जीवाणु जनित रोग से बचाना काफी जरूरी होता है। इसके लिए किसान भाइयों को पहले तो रोग की पहचान करना जरूरी होता है कि हमारी सब्जी में जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो कौन सी बीमारी के हैं, तो इसकी पहचान होना जरूरी है। इसी तरह से कीट प्रबंधन के अंतर्गत जो है सब्जियों में कटुआ कीट, जिसे कटवर्म बोलते हैं, थ्रिप्स है, माहू है, फल छेदक सूढ़ी है और फल मक्खी इसकी पहचान होना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम सही कीट की पहचान करके सही समय पर सही कीटनाशी का प्रयोग कर सकें, अन्यथा हम कोई भी कीटनाशी डालते रहेंगे उसका कुछ लाभ नहीं होगा।
1: मनोज जी, ये तो बात रही फसल अवधि प्रबंधन की, फसल लगी है तो किस प्रकार से उसका प्रबंधन किया जाए।
0: जी,
1: तो अब हमारे पास आता है तीसरा और अंतिम प्रबंधन की कटाई उपरांत हमारे जो काश्तकार बंधु हैं वो फसलों का कैसे प्रबंधन करेंगे, सब्जी फसलों का विशेष रूप से।
0: जी,
1: तो आप इसकी भी जानकारी हमारे काश्तकार बंधुओं को दीजिए।
0: जी रेन जी, क्या कहते हैं, ये जो कटाई उपरांत प्रबंधन है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है सब्जियों की सही समय पर तोड़ाई की जानी चाहिए। सब्जी को ऐसी अवस्था में किसान भाई तोड़ें जब बाजार में भेजने लायक हो और बाजार में मांग तेज हो, तभी हम मुनाफा कमा सकते हैं। और सब्जियों की छटाई तथा ग्रेडिंग का कार्य करना जरूरी होता है इस प्रबंधन के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जो है खराब कटी पटी या बीमार सब्जियों को अलग कर देना चाहिए, क्योंकि यह स्वस्थ सब्जियों को भी खराब कर सकती है। अच्छी सब्जियों को आकार व गुणवत्ता के आधार पर छांटना चाहिए ताकि हम अपने लाभ को बढ़ा सकें। सब्जी टूटने के बाद प्रारंभ होती है हमारी मुख्य सावधानी, जो ये तय करती है कि अब तक हमने जो मेहनत की है उसको हम आगे किस प्रकार से लाभ में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि सब्जियां बहुत जल्दी खराब होने वाली फसल होती है। इसके लिए हमें सब्जियों के भंडारण और परिवहन पर ध्यान रखना चाहिए। सब्जियों को ठंडी व हवादार जगह पर रखें, इसके लिए हम कोल्ड स्टोरेज का भी प्रयोग कर सकते हैं ताकि उन्हें उस पर लंबे समय तक रखा जा सके और मांग के अनुसार सुरक्षित तरीके से मंडियों तक पहुंचाया जा सके और उसमें ताजगी भी बनी रहे सब्जियों में।
1: मनोज जी, आजकल जो हमारे काश्तकार बंधुओं ने अपने वहाँ सब्जियाँ लगा रखी हैं तो उनमें कौन कौन से रोग दिखाई देने की संभावना है?
0: जी, आजकल किसान भाइयों ने मुख्यतः टमाटर की फसल है, शिमला मिर्च है, बैगन है, फ्रांस बीन, ये सब्जियां लगाई हुई हैं।
1: जी,
0: और इनमें जो मुख्य रूप से जो रोग दिखते हैं उसमें जब हम नर्सरी से बात करते हैं, नर्सरी जब लगाते हैं किसान भाई, तो उसमें आर्द्र पतंग डैम्पिंग ऑफ जिसे अंग्रेजी बोलते हैं उसके आने की संभावना ज़्यादा होती है। यह जो आर्द्र पतंग रोग है ये टमाटर, शिमला मिर्च, बैगन जो नर्सरी से जिसको उगाते हैं हम, तो पौधशाला में ये रोग दिखाई देता है जिसमें छोटे पौधों का जो तना है जमीन के पास से गल के गिर जाता है। इसके लिए किसान भाई मेटल एक्जिल 8% के साथ जो है मैंकोजेब जो है 64% WP मिश्रण आता है इसका, दोनों दवाइयों का, उसकी 2 ग्राम दवा जो है 1 लीटर पानी में घोल बनाकर ड्रेंचिंग करें। ड्रेंचिंग का तात्पर्य है कि जो घोल बनाया है आपने उसको नर्सरी की मिट्टी में उसे गीला कर दें।
1: जी।
0: इसी तरह से एक रोग फल सड़न आता है जो एंथ्रेक्नोज होता है, ये शिमला मिर्च पे दिखाई देगा और फलों में काले धसे हुए धब्बे बनते हैं और फल सड़ने लगते हैं। इसी तरह से ये बीन में भी दिखता है एंथ्रेक्नोज जो है, इसमें तनों पत्तियों और फलियों पर गहरे लाल भूरे रंग के धसे हुए धब्बे बनते हैं। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई कार्बंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63%, इन दोनों की जो मिश्रण की दवा आती है उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करें।
1: जी।
0: इसी तरह से एक झुलसा रोग आता है, ये झुलसा रोग भी 2 तरह का होता है, अगेती झुलसा और पिछेती झुलसा। इसमें क्या होता है कि पत्तियों पर भूरे काले धब्बे बनते हैं और पूरी फसल झुल जाती है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई मैंकोजेब 75% WP की 2 ग्राम मात्रा या फिर एजॉक्सिस्टोबिन प्लस टेबुकोनाजोल के मिश्रण की 1 मिलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। अब आता है इसमें कुछ चूर्णिल आशिता रोग भी दिखाई देता है, या अक्सर शिमला मिर्च बीन की पत्तियों पर निचली सतह पर सफेद पाउडर जैसा फंगस जमा हो जाता है जिसके कारण जो है पत्तियां झड़ने लगती हैं और ये रोग पूरे फल को जो है अपनी चपेट में ले लेता है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई घुलनशील गंधक जो वेटेबल सल्फर जिसे बोलते हैं 80% WP की 2 ग्राम मात्रा का प्रयोग करें, करके जो है छिड़काव करें मतलब।
1: जी जी मनोज जी, ये तो जो सब्जियों में अभी जो लगी सब्जियां हैं उनमें कौन कौन से रोग लगते हैं और उनका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है इस संबंध में जानकारी। अब हमारे काश्तकार बंधु ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी लगी हुई सब्जियां हैं उनमें कौन कौन से कीट, मुख्य कीट जो हैं वो उन पे असर डाल सकते हैं और उनको कैसे नियंत्रित किया जा सकता
0: जी। है जी, जब हम सब्जियों में लगने वाली कीट की बात करते हैं तो सब्जियों में कीटों का हमला मुख्य तरह से 2 तरीके से होता है। पहला कीट तो एक ऐसा होता है जो फल व तने को अंदर से खोखला कर देता है और दूसरा जो कीट होता है वो पत्तियों का रस चूसकर पौधे को कमजोर कर देता है और यही कीट जो है एक पौधे से दूसरे पौधे में वायरस फैलाने का काम भी करता है।
1: जी।
0: अब जब हम टमाटर की बात करते हैं, जैसे टमाटर किसान भाइयों ने लगा रखा है तो टमाटर में जो है मुख्य रूप से फल भेदक इल्ली जिसे फ्रूट बोरर कहते हैं वो दिखाई देता है। यह हरी इल्ली टमाटर के फलों में छेद करके अंदर घुस जाती है, उसकी गूदे को खाती है जिससे फल सड़ जाता है और बाजार भेजने लायक नहीं होता है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई क्लोरीन जो ट्रेनिली प्रोल 4.5

0: प्रतिशत 80 की 0.4 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर, या एक दूसरी दवा आती है एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG नामक दवा की 0.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करें
1: जी।
0: इसी तरह से टमाटर में एक सफ़ेद मक्खी का प्रकोप भी अक्सर दिखाई देता है। यह मक्खी अक्सर फ्राज बीन, शिमला मिर्च और कद्दू वर्गीय सब्जियों में भी दिखाई देती है। जब पत्तियों की ये जो सफ़ेद मक्खी है, ये पत्तियों की निचली सतह से रस चूसती है और जो एक खतरनाक लीफ कर्ल वायरस है, जिसे हम पत्ती मरोड़ रोग भी बोलते हैं, वो एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाती है। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए किसान भाई इमिडाक्लोपिड 17.8% SL कीटनाशी दवा या फिर एसिटामिप्रिड 20% SP नामक दवा की 0.5 मिलीलीटर दवा जो है प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर वे छिड़काव करें
1: जी।
0: इसके साथ ही मैं ये भी सलाह देना चाहूँगा कि इन सभी कीटों और रोगों से बचाने के लिए खेतों की वे साफ सफाई करें और रोग वो कीट ग्रसित जो पौधे हैं उसको उखाड़ के वे नष्ट कर दें, और नीम के जो नीम वाला आता है उसका भी छिड़काव करें, और सही फफूदीनाशी और कीटनाशी का जो है किसान भाई सीमित इस्तेमाल करें, जितनी उनको दवा बताई जाती है उसी अनुपात में वे इसका प्रयोग करें
1: जी। मनोज जी, जो आपने अभी कीटनाशियों की जानकारी दी, तो इसके छिड़काव के लिए हमारे जो काश्तकार बंधु हैं उनको कुछ व्यावहारिक और जरूरी जो नियम हैं उनकी थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए
0: जी। रेन जी, कीटनाशियों के छिड़काव के लिए किसान भाइयों को जो कुछ व्यावहारिक ज्ञान होना भी जरूरी है कि कौन सा कीटनाशी किस फसल के लिए और कितनी मात्रा में और मुख्य रूप से किस समय प्रयोग करना चाहिए, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम जब छिड़काव की बात करते हैं तो छिड़काव सही समय पे होना चाहिए। इसके लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि रसायनों का जो हम छिड़काव कर रहे हैं वो शाम के समय लगभग 4 बजे की बात करें, क्योंकि इस समय तक जो मित्र कीट होते हैं जैसे मधुमक्खियाँ हैं वे कम सक्रिय होती हैं और दवा का असर जो तेज़ धूप में ना होने के कारण जो है लंबा रहता है। साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि कीटनाशी में स्टिकर जो आता है उसको अवश्य मिलाएं, क्योंकि कुछ सब्जियों की जो पत्तियां होती हैं वो सतह उसकी चिकनी होती है तो उसमें दवाई टिक नहीं पाती, इसलिए दवा के साथ जो सिलिकॉन आधारित जो स्टिकर को ज़रूर मिलाएं। अब बात आती है कि एक दवा के बाद दूसरी दवा का प्रयोग कब करें, मतलब कि आपको एक दवा डालने के बाद दूसरी दवा डालनी तो उसका प्रयोग कब करें, इसको हम वेटिंग पीरियड भी कहते हैं। इसलिए चूँकि सब्जियों में कई बार तोड़ा जाता है तो किसी भी रसायन का जो छिड़काव है कम से कम 7 से 10 दिन के बाद सब करना चाहिए, तो इस तरह से आप जो है इसमें विशेष सावधानियाँ रख सकते हैं
1: जी। हमारे काश्तकार बंधु जो आपने बताई है ये सावधानियाँ रख सकते हैं। तो काश्तकार बंधुओं, यहाँ है विशेषज्ञ श्री मनोज भट्ट जी ने आपको जो इस समय आप लोगों ने सब्जियाँ उगाई हैं उसमें किस तरह से आप सब्जियों का प्रबंधन कर सकते हैं ताकि आपको अधिक पैदावार भी मिले और साथ ही साथ उचित दाम भी मिल सके, इसकी जानकारी दी है। यदि आपको इस विषय पर या कृषि संबंधी किसी विषय पर अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा के निःशुल्क दूरभाष संख्या 1800-01-02311 पर संपर्क करें। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, हमारा पता नोट कीजिए, कृषि समृद्धि कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अल्मोड़ा। इसी के साथ मैं यहाँ विशेषज्ञ मनोज भट्ट जी को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद मनोज जी।
0: धन्यवाद।
1: अगले सप्ताह इसी समय फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि, हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। 7:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ मी गीता भंडारी।

0: मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास सुशासन और जनकल्याणक नई युग में प्रवेश करिहाली। केंद्र सरकारक 12 साल पुरहुणक मौक में बागेश्वरक विकास भवन में उपलब्धि प्रदर्शनी का आयोजन करी गई। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी रुद्रप्रयाग जखोई का खलियाणा बांगर क्षेत्र में है अतिवृष्टि है नुकसानक स्थलीय निरीक्षण करो और हरिद्वार में भोल होने वाल सोमवती अमावस्या स्थान को लेकर प्रशासन तैयारी पूरी करिहाली। अब समाचार विस्तारल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चल विकास सुशासन और जनकल्याणक नए युग में प्रवेश करिहाली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल खटीमा प्रवासक दौरान शहीद हरिकिशन शिक्षण संस्थान बगुलिया में आयोजित जन जनक सरकारक मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम में यह बात कहो। श्री धामिल कहो कि पिछले वर्षों में केंद्र सरकार गरीब किसान श्रेणिया और जवानों के हित में ऐतिहासिक फैसले लेवे देश के नई दिशा देना काम करो। मुख्यमंत्री कहो कि आयुष्मान भारत किसान सम्मान निधि मुफ्त राशन उज्ज्वला योजना और जल जीवन मिशन जस योजनाओं करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाई छू। मुख्यमंत्री कहो कि प्रदेश सरकार उद्देश्य अंतिम पंक्ति में ठाड़ मैसों तक विकासक लाभ पहुंचून और जन जनक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम या संकल्प के मजबूत करणक माध्यम छिन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अलग अलग विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का निरीक्षण करो और ग्रामोत्थान परियोजना के भीतर सद्भावना CLFL संचालित दीदी कैफे का शुभारंभ करो। केंद्र सरकारक 12 साल पूर्ण होणक मौक में बागेश्वरक विकास भवन में उपलब्धि प्रदर्शनी का आयोजन करी गई। प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकारक प्रमुख उपलब्धियों जन कल्याणकारी योजनाओं और अलग अलग विकास कामों के प्रदर्शित करी गए। अलग अलग विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों के माध्यम मैशों के योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभार्थियों के मिलनवाल सुविधाओं अवगत कराई गई। विभागीय अधिकारियों मैशों के योजनाओं पात्रता आवेदन प्रक्रिया और मिलनवाल लाभों की जानकारी दी। विधायक पार्वती दासल कहो कि यह प्रकारक प्रदर्शनियां मैसों के योजनाओं से जोड़नी और सरकारी कोशिशों की जानकारी देने में बहुत जरूरी भूमिका निभुनी।
1: प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष पूर्ण होने उनके कार्यकाल 12 वर्ष पूर्ण होने पर जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जो उनके कार्यक्रम लगाए गए हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारे जो शिविर भी लगे हैं और यहाँ पर महिलाओं द्वारा जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री जी ने लखपत दीदी और उनके माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य आज हमारी महिलाएं हर समूह के द्वारा भी बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं इन समूह के माध्यम से आज अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि महिलाएं इतने आगे बढ़ रही हैं।
0: नैनीतालक जिलाधिकारी ललित मोहन रयालल भोल आयोजित होने वाल श्री कैंची धाम म्याल को देखभर भीमताल और बेतालघाल विकास खंड भीतर संचालित सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में एक दिन की छुट्टी घोषणा करिहाली। जबकि इन विकास खंडों के भीतर स्थित सभी सरकारी कार्यालय कामकाज के लिए सामान्य रूप से खुली रोल। विश्व रक्तदाता दिवसक मौक में गोपेश्वर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविरक आयोजन करी गई। रक्तदान महादान कार्यक्रमक भीतर आयोजित शिविर में ठुल संख्या में जवानों और स्वयं सेवकों खुशी खुशी भाग लेवे रक्तदान करो। यह मौक में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी शाखा चमोई चेयरमैन ओम प्रकाश डोभालल को कि समाज सेवा के बहुत माध्यम छिन लेकिन कहके जीवन बचोण में रक्तदानक भूमिका सबसे जरूरी छू।
2: माउनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी रुद्रप्रयागक जखोई विकास खंडक खलियाणा बांगर क्षेत्र में हाल ही में है अतिवृष्टि है नुकसानक स्थलीय निरीक्षण करो। उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनर समस्याएं सुनी और हर संभव सहायता का आश्वासन दी। मंत्री अधिकारी

0: अधिकारियों के निर्देश दी कि प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत उपलब्ध कराई जान चाहे और नुकसान का जल्दी आकलन कर वे नियमानुसार मुआवजा और सहायता ले दी जाओ। कैबिनेट मंत्री को कि मानसून सत्र शुरू होने वाल छू यह लीजिए सभी विभाग आपदा प्रबंधनक तैयारियां पूरी धरो उन्होंने राहत सामग्री चिकित्सा सुविधाओं जेसीबी मशीन और रेस्क्यू टीमों के अलर्ट मोड में धरने का निर्देश ले दी। हरिद्वार में भूल होनी वाल सोमवती अमावस्या स्नान के लेबेर प्रशासन तैयारियां पूरी करिहाली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लरल बता कि सोमवती अमावस्या में होनी वाल तीर्थ यात्रियों के कैल प्रकार की दिक्कत नहीं हो यह एक वास्ता यातायात प्लान करी गई छू दगड़ ही पार्किंग जागों को ले आरक्षित करिहाली।
1: स्नान के लिए हरिद्वार पुलिस पूरी तरह घेरा है और स्नान को अच्छे से भली भांति कराने के लिए पूरा जो मेला क्षेत्र है इसको 6 सुपर जोन 16 जोन और 46 सेक्टर्स में बांटा गया है और सुपर जोन में एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी हैं, जोन में जो है सीओ रैंक के अधिकारी हैं और सेक्टर में सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी हैं और इसमें हमारे एसएसबी पैरामिलिट्री फोर्स साथ में एसडीआरएफ एनडीआरएफ बीडीएस स्क्वाड एटीएस और विभिन्न यूनिट जो है वो इसमें जो है हमारी लगी हुई है और पूरी तरह हम इस घेरा में।
0: मनसा देवी ट्रस्ट अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरील बता कि मनसा देवी पैदल मार्ग के लिए खोलने का आग्रह करी गई छू जेल भीड़क दबाव के अलग अलग भागों में बांटी जाए।
2: भाव आने वाली और सोमावती में मैं समझता हूँ हरिद्वार में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आता है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो भी यात्री यहाँ आएगा वो बिल्कुल सुरक्षित यहाँ जाए और यहाँ से वापस सुरक्षित जाए। मैंने यही कहा कि देखिए यहाँ यात्री को हम रुकाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए यात्री आए और यहाँ से नीचे जाए। और ये भी हमारे यहाँ डीएम साहब ने कहा है जिस समय यहाँ भीड़ होता है नीचे से रोपवे से यात्री नहीं आता है, ऊपर से जितने यात्री उनको नीचे उतारा जाता है। और आपने देखा होगा आजकल हमारा जो सीढ़ी का रास्ता वो बंद है, एक ही रास्ता आपने पैदल रास्ता देखा होगा और हमारा प्रयास है बहुत जल्दी सीढ़ी का रास्ता भी उसकी मरम्मत हो जाए वो भी खुल जाए।
0: बीमार डंगरों के अब एक फोन कॉल पर पशु चिकित्सक आफी पशुपालकों घर द्वार तक पहुँच बेर इलाज उपलब्ध करोड़िन। 1962 मोबाइल वेटनरी यूनिट सेवा पौड़ी जिला में पशु स्वास्थ्य सेवाओं की नई पहचान बणबेर शामिल में आई छू। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल सरमाल बता कि 1962 मोबाइल वेटनरी यूनिट सेवा का उद्देश्य पशुपालकों के तुरंत सुलभ और गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध करूँ छू।
3: पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न समस्त जनपदों में मोबाइल वेटनरी यूनिट का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कि जनपद पौड़ी में भी वर्तमान में 8 विकास खंडों में इसका संचालन किया जा रहा है। मोबाइल वेटनरी यूनिट को कहते हैं, जिनके द्वारा ग्रामीणों को आकस्मिक सेवाएं प्रदान की जाती है, जिसमें इसका कार्यक्रम का शुभारम्भ जिसमें पौड़ी जनपद की हम अगर बात करें तो लगभग 55,000 कॉल हमें प्राप्त हो चुकी है। ये कॉल जो प्राप्त होती है ये पशुपालन विभाग के 19 बास टोल फ्री नंबर कॉल सेंटर पर प्राप्त होती है, जो कि सीधे सीधे हमारे मोबाइल वेटनरी यूनिट से जुड़ा होता है। एक मोबाइल वेटनरी यूनिट में हमारे डॉक्टर साहब, एक उनके सहायक पैरावेट और एक वाहन चालक होते हैं।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशल विकास सुशासन और जन कल्याणकारी नए युग में प्रवेश करिहाली। केंद्र सरकारक 12 साल पूर्ण हुणक मौक में बागेश्वरक विकास भवन में उपलब्धि प्रदर्शनी का आयोजन करी गई। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी रुद्रप्रयागक जखोली खलियाणा बांगर क्षेत्र में है अतिवृष्टि नुकसानक स्थलीय निरीक्षण करो और हरिद्वार में भोल होनी वाल सोमवती अमावस्या स्नान के लेबेर प्रशासनल तैयारी पूरी करिहाली। यकदगढ़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार समाप्त होनी। नमस्कार।
4: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:40 होने को ही अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम और जसपिंदर नरूला के आवाज़ों में। फिल्म का नाम है सूर्यवंशम, समीर का लिखा गीत है और धुन तैयार की है अनु मलिक ने।

मौसम फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस। पहली प्रस्तुति में आपको सुनवा रहे हैं ए हरिहरन के स्वर में ये प्रस्तुति।

जसवंत सिंह और कविता पौडवाल को अभी आपने सुना। इसी के साथ आज का सबरस कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। बर्मिंगम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी। बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में धीरज

0: मोहम्मद देवरा और किशोरी कुमकुम मोहत ने जीता स्वर्ण पदक। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी का मुकाबला कुरा साउ से और नीदरलैंड्स का सामना जापान से होगा। प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया ने किया बड़ा उलटफेर, एक तरफा मुकाबले में तुर्की को हराया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 32 सदस्यीय टीम का किया ऐलान और संडे ऑन साइकिल का 78वां संस्करण मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले से, जहां दोनों टीम T20 विश्व कप में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। बर्मिंगम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। भारत ने इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। सैफाली वर्मा ने 5 गेंद पर 6 रन बनाए। सैफाली ने पहली गेंद पर छक्का लगाकर धमाकेदार अंदाज में विश्व कप का आगाज किया। वहीं स्मृति मांदना ने 44 गेंद पर 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 35 गेंद पर 36 रन की सधी हुई पारी खेली और इस समय ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा क्रीज पर मौजूद हैं। वहीं भारत की पुरुष टीम और हेड कोच गौतम गंभीर ने भी महिला टीम को विश्व कप में दमदार प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी हैं।
1: They've been playing really good cricket for the past few years now. I know in T20 cricket they've come very close, but I want this time around to go all the way.
2: I'm sure that you're going to make 140 crore Indian proud. Not many people get the opportunity to represent the country at the world stage.
3: You guys have won it before and you'll do it again.
4: Here's wishing all the very best to the Indian women's cricket team.
5: I think just to take it as another game. You all have been doing so good throughout the season, I feel. You have been playing amazing cricket. So just keep it simple. Trust what you have done throughout the year and I think things will just fall into place if you keep it simple.
1: Everyone's rooting for them. They have a solid team, very well balanced team and they'll enjoy playing in England.
4: Be fearless, be ruthless and play to win.
1: Best wishes from all of us here in Men's Team India.
3: Our full wishes to you and all the best for the World Cup.
5: And we all are very proud of you all and we hope we win this trophy.
2: Don't be scared of making a mistake. Every time you're in doubt, take the positive route. Good luck. Bring the cup home.
0: वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड्स ने 8 विकेट पर 139 रन बनाए। 140 रन के लक्ष्य को बांग्लादेश ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर हासिल कर लिया। और अब रुख कर लेते हैं मेंस क्रिकेट की ओर। धर्मशाला में भारत ने पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में कल अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। बारिश के कारण मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। एक रिपोर्ट।
6: भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ कल हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए पहले एक दिवसीय मुकाबले को जीतकर श्रृंखला में शानदार शुरुआत की। बारिश के चलते मैच शाम 5:45 पर शुरू हुआ और 25-25 ओवरों की कटौती की गई। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम 25वें ओवर में 194 रन पर सिमट गई। मेहमान टीम ने 5वें ओवर में ही 26 के स्कोर तक 3 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज ने कप्तान हजमतुल्लाह शाहिदी के साथ 4थे विकेट के लिए 66 गेंद में 116 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 142 के स्कोर तक पहुंचाया। गुरबाज ने महज 48 गेंद में अपना नवा एक दिवसीय शतक पूरा किया। उन्होंने इस पारी में 51 गेंद का सामना करते हुए 8 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 102 रन बनाए। कुछ देर बाद टीम ने शाहिदी का विकेट भी गंवा दिया, जो 30 गेंदों में 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अजमतुल्लाह उमरजाई ने मोहम्मद नबी के साथ 6थे विकेट के लिए 28 रन जुटाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। उमरजाई ने 16 गेंदों में 3 छक्कों के साथ 26 रन बनाए। भारत की तरफ से डेब्यूटेंट हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 सफलताएं हासिल की, जबकि अर्शदीप सिंह और नितिश रेड्डी ने 2-2 विकेट निकाले। डेब्यूटेंट हर्ष दुबे की गेंद पर कप्तान शुभमन गिल ने स्लिप में शानदार कैच पकड़कर गजनफर को 0 पर पवेलियन भेजा। रन के लक्ष्य को भारत ने 13 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने कप्तान शुभमन गिल के साथ पहले विकेट के लिए 34 गेंद में 46 रन जोड़े। रोहित 16 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद गिल ने ईशान किशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 43 गेंद में 70 रन जुटाकर टीम को 116 के स्कोर तक पहुंचा दिया। ईशान ने 22 गेंद में 34 रन बनाए। उनकी पारी में 1 छक्का और 3 चौके शामिल रहे। इसके बाद गिल ने श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट

0: विकेट के लिए 26 रन जबकि केएल राहुल के साथ चौथे विकेट के लिए 32 गेंद में 53 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को शानदार जीत दिलाई। गिल 66 गेंद में 2 छक्कों और 11 चौकों के साथ 84 रन बनाकर नाबाद रहे जबकि केएल राहुल ने 19 गेंद में 7 बाउंड्री के साथ 39 रन की नाबाद पारी खेली। अफगानिस्तान की ओर से जियाउर रहमान, शरीफी और राशिद खान ने एक एक विकेट हासिल किया। कप्तान शुभमन गिल को शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आइए सुनते हैं कप्तान शुभमन गिल ने मैच के बाद क्या कहा।
1: It was kind of a T20 game, you know, the way we started and then they pulled the game away from us. Gurbaz batted brilliantly. The way he got his century was brilliant. But I think the way we pulled back game in the middle overs and the death overs was brilliant. Honestly, I think it was a brilliant wicket to bat on. I think as the match went on, when we were bowling, there was a little bit of grip for the spinners. When they were bowling, the ball was coming on pretty nicely.
0: Captain ne debutant ki bhi sarahana ki.
1: How Gurnoor bowled, brilliant pace and the way he was swinging the ball, the kind of lengths he bowled consistently. And even Harsh as well, you know, after I think in the first over he went for 16-17 runs and the way he pulled the game back, trusted himself and kept tossing the ball up, it was very impressive.
0: श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
2: और अब रुक कर लेते हैं तीरंदाजी की ओर, जहां धीरज और किशोरी ने स्वर्ण पदक जीता। तुर्की के अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज मोहम्मद देवरा और किशोरी कुमकुम मोहत ने रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। धीरज ने दक्षिण कोरिया के ली वू सियोक को रोमांचक फाइनल में 7-3 से हरा कर अपना पहला व्यक्तिगत तीरंदाजी विश्व कप स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया।
3: My goodness me, this is incredible shooting from India. Wow, 10-10, 10-9, it was marked as a 10-4 India. We're just waiting for final confirmation, but I think the high fives on the Indian side of the shooting line are evidence, and there is the confirmation. India have shot the lights out here in Antalya. They have beaten Korea by 5 set points to 1.
4: दुनिया की सबसे कामयाब तीरंदाज जोड़ियों में से एक ओ ये जिन और किम जे डेओक के खिलाफ भारतीय खिलाड़ियों ने गजब का संयम और जज्बा दिखाया। ये 2 महीने में दक्षिण कोरिया पर भारत की दूसरी जीत है। पिछले महीने शंघाई विश्व कप में दीपिका कुमारी कुमकुम और अंकिता भगत की महिला तिकड़ी ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया की टीम को हराते हुए स्वर्ण पदक जीता था। कुमकुम और धीरज का ये विश्व कप मिक्स्ड टीम स्पर्धा का पहला पदक है। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने अच्छी शुरुआत की। कोरिया ने शुरुआती 2 तीर से 16 अंक बनाए जबकि भारत ने 17 अंक हासिल किए। दूसरे प्रयास में कोरिया ने वापसी करते हुए कुल स्कोर किया 35 अंक और वहीं भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए स्कोर को पहुंचा दिया 36 पर। बाद में जांच में कुमकुम के तीर के अंक 9 से बढ़कर 10 हो गए जबकि किम के शुरुआती तीर के अंक 8 कर दिए गए, जिससे भारत ने 37-36 से सेट जीत लिया और 2-0 की बढ़त बना ली। दूसरे सेट के पहले प्रयास में कोरियाई और भारतीय तीरंदाजों ने 18 अंक जुटाए। दूसरे प्रयास में कोरिया ने 18 अंक हासिल करते हुए कुल स्कोर 36 तक पहुंचा दिया। इसके बाद कुमकुम ने 9 अंक हासिल किए जिससे धीरज को सेट जीतने के लिए परफेक्ट 10 अंक की जरूरत थी। सेना के तीरंदाज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अधिकतम अंक जुटाए जिससे भारत ने दूसरे सेट 37-36 से जीत कर बढ़त 4-0 कर दी। स्वर्ण पदक पक्का करने के लिए भारत को सिर्फ एक सेट ड्रॉ करने की दरकार थी और तीसरे सेट के पहले प्रयास में कोरिया ने 20 जबकि भारत ने 19 अंक हासिल किए। वहीं दूसरे प्रयास में कोरिया ने 19 अंक हासिल करके स्कोर पहुंचाया 39। दबाव के बावजूद दोनों भारतीय तीरंदाजों ने 20 का स्कोर हासिल करते हुए सेट को 39-39 से ड्रॉ करके ये खिताब जीत लिया। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए मुनीश शर्मा।
2: और अब चलते हैं फुटबॉल के मैदान की ओर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा। रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान आमने सामने होंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा मुकाबले में तुर्की को और स्कॉटलैंड ने हैती को हराया। सुनते हैं इन मुकाबलों पर खास रिपोर्ट।
5: फीफा विश्व कप में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब ऑस्ट्रेलिया के युवा गोलकीपर पैट्रिक बिच ने अपने इंटरनेशनल डेब्यू पर शानदार प्रदर्शन किया। वहीं नेस्टोरी इरानकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने गोल करते हुए ऑस्ट्रेलिया को एक यादगार जीत दिलाई।
6: really well.

0: from some way out, and the Socceroos now look to be on their way for an opening night win in Vancouver.
1: ऑस्ट्रेलिया की टीम शुरुआत से ही तुर्की के डिफेंस पर हावी नजर आई। टीम ने एक के बाद एक हमले किए और आखिरकार टीम को पहली सफलता मैच के 27वें मिनट में मिली। इस गोल के साथ ऑस्ट्रेलिया को मैच में 1-0 की बढ़त मिल गई। 20 वर्षीय ईरान कुंडा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की ओर से गोल दागने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। पहले हाफ के अंत तक ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे रहा। मैच के 75वें मिनट में ऑस्ट्रेलिया की बढ़त को मेटकॉफ ने दोगुना कर दिया। मेटकॉफ के इस गोल से ऑस्ट्रेलिया की यादगार जीत पक्की हो गई। साल 2026 के बाद से ही ऑस्ट्रेलिया की फीफा विश्व कप के पहले मैच में पहली जीत थी। वहीं 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को एक मैच में मोराको से कड़ी चुनौती मिली। मैच के 21वें मिनट में मोराको के हाथ पहली सफलता लगी। ब्राहिम डियास के शानदार थ्रू बॉल ने ब्राजील के डिफेंस को भेदने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि ब्राजील ने मोराको की इस बढ़त को ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहने दिया। मैच के 32वें मिनट में ब्राजील ने स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। ब्रूनो गिमारेस के बेहतरीन पास पर विनिसियस जूनियर ने अपनी स्किल का शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल किया। ब्राजील के कोच कार्लो एंसेलोटी ने अंत में कुछ खिलाड़ियों को सब्स्टिट्यूट करके मैदान पर उतारा, पर इसका भी कोई फायदा नहीं मिल सका। ये पहला मौका रहा जब विनिसियस जूनियर के गोल के बावजूद ब्राजील मैच को अपने नाम करने में असफल रहा। इससे पहले उन सभी 8 मुकाबलों में ब्राजील ने जीत दर्ज की थी जिसमें विनिसियस ने गोल दागा था। वहीं एक अन्य रोमांचक मुकाबले में स्कॉटलैंड ने हैती को 1-0 से हराकर 36 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया। स्कॉटलैंड की ओर से जॉन मैकगिन ने गोल करते हुए टीम को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। स्पोर्ट्स कैन के लिए शक्ति सिंह।
2: फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल का 78वां संस्करण आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। फिट इंडिया के एम्बेसडर जितेंद्र आडवाणी ने इस मुहिम को चलाए जाने के लिए फिट इंडिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया।
3: मैं फिट इंडिया का बहुत आभार प्रकट करता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ये फिट इंडिया मूवमेंट को इनिशिएट किया है जिसके माध्यम से इतने लोग जुड़े हैं। ऑलमोस्ट 10 साल से ये इनिशिएटिव चल रहा है और हर आदमी जो है अपने स्वस्थ और वेलनेस के प्रति जागरूक हो गया इस मुहिम के थ्रू। इस मुहिम को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हर जगह से, बिकॉज हर कोई जो आजकल अपने लाइफ स्टाइल की वजह से जो है फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, इस इनिशिएटिव के माध्यम से जुड़ के अब जागरूक हो गया है और अपने लिए टाइम निकाल रहा है फिटनेस के लिए।
2: और अब बात एथलेटिक्स की। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आज ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 32 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम का ऐलान कर लिया। अंतिम सूची में 22 पुरुष और 10 महिला एथलेटिक्स शामिल हैं। सुनते हैं वैष्णवी की एक रिपोर्ट।
4: एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रमुख नामों में ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा को शामिल किया है। हालांकि उनका टीम में शामिल होना प्रतियोगिता से पहले चयन की शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगा। पुरुष जंप और थ्रो इवेंट्स में एम श्रीशंकर, तेजस्विन शंकर, तंजिंदर पाल सिंह तूर, प्रवीण चित्रवेल और रोहित यादव जैसे एथलीट्स शामिल है। ट्रैक पर गुरिंदर वीर सिंह, अनिमेश कुजूर और गुलवीर सिंह भारत की ओर से स्प्रिंट और लंबी दूरी की दौड़ में चुनौती पेश करेंगे। महिला वर्ग में पारुल चौधरी एंड्योरेंस इवेंट्स में मुख्य चेहरा होंगी, जबकि मनप्रीत कौर, सीमा और निधि रानी थ्रो इवेंट्स में भारत की उम्मीदों को आगे बढ़ाएंगी।
2: और चलते चलते श्रोताओं, आपको बता दें कि भारत ने 169 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लिया है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप इस पे अपनी राय और सुझाव में स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के

0: इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
3: The world seeks trusted and reliable partners.
4: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है. हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है.
3: And a

0: स्केल दैट फ्यू कैन मैच।
1: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
2: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है, और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किस

0: कहूंगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज

0: नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
1: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
3: गुड इवनिंग। This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation level talks at historic Villa Carolos at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation level talks at historic Villa Carolos at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defense, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister of

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। पहली प्रस्तुति आबिदा परवीन के स्वर में, ये सूफियाना प्रस्तुति।

0: 山的峡一飞机。
1: श्रोताओ, इसी के साथ आज का सुगम संगीत कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी है। रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री जे एस श्रीराम का गायन। आज रात के इस प्रसारण में श्री जे एस श्रीराम के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर वीएसपी गायत्री सिवानी, मृदंगम पर विद्वान पेरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
1: दिस इज आकाशवाणी। In tonight's broadcast of Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we bring you a vocal recital by Sri J.S. Sriram. He is accompanied on violin by V.S.P. Gayatri Sivani, on mridangam by Vidwan Peravali Jayabhaskar and on ghatam by Sri M. Chandrakant.
0: श्री जे एस श्रीराम एक प्रतिभाशाली कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं और आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। वे अपने आकर्षक और अभिव्यंजक शैली के लिए सुप्रसिद्ध हैं। ये प्रख्यात संगीतज्ञों के परिवार में पैदा हुए हैं। इन्होंने अपनी माँ श्रीमती जे चिद्रूपा लक्ष्मी जी की प्रेरणा से संगीत का अभ्यास प्रारंभ किया और बाद में विद्वान द्वारम सत्यनारायण राव और विद्वान आखेला मल्लिकार्जुन शर्मा जी के मार्गदर्शन में गायन में आगे बढ़े। श्री सूर्वारम प्रताप रेड्डी तेलुगु विश्वविद्यालय में एमए संगीत में स्वर्ण पदक हासिल करके अब ये वही संगीत में शोध कार्य कर रहे हैं। ये कर्नाटक संगीत के साथ साथ नामसन कीर्तन में भी माहिर हैं और देश विदेश में मुख्य त्योहारों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक समर्पित अध्यापक बनकर उन्होंने कई विद्यार्थियों को संगीत प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया है और आप ललित कलाओं को बढ़ावा देने वाली संप्रदाय जैसी लाभ निरपेक्ष संस्था में भी स्वच्छंद सेवारत हैं।
1: श्री जे एस श्रीराम इज अ वर्सटाइल कर्नाटिक वोकलिस्ट एंड एन ए ग्रेड आर्टिस्ट विद ऑल इंडिया रेडियो। ही इज नोन फॉर हिज एक्सप्रेसिव एंड डायनामिक स्टाइल ऑफ सिंगिंग। He hails from a distinguished musical family.

0: अब आप सुनेंगे श्याम शास्त्री की एक कृति जो राग पूर्वी कल्याणी तथा विलोम चापू ताल में निबद्ध है।
1: You will now listen to a composition of Shyama Shastri in the rag Purvi Kalyani set to Viloma Chapu Taal.

0: श्री जे श्री राम अपने गायन का समापन त्यागराज की एक कृति से कर रहे हैं जो राग शंकरावर्णम तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री जे एस श्री राम कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग शंकराभरणम सेट टू आदिताल।

0: इसी के साथ आज की अखिल भारतीय रविवार्षिक संगीत सभा में श्री जे एस श्री राम का गायन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे वायलिन पर वीएसपी गायत्री शिवानी, मृदंगम पर विद्वान पेरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवार्षिक अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: विद दैट वी कंक्लूड द वोकल रिसाइटल बाय श्री जे एस श्री राम इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवार्षिक अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज अकंपनीड ऑन वायलिन बाय वीएसपी गायत्री शिवानी, ऑन मृदंगम बाय विद्वान पेरवली जयभास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत। दिस कॉन्सर्ट was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasriya Akhil Bharatiya Sangeeta Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.

0: ये था तन्या वर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पेरवली जयभास्कर और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: That was Tanya Vartanam played on mridangam by Vidwan Peravali Jayabhaskar and on ghatam by Shri M. Chandrakant.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित कर

0: करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचेरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France today after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
2: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation, and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startup, research, skilling, and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors, and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI Working Group on AI governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. Another key outcome was the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur, aimed at strengthening workforce readiness in aviation and aerospace. Beyond innovation and technology, the leaders reviewed cooperation in defense, space, civil nuclear energy, connectivity, and global affairs, reaffirming their shared commitment to a future-oriented partnership. The visit underscored the growing strategic convergence between India and France and their common vision for innovation-led growth and global stability. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
1: The Ministry of External Affairs conducted a special briefing in Nice on the outcomes of Prime Minister Modi's visit to Nice and his discussions with French President Emmanuel Macron. During the briefing, the Foreign Secretary Vikram Misri described the Inter-France Innovation Roadmap 2030 as a key outcome of the visit, aimed at deepening collaboration in critical and emerging technologies, artificial intelligence, startups, research and academic exchanges. He highlighted the creation of a joint India-France AI Working Group on AI governance and the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Slovakia later tonight, marking the first ever visit by an Indian Prime Minister to the country. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini and hold talks with Slovakian Prime Minister Robert Fico in Bratislava. Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today said India's space economy is poised to grow from the current $8 to $9 billion to nearly $40 to $45 billion over the next decade. Addressing a press conference in New Delhi, The minister said